आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 जुलाई 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं, हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। अब सुनिए हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे

0: टी20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। आइए अब सुनते हैं चिंतन वंदनवार श्री रामचरित मानस गान और संगीत सरिता, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

आज का चिंतन। साथियों, जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में आप अकेले ही होंगे और यही समय आपको बुद्धिमान, समझदार और निडर बनाएगा, इसीलिए डटे रहें। ये था आज का चिंतन। अब भक्ति रचनाएं।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे देते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में। आपको सुनवाते हैं झरोखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जाएगा। आज भाग 245 आप सुनेंगे। सुबह 6:45 पर और पुनः शाम 6:45 पर संगीत सरिता के अंतर्गत आप सुन रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। इसका भाग 10 आज प्रसारित होगा। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका ममता सिंह। सुबह 7 भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैरा ही प्यार के। सुबह 8 दिल्ली केंद्र से सुनेंगे आप समाचार प्रभात। 8:15 पर सुबह और पुनः दोपहर 2 आप सुनेंगे वंदे मातरम एक जय घोष कार्यक्रम। लेखक मिलिंद सबने, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इसका भाग 36 आज प्रसारित होगा। सुबह 8:30 पर और रात को 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। आज के फनकार ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा गीतकार असद भोपाली पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा हेलो फरमाइश सुबह 10 और 11 रंग तरंग।

11 बजे रंग तरंग। बारह बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल और दोपहर 1 बजे सुरीला सफर।

2:30 पर सुनेंगे आप सदा बहार नगमे और 3 बजे हेलो सहेली संवादक मंजरी वर्मा। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा गीतों भरी कहानी। कहानी है वो पुरानी बेंच, लेखिका सौम्या शर्मा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। शाम 5 बजे सुनिएगा छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा और 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जय माला। शाम 7 बजे 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज गुलदस्ता। 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा प्रहसन फोकट चंद, लेखन अनिल निगम का है, चंद्र प्रभा भटनागर का। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार। 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। छाया गीत सुनिएगा रात 10 बजे 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा आज के कार्यक्रमों की। आप सुन रहे थे झरोखा।

अत्रि ऋषि को अपने दर्शनों से कृतार्थ करके श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता गहन वन की ओर बढ़ रहे हैं। मार्ग विराट राक्षस का वध करके प्रभु ने उसे मोक्ष प्रदान किया और शरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषिवर ब्रह्मलोक जा रहे थे कि तभी उन्होंने श्री राम के वन आगमन का समाचार सुना। तब से ही वे उनके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में दिन बिता रहे थे।

0: श्रोताओं नमस्कार, संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार, पंडित जी विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: पंडित जी, आप बताइए लोक संगीत में बांसुरी का क्या योगदान रहा है? बहुत सारे जो गायन के प्रकार हैं, ठुमरी है, झूला, कजरी, चैती, तो आप इन के प्रकार में बारीकियां बताइए और कैसे आया लोक संगीत में बांसुरी?
2: देखिए, बांसुरी तो लोक संगीत का ही वाद्य है
1: जी,
2: शास्त्रीय संगीत में तो था ही नहीं है,
1: बाद में आया।
2: पन्नालाल घोष जी नहीं होते तो आज भी नहीं होता
1: जी। जी,
2: तो जैसे चैती, झूला, सोहर, ठुमरी, कजरी, क्या नहीं बसता। अब आप बताइए, दो अंग के ठुमरी, खास करके पूरब अंग जिसमें गया की ठुमरी,

0: बनारस की ठुमरी
1: जी,
0: दोनों कमाल है, गया भी कोई पीछे नहीं है, और पंजाब में आप चले जाएं तो थोड़ा नाक से नेजल होके गाते हैं। इन सब अंगों को मैंने बहुत करीब से देखा है ममता जी,
1: जी और बांसुरी में लाया
0: उसको
1: बिल्कुल।
0: यहाँ तक कि अनूप जलोटा जी बोले कि सबसे अच्छा, मैं कुमार बोस जी के साथ एक कार्यक्रम नेहरू सेंटर में बजा रहा था
1: जी,
0: अजीत भाई भी वो प्रोग्राम सुनने आए थे, और ऐसा धमार पंडित कुमार बोस जी बजाए थे कि क्या कहूँ आपसे
1: जी जी
0: मैं भावुक हो गया तबला याद करके। ऐसे लोग कहाँ पैदा होते हैं,
1: बिल्कुल
0: कभी कभी आते हैं ऐसे लोग, बड़ा अच्छा लगता है जब वो मेरे साथ बजाते हैं। खैर मैं खो गया था
1: जी,
0: तो अनूप जलोटा जी ने कहा कि आपने एक फ्रेज में जो आज पंजाब से बनारस गए वो सुनने जैसा था, मैंने ये कभी नहीं सुना आज तक। जलोटा जी खाना खाने के लिए ले गए मुझे प्रोग्राम के बाद, तो मैं दोनों अंग थोड़ा थोड़ा आपको
1: जी, मैं तो आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि आप यहाँ श्रोताओं को भी ले चलिए बनारस और पंजाब एक साथ, कैसे आप जाते हैं
0: आप देखिए। मैं सबसे पहले झूला धीरे से झूलाना बनवारी अरे सांवरिया,
1: क्या बात है, वाह
0: इसका क्या रंग है देखिए
1: जी, और ये अप्पा जी ने विदुषी गिरजा देवी ने भी गाई है ये हमारे पास,
0: मेरे लिए तो वो गिरजा बुआ है
1: जी जी
0: है, देखिए मुझे कभी लगता ही नहीं कि वो गई है, और लगता है कि वो क्योंकि मेरे पिताजी को राखी बांधती थी बनारस में, मेरे लिए बुआ जी है
1: जी जी जी,
0: अप्पा जी लोग कहते हैं, मैंने हरदम उनको बुआ जी कहा, और महाराज जी को चचा
1: जी जी
0: किशन महाराज जी को
1: जी,
0: और बनारस में हम लोग बड़ों को तू कहते हैं
1: जी जी,
0: का हो तू का करत हुआ तो तुहार आज्ञा हो तब ना बजाई, तो ये चलन है वहाँ का।
1: तो यहाँ तो मैं तो ये चाह रही हूँ कि आप चूंकि गायन की कला में भी महारथी हैं, तो थोड़ा सा गा के भी,
0: मैं जरूर गाऊंगा, झूला गाए बिना कैसे चलेगा
1: जी जी।

0: वाह, अद्भुत था ये तो। ये रचना बिल्कुल अद्भुत है। झूला ऐसे लग रहा है कि नीम का पेड़ है और झूला डला हुआ है, पटोहा है और पटोहे पे दो लड़के पींग मारा करते थे और महिलाएं पटोहा पे बैठ के ये झूला गाती थी
1: जी,
0: गाती हैं थी क्या? अभी भी ये परंपरा है?
1: अभी ये परंपरा है ना
0: जी, और अब कम हो रहा है लेकिन क्योंकि पेड़ ही कम हो रहे और लोगों के पास समय कम हो रहा, मोबाइल आ गया है, लेकिन अभी भी परंपरा गांव में शेष है। तो वो सीन, वो दृश्य आपने आंखों के सामने पैदा कर दिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत अच्छा लगा। तो अब इसके बाद गायन की कौन सी शैली, कौन सा प्रकार आप शामिल कर रहे हैं इसमें?
1: मैं देखिए, ये लोक संगीत में जब हम जाते हैं तो बंगाल को छोड़ नहीं सकते
0: जी,
1: क्योंकि बंगाल को दुनिया दिखाया किसने?
0: जी
1: सचिन देव बर्मन ने
0: जी, भटियाली संगीत।
1: भटियाली को सुनो मेरे बंधु रे, जब उन्होंने किया और उन्होंने जब गाया फिल्म सुजाता में
0: जी,
1: तो लोग हैरान रह गए कि ये क्या है, यहाँ कौन है तेरा, ये कहाँ का स्टाइल है? गाइड का वो गाना, मुसाफिर जाएगा कहाँ, सुन मेरे बंधु रे। मैं आप देखिए, मैं थोड़ा सा सुन मेरे बंधु रे सुना के फिर मेरे पिताजी की रचना जो है भाटियाली में वो सुनाऊंगा। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला कोत्ता यामाय लोइया जाबे शोहर दखाईते। मेरे पति मुझे शहर घुमाने ले जाएंगे, उसलिए मैंने ये तैयारी की है। ये गाने का बोल भी बहुत सुंदर है
0: जी, सुनाए प्लीज। हम तो कह रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा गा के भी सुनाए, बांसुरी पर भी सुनाए।

0: की दुनिया में आपको लाया।
1: हर व्यक्ति को अपने पिता भगवान के बराबर लगते हैं और लगना भी चाहिए। मेरे पिताजी थे इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, कल्पेश ने भी देखा कि वो कितने संत थे और एक फकीर की तरह थे
0: जी।
1: और इतने गुण एक व्यक्ति में मैंने तो नहीं देखा।
0: जी जी
1: पंडित रविशंकर जी ने कहा मुझे, भारत रत्न पंडित रविशंकर जी ने, यू आर लक्की टू हैव सच फादर। उनके जैसी पेंटिंग ना किसी ने बनाया ना कोई बनाएगा आगे भी। नेहरू जी उनके फैन थे। उनके जैसी भाटियाली मैं तो आज भी नहीं बजा सकता
0: जी।
1: मैंने कोशिश की उन्हीं की कंपोजिशन। उनके जैसा राइटर सोचिए, कोत्ता यामा लोहिया जाबे शहर दिखाई थे, एबीसीडी एक्सो वाइजेड लागलो पढ़ाई थे, तो कैसा राइमिंग है देखिए, रदीप काफिया जो बोलते हैं
0: जी,
1: हम लोग।
0: जी जी
1: बंगाली में बहुत मुश्किल है फनी गाना लिखना।
0: जी जी
1: इतना आसान नहीं है
0: जी, बिल्कुल। गंभीर लिखना आसान है,
1: गंभीर लिखना आसान है,
0: बिल्कुल। मजाहिया लिखना मुश्किल।
1: बहुत ही ज्यादा उनसे मैंने सीखा और उन्होंने मुझे पीलू में, बनारसी पीलू, उनसे जो सीखा मैंने, कोमल रे लगाना। मैं 2 मिनट आपको सिर्फ
0: जी जी सुनाए प्लीज।
1: पीलू का रे सुना रहा हूं मेरे पिताश्री की याद में।

0: अद्भुत। अब लग रहा है कि कुछ बात ही न करें, सिर्फ बस आपसे अनुरोध करते जाएं कि बांसुरी की धुन आप सुनाते
1: रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: लेकिन हमें पता है कि आपकी सांस को भी थोड़ा विराम चाहिए, ठहराव चाहिए, बीच बीच में हम बातें भी करते रहें। तो पंडित जी, अपने पिताजी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। उन्होंने तो बांसुरी

0: वाह गजब। अब आज की इस कड़ी को यहाँ पर विराम दे रहे हैं, कल नई जानकारी और बांसुरी की तान के साथ उपस्थित होंगे फिर से। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।
1: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार, आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आप सुन रहे हैं FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। आइए अब सुनते हैं हमारा दैनिक सूचनात्मक स्थानीय कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़।

नमस्कार और सुप्रभात। आकाशवाणी झालावाड़ के स्थानीय प्रातःकालीन कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़ में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी दीपेश। सुबह की ये बेला नई ऊर्जा, नए संकल्प और नई उम्मीदों का संदेश लेकर आई है। खेतों में हरियाली की आहट है, पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को जीवंत बना रहा है और वर्षा की ठंडी फुहारें प्रकृति को नया जीवन दे रही हैं। इस खूबसूरत मौसम में प्रकृति हमारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का हमारे तन मन में संचार करती है। इसी तरह हमारा भी प्रयास रहता है कि हर सुबह कुछ ऐसी बातें आप तक पहुंचाएं जो आपके जीवन को और अधिक स्वस्थ, जागरूक और सकारात्मक बनाए। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सकारात्मक रूप में आज के सुविचार से।

कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और कदम आगे बढ़ाते रहें। इसी सुविचार के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: एक प्रकार से

नमस्कार, झालावाड़ में एक बार आपका फिर से स्वागत। और आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा ऋतु और स्वास्थ्य पर। बारिश आ चुकी है और जब भी बारिश का मौसम आता है किसानों के लिए खुशियों का संदेश लेकर आता है। खेतों में बुआई शुरू हो जाती है, नदियों और तालाबों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, नदी तालाब भरने लगते हैं और वातावरण में ताजगी छा जाती है। लेकिन यही मौसम स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की भी याद दिलाता है। बारिश के दिनों में वातावरण में नमी बढ़ने से बैक्टीरिया और वायरस तेजी से फैल सकते हैं। दूषित पानी और अस्वस्थ भोजन कई बीमारियों का कारण बनते हैं। डायरिया, टाइफाइड, पीलिया, वायरल बुखार, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां इस मौसम में अधिक देखने को मिलती हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले पीने के पानी पर विशेष ध्यान दें। यदि संभव हो तो पानी उबालकर या फिल्टर करके ही उपयोग करें। खाना हमेशा ताज़ा और गर्म खाएं। सड़क किनारे खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचें। घर के आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले और पानी की टंकियों की सप्ताह में कम से कम एक बार सफाई अवश्य करें। छोटे बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। बरसात के मौसम में कई लोग हल्का बुखार या शरीर दर्द होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां लेने लगते हैं, लेकिन सामान्य मौसम में और बरसात के मौसम में बीमारियों में अंतर आ जाता है, इसलिए ऐसा करना उचित नहीं है। यदि तेज बुखार दो दिन से अधिक रहे, शरीर पर लाल चिकत्ते दिखाई दें, प्लेटलेट्स कम होने की आशंका हो या लगातार दस्त और उल्टी हो तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। याद रखिए, स्वस्थ परिवार ही खुशहाल समाज की पहचान है। लेकिन हमारी चर्चा का मसला ये नहीं कि हम आपको डराएं। इस बरसात का पूरा पूरा आनंद लीजिए। और चलिए आपको एक गीत सुनवाते हैं बरसात के इस खूबसूरत मौसम से जुड़ा हुआ।

जलवायु और समानता, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में असमानता को और बढ़ाता है। कोई व्यक्ति कितना प्रभावित होगा, यह उसकी आय, लिंग, उम्र, शिक्षा और सेहत पर निर्भर करता है। अमीर देश और अमीर लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित रख पाते हैं, जबकि गरीब लोग जो सबसे कम प्रदूषण करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। देशों के अंदर भी सामाजिक आवास, स्वास्थ्य सेवा और आपदा योजना जैसे कदम जरूरतमंदों की रक्षा करते हैं। दुनिया में असमानता को बढ़ाने से रोकने के लिए उचित धन सहायता और संसाधनों का सही बंटवारा बहुत मायने रखता है। यहाँ एक रोचक जानकारी है, दुनिया की सबसे अमीर 1% आबादी के पास दुनिया की 43% संपत्ति है। यह संदेश यूनेस्को और के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।

0: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे थे वर्षा ऋतु और स्वास्थ्य के ऊपर। आइए हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं समान नागरिक संहिता की। इस विषय पर समाचारों और जन चर्चाओं में चर्चा होती रही। समान नागरिक संहिता का आशय ऐसे समान नागरिक कानूनों से है जो विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे जैसे पारिवारिक मामलों में सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। भारत का संविधान विविधता में एकता की भावना को स्वीकार करता है। साथ ही संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में राज्य के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का उल्लेख किया गया है। यह विषय कई दृष्टिकोणों से देखा जाता है। एक पक्ष का मत है कि समान कानून से समानता और न्याय को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरा पक्ष ये मानता है कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को ध्यान में रखते हुए व्यापक चर्चा और सभी पक्षों की सहभागिता आवश्यक है। लोकतंत्र की यही विशेषता है कि महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न मत सामने आते हैं और संवाद के माध्यम से समझ विकसित होती है। इसलिए आवश्यक है कि हम किसी भी विषय पर अपनी राय बनाने से पहले प्रमाणिक और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें और संविधान और कानून के प्रति सम्मान बनाए रखें। जन जन की जानकारी में हम आपको आगे जानकारी देंगे ग्रामीण सेवा शिविर की, लेकिन उससे पहले लें एक विराम।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

साथियों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, झालावाड़ के शेष भाग में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत। और हम बात कर रहे थे कि अब हम बात करेंगे जानकारी की। जानकारी में हम आज देंगे आपको जानकारी ग्रामीण सेवा शिविर की। ये वे शिविर हैं जिन्हें सरकार द्वारा आयोजित प्रायोजित किया जाता है। समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे शिविरों का आयोजन होता है जिनका उद्देश्य आम नागरिक तक विभिन्न सरकारी योजनाओं को एक ही स्थान पर पहुंचाना होता है। इन शिविरों में अलग अलग विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं और पात्र लोगों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ आवश्यक प्रक्रियाओं में सहायता भी करते हैं। ऐसे शिविरों में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, पेंशन, किसान हितकारी योजनाएं, श्रमिक कल्याण, विभिन्न प्रमाण पत्रों से संबंधित सहायता, जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और अन्य विभागीय सेवाओं के बारे में मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सकता है। यदि आपके गांव में ऐसा शिविर आयोजित हो रहा है तो निर्धारित तिथि और समय की जानकारी ग्राम पंचायत प्रशासन या संबंधित विभाग से आप प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में जब भी आप जाएं, अपना आधार कार्ड, जन आधार, पहचान पत्र और आवश्यकता अनुसार दूसरे दस्तावेज अवश्य साथ रखें। सरकारी योजनाओं का लाभ आपको तभी मिलेगा जब हम समय पर जानकारी प्राप्त करेंगे और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे। इन शिविरों की सबसे अच्छी बात यह है कि गांव में रहने वाले जो हमारे साथी हैं उनको शहर की तरफ जाना नहीं पड़ता।

समय बचता है, संसाधनों का सही उपयोग हो सकता है। और सरकार ने ये हम लोगों के लिए इसलिए शुरुआत की ताकि सभी लोगों को एक ही जगह पर अपनी समस्याओं का समाधान मिल सके। तो आप भी लाभ उठाएं और अपने साथियों को भी हमेशा बताएं कि ये जो ग्रामीण सेवा शिविर लगते हैं, इन सेवा शिविरों का उपयोग, इनका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है। और आइए चलिए अब हम आपको दे दें आज के शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय।

हमारे आज के अंक में सुनिए फिल्म संगीत अब से कुछ देर बाद, यानी सुबह 7:30 पर, शाम 6:05 पर और रात 8:15 पर।

आज सुबह 8:15 पर सुनिए हमारा स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम आपकी सेहत। इस स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम का विषय है गर्दन का दर्द यानी सर्वाइकल पेन में फिजियोथेरेपी की भूमिका। इस विषय से संबंधित प्रश्न आप हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 232593। झालावाड़ से बाहर के श्रोता झालावाड़ का एसटीडी कोड 07432 लगाकर इस नंबर पर हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं और अपनी इस बीमारी या इस समस्या के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोपहर 12 बजे सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1325वां भाग। आज शाम 5 बजे सुनिए युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी, जिसमें होगी चर्चा भीष्म साहनी की पुण्यतिथि और विश्व जनसंख्या दिवस पर। भेंट वार्ता में आपको सुनवाएंगे महिला स्वास्थ्य और जागरूकता से संबंधित भेंट वार्ता। साथ ही युववाणी में होगा करंट अफेयर्स, जानकारी में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जानकारी, आज का इतिहास और रोजगार सूचना। शाम 7 बजे सुनिए कृषक चौपाल, चर्चा होगी मृदा और जल संरक्षण पर। भेंटवार्ता का विषय होगा नींबू वर्गीय फलदार पेड़ पौधों की देखभाल। जानकारी में मिलेगी जानकारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। रात 9 बजे हर रोज की तरह सुनिए हमारा गैर फिल्मी गीत गजल कव्वालियों का कार्यक्रम सबरस।

और आइए अब आपको बता दें हमारे कल के कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 7 बजे सुनिए हमारा दैनिक सूचनात्मक स्थानीय कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। चर्चा होगी विश्व जनसंख्या दिवस और भीष्म साहनी की पुण्यतिथि पर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें होगी चर्चा विश्व जनसंख्या दिवस पर। भेंटवार्ता का विषय होगा किशोरी स्वास्थ्य और पोषण। जानकारी में आपको देंगे जानकारी मिशन इंद्रधनुष की।

शाम 5 बजे सुनिए पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर, शाम 6:05 पर और रात 8:15 पर। शाम 7 बजे होगा कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें होगी चर्चा विश्व जनसंख्या दिवस और फसल चक्र एक प्रबंधन पर। भेंट वार्ता में आपकी भेंट करवाएंगे एक प्रगतिशील किसान से। जानकारी की बातों में देंगे आपको जानकारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। कल रात 9 बजे आप सुनेंगे द आकाशवाणी पॉडकास्ट, CBFC के अध्यक्ष श्री शशि शेखर वेम्पति से बातचीत, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थी हमारे केंद्र से आज और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय। अब आपको बता दें मौसम की जानकारी। आज 23 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवाएं चलने का अनुमान है। तापमान 27 डिग्री न्यूनतम और 34 डिग्री अधिकतम रहने की संभावना है। 82% ह्यूमिडिटी होने का पूर्वानुमान है और विजिबिलिटी 14 किलोमीटर रहेगी। सूर्यास्त का समय होगा शाम 7:18 और अब कार्यक्रम को समाप्त करने की तरफ हम आगे बढ़ें। तो अपने साथी दीपेश को दीजिए अनुमति कार्यक्रम समाप्त करने की। अगले अंक में फिर मिलेंगे आपसे नई जानकारियों, नई बातों के साथ और कुछ नए गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नमस्कार झालावाड़। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में बेमिसाल फिल्म के इस गीत से, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत RD बर्मन का।

0: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
1: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
3: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाज में नया द्वार फिल्म का ये गीत। साहिर के लिखे इस गीत को संगीत दिया OP नैयर ने।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

फिल्म संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी आशा भोंसले की आवाज़ में एस एच बिहारी का लिखा ओपी नैयर के संगीत से सजा कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हाथी मेरे साथी फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। अब से कुछ ही देर में सुनिए समाचार प्रभात, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में

0: हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी

0: एलर्जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
4: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
5: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
2: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत

0: भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, एनसीआर थमा, तीन साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं हमारा स्वास्थ्यवर्धक सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत।

0: आकाशवाणी झालावाड़ सुनने हमारे सभी श्रोताओं को आपके साथी दीपेश का प्यार भरा नमस्कार। साप्ताहिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आपकी सेहत में बहुत बहुत स्वागत। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है गर्दन दर्द में फिजियोथेरेपी की भूमिका। इस विषय पर हमें जानकारी देने हमारे साथ हैं आज के हमारे मेहमान फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कमल सिंह धाकड़। संबंधित प्रश्न हमारे आज के विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। हमसे प्रश्न पूछने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो के फोन नंबर है 232-593। झालावाड़ के श्रोता हमारे फोन नंबर के पहले झालावाड़ का एसटीडी कोड 07432 लगाना न भूलें। हमारे कार्यक्रम के आज के प्रायोजक हैं बालाजी आर्थोपेडिक हॉस्पिटल झालावाड़।
1: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं बालाजी आर्थोपेडिक एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आनंद विहार कॉलोनी कोठी रोड झालावाड़।
2: इंदौर, अहमदाबाद और कोटा जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा युक्त
3: झालावाड़ का जाना माना हॉस्पिटल
2: बालाजी आर्थोपेडिक एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
3: घुटने या कूल्हे का प्रत्यारोपण हो
2: या हो ऑर्थोस्कोपिक एवं स्पोर्ट्स इंजरी, नवजात शिशु की शल्य चिकित्सा हो
3: या हो जरूरत इंटेंसिव एवं क्रिटिकल केयर की,
2: हर प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं अत्याधुनिक मशीनों के साथ
3: हर समय उपलब्ध।
2: बालाजी ऑर्थोपेडिक एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
3: आनंद विहार कॉलोनी कोठी रोड झालावाड़।
2: संपर्क करें 9351-988288 पर।
0: आइए अब शुरू करते हैं हमारा आज का साप्ताहिक स्वास्थ्य वर्धक कार्यक्रम आपकी सेहत। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का। सर, आपका हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद
0: सर। अब जब गर्दन की बात की है, दर्द की बात की है, तो हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि सर्वाइकल पेन क्या है और यह किन लोगों में अधिक देखने।

0: को मिलता है?
1: जी सर, सर्वाइकल पेन होता है बेसिकली, अपन समझे तो देसी भाषा में या अपने गांव वाले या नॉर्मल लैंग्वेज में, कि गर्दन का जो दर्द होता है उसको अपन सर्वाइकल पेन बोलते हैं। कभी कभी ये ज़्यादा होने से अपने हाथ में और उंगलियों तक भी महसूस होने लगता है। ये आजकल की जीवन शैली में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे एक तो मोबाइल का यूज़ ज़्यादा होने लग गया है, एक जॉब के अकॉर्डिंग लैपटॉप या कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादा होने से इन चीज़ों में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है।
0: जी सर, हमारा दूसरा सवाल सर ये है कि सर्वाइकल पेन के मरीजों की संख्या आजकल बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रहे हैं, और पहले कभी कभार देखने को मिलता था कि किसी को सर्वाइकल पेन है
1: जी,
0: लेकिन अब ये बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या है?
1: इससे सबसे बड़ा कारण इसका एक तो मोबाइल है, और दूसरा अपनी बेड हैबिट, जो पोस्चर अपन ठीक नहीं रख पाते हैं, लाइक अपन कंप्यूटर पे काम करना हो गया, लैपटॉप पे काम करना हो गया, सबसे ज़्यादा जो मोबाइल को अपन स्टेयर करके कंटिन्यू मोबाइल थोड़ा ज़्यादा देखते हैं, उस कारण से हो गया है। एक हार्ड वर्क हो गया, जिनका जो प्रोफाइल ही ऐसा है कि उनको ज़्यादा वजन उठाना पड़ता है, तो उनमें ये थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक आजकल थोड़ा जो खान पीन में जो गिरावट आई है, उससे अपनी हड्डियों में और इनमें थोड़ी कमजोरी आने के कारण ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है।
0: जी सर, सर्वाइकल पेन के क्या लक्षण हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए?
1: सबसे बड़ा लक्षण ये जो देखने को मिलता है वो होता है अपनी गर्दन में, अपन जब सुबह उठते हैं या दिन भर गर्दन में थोड़ी अकड़न बनी रहती है और दर्द चालू हो जाता है मूवमेंट करने पे। जब भी कोई मरीज होता है या जिसको सर्वाइकल पेन रहता है, तो वो गर्दन मूवमेंट करने में, इधर उधर देखने में उसको तकलीफ महसूस होती है, और वो जब बढ़ता हुआ जाता है तो अपने कंधे पे, कोहनी में या उंगलियों में झनझनाहट, या अगर ये आपको ये महसूस होती है झनझनाहट होना, सुनपन आना, तो डॉक्टर की सलाह लो, क्योंकि आप इसको नज़रअंदाज करोगे तो ये थोड़ा धीरे धीरे धीरे बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाथों में सुन तक आने लग जाती है।
0: अच्छा, कई बार सर ऐसा होता है कि हमने देखा गर्दन का दर्द है और वो सिर तक चला जाता है या वो नीचे बैक तक आने लग जाता है, तो कैसे पहचाने कि ये गर्दन की वजह से है या ये सिर दर्द, जिसको कई बार लोग कहते हैं कि गैस हो जाने की वजह से सिर दुख गया है, तो कई बार पता नहीं चलता मुख्य दर्द का कि ये गर्दन का दर्द है?
1: नहीं, अगर सर्वाइकल होगा तो वो आपके पीछे की साइड पे और थोड़ा थोड़ा आपका सिर भारी रहता है।
0: अच्छा।
1: पेशेंट बोलता है कि मुझे थोड़ा बहुत कुछ उठने या बैठने में हल्के से चक्कर जैसे भी महसूस होते हैं
0: जी।
1: मैं थोड़ा गर्दन नीचे करके मोबाइल चलाता हूँ या ऐसा कुछ करता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे चक्कर आ रहा है, तो ये अपन इसको गर्दन के दर्द से या सर्वाइकल पेन से जोड़ सकते हैं कि ये आपको उस कारण से हो सकता है, और ये एक लिमिट के बाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ने के बाद थोड़ा पीठ की तरफ भी ये दर्द चला जाता है।
0: हाँ, मतलब ये डिफरेंस हम ऐसे ही समझ
1: जी,
0: सकते
1: जी,
0: हैं
1: जी,
0: कि,
1: जी
0: जी सर, ये एलोपैथी जिसको हम थोड़ा क्विक रेस्पॉन्स मान लेते हैं दवाइयों का, तो सर्वाइकल पेन में एलोपैथी दवाइयों के बाद फिजियोथेरेपी की कितनी आवश्यकता रह जाती है?
1: जितना सर अपन अगर जानना चाहें कि जितना एलोपैथी में ज़रूरत है, क्योंकि अक्यूट पेन होता है, जैसे आज ही आपको दर्द चालू हुआ है, ये अपन मरीज बोलता है कि मुझे भी बहुत दर्द है और 5-10-15 दिन से ही दर्द है
0: जी,
1: तो इसमें एलोपैथी भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्विक रेस्पॉन्स जैसे आप बोल रहे थे उसके लिए, क्योंकि मसल्स में स्पाज़म ये चीज़ें आती है, तो उससे थोड़ा जल्दी आराम आता है। जो आपने बोला कि फिजियोथेरेपी की कितनी नीड होती है, दर्द होने के कारण जो नसों में जो छल्ले, अपन बोलते हैं कि मेरे छल्ले पे खिंचाव आ रहा है
0: जी,
1: नसों पे दबाव आ रहा है, वीकनेस आने के कारण वो दबाव हट नहीं पाता है मेडिसिन से, तो आपको उसके लिए प्रॉपर फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती है। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं आपको वो उसके लिए प्रॉपर जो भी ही एक्सरसाइज होती है या जो भी मशीन होती है वो एडवाइस करते हैं, तो आपकी मसल्स की जो ताकत वापस आप गेन करते हैं, तो आपको बार बार ये दर्द होने से अपन बचा सकते हैं। इसमें फिजियोथेरेपी का एक अपने आप में बहुत अहम योगदान होता है।
0: यानी कि ये जो हमारी एलोपैथी की दवाइयाँ हैं, ये हमको क्विक रेस्पॉन्स तो दे देंगी कुछ समय के लिए, लेकिन वो फिजियोथेरेपी नीड है,
1: नीड है
0: कि वो तो हमें चाहिए।
1: बिल्कुल, आजकल जो अपन हम भी रिकमेंड करते हैं कि आपको एक बार न्यूरो फिजिशियन से, ऑर्थोपेडिशियन से आपको मिलना चाहिए, दिखाना चाहिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो डॉक्टर भी जो अपन जिनको रेफरेंस देख के भेजते हैं, वो उन पेशेंट्स को भी बोलते हैं कि आपको फिजियोथेरेपी मेडिसिन के साथ साथ आपको फिजियोथेरेपी लेना चाहिए, जितना काम आपके मेडिसिन करेगी उतना काम फिजियोथेरेपी भी करेगी, और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सबसे मेन इसका इंडिकेशन ये है कि इसमें आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
0: ये तो व्यायाम है,
1: व्यायाम है बिल्कुल इसमें, क्योंकि आपको एक्सरसाइज बताई जाती है, पर वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए बताया जाता है और सही तरीके से करने के लिए बोला जाता है।

0: बहुत सी बार मरीज आते हैं कि सर हमने मोबाइल में देख के या किसी ने हमको बताया कि इसके लिए आपको ऐसा करना है, बट हमारे दर्द और बढ़ गया है जी। तो वह अपन जब हम उनसे पूछते हैं, बात करते हैं कि आपने क्या क्या आप घर पे अभी आप करते हो, तो बहुत सी बार थोड़ा वो गलत बताते हैं।
1: हाँ।
0: तो इसमें एक तो ये होता है कि गाइडेंस के साथ आप किसी की सलाह के साथ आपको काम करना चाहिए, और पर्टिकुलर किस मसल्स के लिए या इस जो आपको तकलीफ हो रहा है, जैसे गर्दन की अपन आज बात कर रहे हैं कि गर्दन में तकलीफ होने के बाद अपन को क्या नहीं करना चाहिए जिससे अपन दर्द को बढ़ाए नहीं, क्या चीजें अवॉइड करें और क्या चीज एक्सरसाइज करें जिससे अपन को फायदा मिले। ऐसे ही गर्दन में मतलब कमर में होता है, घुटनों के लिए होता है, शोल्डर्स के लिए होता है, हर चीज के एक अपने पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है, वो करने से अपन को बिल्कुल बहुत अच्छे से आराम आता है।
1: यानी एलोपैथी के साथ हमको इस तरफ तो ध्यान हमेशा ही देना होगा कि अगर हम फिजियोथेरेपी करें तो ज्यादा बेटर।
0: और बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि आपको दोबारा वो बीमारी होने की चांसेस है
1: जी।
0: जी
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक स्वास्थ्य वर्धक कार्यक्रम आपकी सेहत। जिन भी श्रोताओं को इस कार्यक्रम में अपनी सर्वाइकल पेन यानी गर्दन की समस्या, गर्दन के दर्द की समस्या के बारे में जानकारी लेनी है, हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कमल सिंह धाकड़। तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से सर्वाइकल पेन के बारे में। हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 232593। झालावाड़ से बाहर के श्रोता जो हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, झालावाड़ के हमारे स्टूडियो के इस नंबर 232593 के पहले झालावाड़ का एसटीडी कोड 07432 लगाना ना भूलें। और डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता तो हमसे जब जुड़ेंगे तब जुड़ेंगे
0: जी जी।
1: लेकिन उनके बिहाफ पे हम जो आपसे जानना चाहते हैं उसमें एक सवाल और आता है कि सर्वाइकल पेन और गर्दन का दर्द, सामान्य गर्दन का दर्द जो कई बार नॉर्मली हो जाता है, तो उसमें हम अंतर को कैसे पहचान सकते हैं कि ये सर्वाइकल पेन नहीं होगा, ये तो नॉर्मली दर्द है।
0: जी, अपन कभी जो नॉर्मल सुनने में आता है कि मैं सुबह उठा हूँ और मुझे गर्दन में दर्द आ रहा है, मुझे गर्दन इधर उधर घुमाने में तकलीफ आ रही
1: अक्सर
0: है, अक्सर
1: है।
0: ये चीजें हो जाती है, तो इसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं कि बेड पोस्चर, जैसे किसी ने मोटा पिलो यूज में लिया हो या सोने के तरीके में आप गलत तरीके से सोए हो, तो गर्दन पे लगातार जो रात को खिंचाव रहता है उस कारण से वो दर्द चालू हो जाता है। एक नॉर्मल दर्द होता है, आप सिंपली जो डॉक्टर से सलाह करके एक या दो दिन की मेडिसिन लेते हैं, वो दर्द उसमें चला जाता है। अब आप बात कर रहे हैं, अपन जो बात कर रहे हैं सर्वाइकल पेन हो गया, वो दर्द इतना जल्दी नहीं जाता है, उसमें पेशेंट के जब सुबह उठता है तो स्टिफनेस महसूस होती है, उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे पता चलता है कि मुझे बाहों में उंगलियों में भी हल्की सी झंझनाहट महसूस होने लग गई है, सिर भारी भारी रहने लगता है। तो अपन इसको सर्वाइकल पेन की तरफ देख सकते हैं कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जो उसका फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा फिर डॉक्टर वो करवाते हैं
1: जी।
0: जैसे एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, उसमें पता चलता है कि फिर आपको क्या तकलीफ है
1: जी।
0: जी
1: सर, अभी आपने कहा कि मोटा तकिया या हमारे सोने का गलत पोस्चर होता है
0: जी,
1: तो दो बातें मेरे जहन में हमारे जहन में ये आ जाती हैं कि एक तो मोटा तकिया, तो उसकी थिकनेस को कैसे मापें कि किस व्यक्ति को किस तरह का तकिया लगाना चाहिए।
0: देखो, आइडियली बोला जाता है कि 1 से 1.5 इंच वाला जो नॉर्मल सॉफ्ट पिलो होते हैं वो बेस्ट होता है सबके लिए, वही अच्छा होता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो बड़ा है या छोटा है, सिंपली तो लगाना नहीं चाहिए जितना, अगर आप पिलो यूज में नहीं लेते हो तो वो ज्यादा बेटर है अपने पोस्चर के लिए। बट फिर भी अपन पिलो यूज में लेते हैं तो 1.5-2 इंच वाले भी उससे पिलो से ज्यादा मोटा पिलो यूज में नहीं लेना चाहिए, तो वो फर्दर अभी नहीं तो आपको धीरे धीरे धीरे बाद में कभी भी वो दर्द चालू हो सकता है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो सर ये जो बच्चे हैं अब 8 साल 10 साल या 12 साल के बच्चे हैं, ये पिलोज का यूज करना शुरू कर देते हैं
0: जी,
1: तो क्या बच्चों को पिलो से कब तक दूर रखना चाहिए?
0: जितना हो सके पॉसिबल उनको गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए कि इस चीज़ से अपन को क्या तकलीफ हो सकती है, और ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि बिल्कुल अपन उनको बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोले या बिल्कुल छोड़ने के लिए बोले। तो अपन जो बात कर रहे थे कि एक नॉर्मल पतला पिलो उनको शुरू से सिखाया जाए कि ये अपने स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी चीज़ है
1: जी।
0: क्योंकि आजकल जो पढ़ाई होने लगी है, ऑनलाइन क्लासेस जो अपन बात करते हैं तो बच्चों के मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ही पढ़ने को मिलता है, तो अगर वो पहले अपना पोस्चर अगर ठीक नहीं रखेंगे फिर दिन भर मोबाइल पे या कंप्यूटर पे पढ़ाई करेंगे तो उनके कंटिन्यू जो लंबी सीटिंग हो जाती है, अपने पोस्चर गर्दन को स्टेबल एक जगह रखते हैं तो फिर धीरे धीरे उनको ये तकलीफ होने लग जाएगी। तो ये अपन को अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ या जो डेली अपने एक्टिविटीज जो अपन सिखाते हैं उनके साथ साथ अपन को ये चीज़ें भी सिखानी पड़ेगी उनको कि अपने शरीर के लिए क्या चीज़ क्या पोस्चर बेस्ट है
1: जी। हमारे किसी श्रोता का फोन आया और वो कट गया, ठीक है सर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आपने कहा

0: रहता है कि हमारे सोने का गलत पोस्चर,
1: जी
0: तो सोने का सही पोस्चर क्या है, थोड़ी सी ये जानकारी दें।
1: जो नॉर्मल अपन जो अगर जैसे भी सोते आप सीधे, जैसे अपन बोलते हैं ना कि अपना सिर छत की तरफ है सीधा, जिसको अपन बोलते हैं कि सीधे सोना हो गया, या करवट लेके आप सो सकते हो, बिल्कुल आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। करवट लेके आप सोते हो तो बिल्कुल आप तकिया लगाइए, सीधे लेटते हो तो भी आप तकिया लगाइए। सोने में ऐसा नहीं है, वो होता है ना कि आप बहुत मोटे पिलो यूज में लेके सो रहे हो, आप बहुत लंबे टाइम तक, आजकल टीवी देखने का एक ट्रेंड चलता है, तो आप पीछे गर्दन के पीछे बहुत अच्छे मोटे पिलो लगा के बैठे बैठ के आप टीवी देखते हो कंटिन्यू, तो उससे क्या गर्दन पे खिंचाव रहता है। तो इन चीजों में अपन को थोड़ा हैबिट में अपना क्या सुधार करना पड़ेगा।
0: जी कई बार लोग कहते हैं कि सीधे नहीं सोना चाहिए, हमेशा करवट लेके सोएं, उसमें भी कई बार आता है कि दाईं करवट लेके सोएं या बाईं करवट लेके सोएं, तो क्या इन चीजों का भी फर्क पड़ता है?
1: देखिए सर, ये इतना कह नहीं सकते कि इतना कोई फर्क पड़ता है, ये एक सिंपली हर चीज जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता है, बहुत सारे बोलते हैं कि हमें गैस की प्रॉब्लम रहती है, या तो डॉक्टर सिंपली सलाह करते हैं, देते हैं कि ठीक है आपको ऐसा प्रॉब्लम है या सीधा लेटने में आपको तकलीफ है तो आप इस करवट सो जाइए। अच्छा। बहुत सारे पेशेंट हमें कंप्लेन करते हैं कि हमें दाईं करवट या बाईं करवट सोने में कंधे में भी दर्द आता है, तो फिर हम उनको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कि अगर आपको दाईं तरफ सोने में कंधे में या कहीं भी आपको दर्द आ रहा है तो आप उस साइड पे करवट लेके ना सोएं, सीधा लेटिए, उसका अपोजिट साइड पे आप करवट लेके लेटिए।
0: जी, सर्वाइकल पेन के इलाज में फिजियोथेरेपी की कितनी भूमिका है सर? जैसे अभी हमारी बात हुई थी कि हम एलोपैथी की दवाइयाँ लें साथ ही फिजियोथेरेपी लें, तो एलोपैथी की दवाइयों के साथ फिजियोथेरेपी कितना मैटर करता है कि हम उसके साथ चलें?
1: जी सर, मैं आपको बताना चाहूँ कि फिजियोथेरेपी जो अपन पहले बात कर रहे थे, मैं उसी बात को कंटिन्यू कर,
0: जी अपनी बात शुरू करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। लगता है कि कोई गलत फोन किसी ने गलती से ये हमें फोन लगा दिया है, या हम प्रॉपर उनसे जुड़ नहीं पा रहे नेटवर्क इशू की वजह से। हाँ, तो सर आप उसके बारे में बता रहे थे कि मतलब फिजियोथेरेपी की भूमिका कितनी है,
1: भूमिका
0: सर्वाइकल पेन।
1: जी जैसे किसी को भी दर्द है, बहुत लंबे टाइम से किसी पेशेंट को दर्द आ रहा है, तो डॉक्टर उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास सलाह देते हैं, फिजियोथेरेपी के लिए सलाह देते हैं। तो अब मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आप पेशेंट को पहले काउंसलिंग किया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपके लिए क्या करना ठीक है। जैसे अपन बात कर रहे हैं आज गर्दन के दर्द के लिए, आप कोई हार्ड वर्कर है जो वजन उठाने का उनका जो प्रोफाइल है, उनका काम ही है कि उनको भारी वजन उठाना पड़ता है, तो उनको हम बताया जाता है कि आपको आपके काम में कैसे ही मदद करनी है, कि आपको क्या पोस्चर रख के कैसे आपको अपने काम करें। जैसे किनका ट्रेवलिंग का काम रहता है ज्यादा, तो हम उनको बताया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि गर्दन के दर्द अगर आपको है, तो फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट उनको सलाह करता है कि आपको बाइक हो गया, कार हो गया, ट्रेवलिंग हो गया, आप थोड़ा उसको अवॉइड करना चाहिए, भारी वजन उठाने के लिए आपको थोड़ा उसको अवॉइड करना चाहिए, इन चीज़ों के लिए उनको सलाह दी जाती है। आपको सोने के लिए जैसे अपन पहले बात कर रहे थे कि उनको बताया जाता है कि आप पिलो यूज में ना लें, लो तो आप 1.5 या 2 इंच से ज़्यादा मोटा पिलो यूज में ना लो। पर्टिकुलर फिर जैसे उनको गर्दन में दर्द है, तो डॉक्टर उनको बताता है फिजियोथेरेपिस्ट कि आपको क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, उनसे उनको बहुत रिलीफ मिलता है, मोडालिटी साथ में यूज में लेते हैं। तो अपन जो गर्दन के साथ साथ जो व्यायाम उनको बताते हैं, जो एक्सरसाइज बताते हैं, वो उनके शोल्डर्स में भी यूजफुल होती है। उनके अगर कोई पेशेंट जो बहुत सारे माइग्रेन के लिए बोलते हैं कि हमें भी नॉर्मल ऐसे भी चक्कर आते हैं, तो वो जो एक्सरसाइज होती है वो उनके लिए वहाँ पर भी बहुत हेल्प करती है। जी,
0: तो वही मतलब कि वो आपके दैनिक दिनचर्या के बारे में भी आपको बताते हैं कि किस तरह आप
1: जी।
0: कहा जाता है कि मेरे अगले प्रश्न से पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: जी मैं डक से कवि अशोक कुमार सोनी बोल रहा
0: हूँ
2: सर।
0: अशोक कुमार सोनी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। सर्वाइकल पेन से जुड़ा अपना क्या सवाल है? हमारे डॉक्टर साहब सामने ही है, आप सवाल पूछिए।
2: मेरे ब्रदर के जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पिछले गले की सारी नसों के गर्दन के नसों में जो है दर्द होता है कुछ दिन तक, और फिर ब्लड प्रेशर यदि नॉर्मल हो जाता है
1: जी,
2: तो फिर वो नसें सही हो जाती है।
1: जी सर, उसमें कहीं ना कहीं उनके आपने पहले फर्दर पहले अगर इन्वेस्टिगेशन करवाया होगा तो उनके कहीं

0: कहीं कहीं जो अपने गर्दन की जो नसें होती है छल्ले उन पे उनके दबाव आ रहा होगा
1: जी।
0: तो अगर वो जब तक रिलीज नहीं होगा अपन प्रॉपर उसके लिए मेडिकेशन नहीं लेंगे तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि ब्लड प्रेशर होने से बॉडी थोड़ी अलग रिएक्ट करती है वो जो भी अपने गर्दन पे उन पर असर आता है तो चक्कर जैसा महसूस करने लगते हैं फिर
1: सही है,
0: जी जी जी तो उनको आप एक बार जैसे फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन को आपको दिखाने के लिए बोलना चाहिए तो वो गर्दन के लिए जैसे अपन हम अभी बात कर रहे थे कि प्रॉपर अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी गर्दन की जो नसें हैं ना वो क्या वीक हो चुकी है तो अगर वो उसके लिए एक्सरसाइज जो फिजियोथेरेपिस्ट उनको कसरत बताएंगे पर्टिकुलर कि आपको इस बार गर्दन के प्रॉब्लम के लिए क्या करना चाहिए वो उनको सलाह देंगे अगर वो अच्छे से उनको घर पे फॉलो करेंगे तो एक लिमिट के बाद 5 से 10 दिन बाद उनको आप देखोगे कि धीरे धीरे आराम मिलने लग जाएगा उनको बताया जाएगा उनका उनका जो दैनिक जीवन की उनके कार्यशैली उनके बारे में पूछा जाएगा तो अगर वो कुछ उनकी गलत तरीका होगा उठने बैठने का सोने का तो उनको अपन सुधार करने के लिए बोलेंगे तो आपको जब जी जी
1: हाँ तो आपकी इसी बात पे मुझे कुछ लाइनें याद आ गई।

0: उनको घर पे फॉलो करेंगे तो एक लिमिट के बाद 5 से 10 दिन बाद उनको आप देखोगे कि धीरे धीरे आराम मिलने लग जाएगा। उनको बताया जाएगा, उनका उनका जो दैनिक जीवन की उनके कार्यशैली उनके बारे में पूछा जाएगा। तो अगर वो कुछ उनकी गलत तरीका होगा उठने बैठने का सोने का, तो उनको अपने सुधार करने के लिए बोलेंगे। तो आपको
1: ये तो
0: जब
1: यहाँ
0: जी जी
1: तो आपकी इसी बात पे मुझे कुछ लाइनें याद आ गई
0: जी
1: कि
0: सर
1: गर्दन में दर्द यदि है भारी इससे पीड़ित है कई नर नारी।
0: जी
1: गर्दन में दर्द है भारी इससे पीड़ित है कई नर नारी। नियमित व्यायाम करोगे तो बीमारी से बचे रहोगे। ये
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ओके
1: ना
0: जी,
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू
1: ओके
0: सर।
2: ठीक है अशोक जी, बहुत धन्यवाद। हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि कई बीमारियां हैं जिनके इलाज तो हैं लेकिन वो जड़ से ख़त्म नहीं की जा सकती, या वो वापस लौट के आती हैं अगर हम दवाइयां लेने का क्रम ख़त्म कर दें। अगर क्या सर्वाइकल पेन के साथ भी ऐसा ही है कि फिजियोथेरेपी लेने के बाद इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है या नहीं किया जा
0: नहीं
2: सकता?
0: सर, हर बीमारी को वो जो सिंपली चीज़ें होती है, जैसे अपन सर्वाइकल पेन का बात करें या कमर के दर्द का बात करें या घुटनों के दर्द का बात करें, एक बार ये स्वस्थ इंसान को भी बीमारी चालू हो जाती है।
2: जी
0: तो इसका अगर प्रॉपर मेडिकेशन के साथ अपन फिजियोथेरेपी ले तो ये बिल्कुल रिकवर हो जाती है। बट पेशेंट को फिर अपन उसको बताया जाता है कि आपको क्या चीज़ें फॉलो करना है, उनकी वापस वही गलत आदतों की वजह से ये चीज़ें वापस
2: हाँ
0: चालू हो जाती है। जैसे अपन बात करें गर्दन का दर्द है, पेशेंट को आज वो फिजियोथेरेपी ले रहा था या मेडिकेशन पे चालू था, उसके बिल्कुल कंप्लीट ठीक हो गया, तो
2: जी
0: बाद में वो वापस धीरे धीरे अपना जो पुराना रूटीन था उस पर वो चला जाता है।
2: हाँ
0: वो वापस मोबाइल को ज़्यादा यूज़ में लेना, भारी वजन उठाना, ज़्यादा ट्रेवलिंग करना, मतलब अपने शरीर का ध्यान नहीं रखना, तो
2: जी
0: ये चीज़ें वापस फिर हो सकती है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से थोड़ा ध्यान रखोगे, फॉलो करोगे, तो आप इन चीज़ों से बचे रहोगे।
2: जी
0: जी
2: फिजियोथेरेपी करवाने का समय कितना रहता है? कितने समय तक हमें लगातार फिजियोथेरेपी लेनी होती है कि हम सर्वाइकल पेन को ख़त्म कर सकें?
0: नहीं, ये ऐसा डिपेंड करता है कि आपको दर्द कब से है।
2: अच्छा,
0: हाँ,
2: और
0: और
2: किस
0: जो
2: स्टेज पे है?
0: कितने स्टेज पे है, जैसे कोई पेशेंट कंप्लेन करता है कि सर मुझे अभी 5 दिन से दर्द है, उसका जब अपन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं एक्सरे या एमआरआई, उसमें कोई कंप्रेशन ना और कंप्रेशन नहीं आता है, तो वो
2: हाँ
0: 2 से 5 दिन में अच्छे से रिकवर कर जाते हैं।
2: हाँ
0: और कोई पेशेंट क्रोनिक होता है, जो है वो 6 महीने का पेशेंट हो या 1 साल से कि मुझे गर्दन में दर्द है, वो मेरा दर्द बढ़ते बढ़ते हाथ में भी आ रहा है, उंगलियों में भी आ चुका है,
2: हाँ
0: मुझे झंझनाहट महसूस होती है ना, मुझे सुन्नपन महसूस होने लग गया है, तो फिर ऐसे केस में थोड़ा वो लंबा चलता है, उनको 15 दिन या 20 दिन तक लग सकता है। और उनको प्रॉपर स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि आपको क्या नहीं करना है और क्या चीज़ें फॉलो करनी है।
2: जी
0: जी
2: सर, फिजियोथेरेपी जैसे हम करवाने जाते हैं तो जो हमने शुरुआत में बात की थी कि एक तरह से व्यायाम है,
0: जी
2: तो हम इस फिजियोथेरेपी के बाद जो सेशन हो जाता है इसके बाद योग और प्राणायाम, जो हमारे भारत में भी ट्रेंड चल भी रहा है और हमारी पुरानी परंपरा का भाग है,
0: जी
2: योग और प्राणायाम द्वारा इसको कितना इफेक्ट किया जा सकता है?
0: नहीं सर, हम खुद रिकमेंड करते हैं कि आपको ये चीज़ तो जो स्वस्थ है उनको भी करना चाहिए। अगर आप कंटिन्यू जो स्वस्थ पर्सन है और अगर वो योग या प्राणायाम करते हैं, तो आई थिंक उनको ये प्रॉब्लम होगी नहीं।
2: जी
0: अगर किसी को, आपने गर्दन की बात है या कमर की बात कर रहे हैं, अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो चुकी है, वो मेडिकेशन से या फिजियोथेरेपी से वो रिकवर कर चुका है, तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम उनको घर के लिए सलाह भी देते हैं कि आपकी ये बीमारी ठीक तो हो चुकी है, हम पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज बताते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज, जो व्यायाम नॉर्मल भाषा में अपन बोलते हैं जनरली, कि ये कसरत आपको लगातार करनी है। अगर वो
2: जी
0: कसरत वो करेंगे तो वो उसको प्रॉब्लम वापस नहीं होगी। जी
2: और सर, योग प्राणायाम की बात की तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि योग प्राणायाम का खास भाग है श्वसन क्रिया,
0: जी
2: तो श्वसन क्रिया का भी क्या इसमें एक रोल है हमारे सर्वाइकल पेन या हमारी नसों से?
0: नहीं, बिल्कुल ये चीज़ें थोड़ी बहुत इफेक्ट तो करती है। जैसे वो बहुत सारे बोलते हैं कि हमारा डाइजेशन बढ़िया, आप पहले बात कर रहे थे गैस होने से भी कभी
2: जी
0: दर्द हो जाता है, अगर ये चीज़ें रहती है, अगर आपको सर्वाइकल में कुछ तकलीफ़ है, तो ये इन चीज़ों से और बढ़ के सामने आती है, थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे अभी जो जिन भाई ने अपन से बात करी थी कॉलर
2: जी
0: ने, उन्होंने बताया कि उनके ब्लड प्रेशर होने के बाद, बीपी बढ़ने के बाद, उनके गर्दन के पीछे के नसों में दर्द
2: हाँ
0: रहने लगता है, फिर जैसे जैसे 2-3 दिन में वो कम होता है तो वो वापस दर्द खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गैस, जो पेट में गैस बनती है अपने, उनसे भी थोड़ा इनको फर्क पड़ता है।
2: तो श्वसन क्रियाओं का प्रभाव है मतलब?
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: जी
0: इसी
2: सर, ये बच्चों को

0: ही आजकल सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम हो गई है, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपके पास कई केस ऐसे आते होंगे,
1: जी
0: तो मतलब तब हमारी गर्दन जो होती है वो लोचदार होती है, नरम होती है, और बच्चों को पिलो कम लोग लगाते हैं या ना के बराबर लगाते हैं, तो ये बच्चों में क्यों आने लगी है?
1: सर, सबसे बड़ा जो अपन फर्स्ट में बात किया था कि आज की जीवन शैली में सबसे बड़ा कारण है मोबाइल,
0: जी
1: और सेकेंडरी लैपटॉप या कंप्यूटर जो अपन बात कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो गई, ऑनलाइन पढ़ाई को भी अगर अपन साइड पे रखें तो मोबाइल का जो देखने का एडिक्शन है बच्चों में वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और कंटिन्यू अपन एक ही पोजीशन में रख के मोबाइल को, जैसे गर्दन नीचे करके ही मोबाइल चलाया जाता है,
0: हाँ
1: तो वो
0: बिल्कुल
1: सेम पोजीशन में बच्चे एक एक या दो दो घंटे तक स्टेबल रखते हैं नेक को, तो उससे वो जो नसों में है वो तनाव पैदा होने लग जाता है। वो एक दिन धीरे धीरे धीरे धीरे फिर वो क्या दर्द में
0: तब्दील हो जाता है जी।
1: चेंज हो जाता है। तो इसीलिए आजकल के जो छोटे बच्चे हैं या यंग पीढ़ी में हैं, 10 15 20 साल के बच्चों में ये दर्द थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलने लग गया है। तो
0: जी
1: इसी को बस इसका एक ही है कि आप उनको थोड़ा
0: कम
1: मोबाइल से या इनसे थोड़ा दूर रखो।
0: जी।
1: जी,
0: खान पान का कितना असर पड़ता है
1: खान
0: सर?
1: पान का सर असर ये है कि कैल्शियम और विटामिन डी जो अपन बात करते हैं आजकल, ये बच्चे धूप में निकलना बंद कर दिया, या
0: बिल्कुल
1: बच्चों के
0: हाँ
1: साथ साथ बड़ों ने भी बाहर जाना बंद कर दिया है, धूप में कोई बैठता नहीं है। तो और खान पान जो आजकल मिलावटी चीज़ें बहुत आती है, तो उससे नस जो अपनी हड्डियां हैं और मांसपेशियां हैं उन पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है
0: जी
1: बच्चों में या बड़ों में। विटामिन डी जैसे अपन बात करते हैं, विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, तो प्रॉपर मिल नहीं पाता है। अब कैल्शियम नहीं मिलेगा तो हड्डियाँ कमज़ोर होती है,
0: जी
1: विटामिन B12 हो गया, डी हो गया, ये चीज़ें नहीं मिलेगी तो मांसपेशियों पे भी थोड़ा असर दिखता है। तो और अपनी जो बेड एफिड है, तो इन चीज़ों से फिर धीरे धीरे चीज़ें ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है। इसलिए बोला जाता है कि खाना और एक्सरसाइज ये तो नित्य जरूरी और अच्छा होना चाहिए।
0: जी पहले
1: आपको दूध मॉर्निंग या इवनिंग अगर आप दूध पी सकते हो, तो जैसे कैल्शियम के लिए अपन बोले जाते हैं, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आपको दूध पीना चाहिए। तो अगर अपन बाहर नहीं जा रहे हैं, धूप में नहीं बैठ सकते हैं, तो दूसरे सप्लीमेंट के तौर पे जैसे दूध हो गए या जो भी डेयरी प्रोडक्ट हो गए, अपन को यो यूज़ में लेना चाहिए। हेल्दी फूड खाना चाहिए, फल फ्रूट यूज खाना चाहिए। जी
0: तो सर आपने आधा जवाब तो दे दिया मेरे अगले सवाल का,
1: जी
0: लेकिन मैं फिर भी ये सवाल पूछना चाहूँगा कि बुजुर्गों और बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, शरीर
1: जी
0: भी थोड़ा कमज़ोर होता है, किन बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चों में और बुजुर्गों में सर्वाइकल पेन की समस्या उत्पन्न न हो या नसों से संबंधित समस्याएं कम हों उनके अंदर?
1: जी सर, वो पहला तो पोश्चर हो गया, बैठने का या उठने का,
0: जी
1: लेटने का तरीका। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि अपनी हैबिट क्या है, ये चीज़ उसी से होती है। ऐसे सिंपली ऐसा नहीं होता कि खान पान से कि सर्वाइकल का दर्द चालू हो गया है, ऐसा उससे खाने पीने से नहीं होता है, ये
0: जी
1: अपनी बेड हैबिट से ही। अब अपन गांव में भी बात करते हैं कि पलंग पे सोते हैं जो, तो वो एक झूले नुमा टाइप हो जाता है। तो अगर आपको
0: हाँ
1: दर्द है तो एक टाइम के बाद वो जो गर्दन पे खिंचाव रहता है या कमर पे भी खिंचाव होता है, तो धीरे धीरे उससे वो दर्द चालू हो जाता है। सेकेंडरी हो गया मोबाइल या लैपटॉप, अपन वापस उन्हीं चीज़ों पर आएंगे। आपको अगर इनका थोड़ा एडिक्शन अपन को कम करना पड़ेगा, वेट आप हैवी वेट आप जो जो प्रोफाइल है तो आपको उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रेवलिंग आप ज़्यादा करते हो तो आप उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इन चीज़ों में अपन को धीरे धीरे थोड़ा बचना पड़ेगा। और हेल्दी फूड जो आप बात कर रहे हो, बड़ों में, बच्चों में या बुजुर्ग में,
0: बुजुर्गों में
1: एक
0: जी
1: लिमिट बाद इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो अपन को उनको होना चाहिए कि हेल्दी फूड में जैसे फल फ्रूट है उनको देने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। दूध हो
0: वजन नहीं
1: गया,
0: उठाएं बड़े
1: जी,
0: बुजुर्ग।
1: बड़े बुजुर्ग वजन ना उठाएं। नित्य व्यायाम जो आप पहले अपन बात कर रहे थे,
0: हाँ
1: प्राणायाम या योगा, जो जो अपने सेहत के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग जो अपन को पॉसिबल हो वो चीज़ अपन को करना चाहिए।
0: सर हमारे एक कॉलर और हमारे साथ हैं।
1: जी सर,
0: हेलो
2: हेलो सर।
0: जी नमस्कार,
2: हाँ सर नमस्कार, बीरमलाल।
0: बीरमलाल जी बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से।
2: मारे पापा जी का आपका गला दुखते सर, पढ़ के था नहीं जो मर गए
0: तो उनकी गर्दन में दर्द रहता है क्या?
2: सर।
0: अच्छा
2: हाँ श्यामलाल जी हमारे का
0: अच्छा
1: एक बार वापस
0: तो
1: बोलिए।
0: आप बताएं कि उनको दिक्कत क्या आ रही है,
2: हाँ
0: क्या क्या समस्या हो रही है?
2: गाड़ी चलाओ जी, मैं भी सूझ जाए
1: पैर की बात कर।
0: अच्छा पैर पैर सूज जा रहे हैं उनके।
1: जी, आप उनको एक बार, आप अगर पैरों में उनके कोई तकलीफ है, उनकी उम्र कितनी होगी? जी, उनकी उम्र कितनी है?
2: हो गया 18 19 20 21 22 तो होगा।
0: आप आपके

0: पिताजी के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, कितने साल के हैं?
1: होगा
0: 50, 50 से
2: ना,
0: ऊपर होंगे।
2: उनको एक बार आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उनकी जांचें होगी कि उनके पैरों में सूजन कैसे आ रही है, कि कहीं ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कमर में या कोई। हाँ, वो कहीं ना कहीं उनके चोट होगी, अंदरूनी चोट होगी, हड्डी में कहीं मांस में लगी होगी ना, तो वो पहले जांच करवाएंगे। जांच के बाद पता चलता है कि कहाँ लगी हुई है और क्या कैसे है, तो फिर उस आधार पे उनका अपन ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है साहब,
0: है ना? ठीक है, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, है ना, वो बताएंगे आपको कि उनके साथ समस्या क्या है। सर, हम कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं और किन लोगों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने का खतरा अधिक रहता है? सर,
2: हाँ जी, ये वापस अपन उसी बात पे आते, जो
0: जिनके पोस्चर
2: पोस्चर बेड पोस्चर होगा, हैबिट उनकी जो थोड़ा गलत होगा, चांसेस ज़्यादा। ये अच्छा क्वेश्चन, एक आपने अच्छा सवाल किया है।
0: जी सर,
2: जो ज़्यादा मोबाइल यूज में लेते हैं, ज़्यादा लैपटॉप या कंप्यूटर यूज में लेते हैं, ट्रेवलिंग ज़्यादा होता है, जिनका बेड पोस्चर रहता है, या जो भारी वजन उठाने के जो वर्कर क्लास होती है, जो दिन भर भारी वजन उठाते हैं, कंधों पे उन पे खिंचा हुआ आता है, इन चीज़ों इनमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं।
0: जी
2: जी
0: सर, हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे कार्यक्रम के इस भाग तक के प्रायोजक थे बालाजी ऑर्थोपेडिक, तो हम एक छोटा सा विराम लेंगे, उसके बाद वापस आपसे चर्चाओं पर आते हैं।
3: अत्याधुनिक तकनीक एवं मशीनों से
4: हड्डी, पेट, बच्चेदानी, पथरी और बच्चों के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा,
3: आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत
4: निःशुल्क इलाज,
3: 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध,
4: डॉक्टर मुकेश शर्मा
3: और दिलीप शर्मा के नेतृत्व में
4: हर प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं हर समय उपलब्ध,
3: बालाजी ऑर्थोपेडिक एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: आनंद विहार कॉलोनी, कोठी रोड, झालावाड़।
3: संपर्क करें 8306884563 पर।
5: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे बालाजी ऑर्थोपेडिक एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आनंद विहार कॉलोनी, कोठी रोड, झालावाड़।
0: सर, कार्यक्रम के अगले भाग में आपका फिर से स्वागत है। सर, ये जो सर्वाइकल पेन की हम बात कर रहे हैं, क्या इसमें सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है?
2: जी, सर्वाइकल पेन हो गया, या जैसे कमर का, गर्दन का या कमर का दर्द हो गया, सर इसमें सर्जरी एक जो लास्ट स्टेज अपन बात करते हैं कि नॉर्मल जैसे पेशेंट आया है, अब उसने इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है, MRI करवा के वो लेके आया है, उसमें जब देखा जाता है कि उनके छल्लों के बीच में कितनी गैप, कितना कम हो गया, बोलते ना कि नसों पे दबाव आ रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में और उसको देखने से लगता है कि एक ये फिजियोथेरेपी से या मेडिकेशन से ठीक नहीं हो सकता
0: जी,
2: तो फिर उसमें एक लास्ट स्टेज पे सर्जरी के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो कि जैसे पेशेंट कंप्लेन करते हैं तो मुझे कि हाथों में बहुत ज़्यादा सुनपन आता है या बहुत ज़्यादा झंझनाहट आ रही है, जलन जैसा महसूस होता है, तो डॉक्टर पहले कोशिश करता है, ट्राई करता है कि मेडिकेशन से या फिजियोथेरेपी से रिकवर हो जाए। इन दैट केस जैसे वो नहीं ठीक होता है तो लास्ट स्टेज डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको सर्जरी की ज़रूरत हो। जी सर।
0: सर, कहते हैं कि वो दर्द होता है गर्दन में, तो आजकल वो कोल्ड बैग, हॉट बैग आने लगे हैं जिनसे वो सिकाई कर ली जाती
2: जी,
0: है
2: जी, जी।
0: तो ये कितने हद तक सही है?
2: ये बिना डॉक्टर के, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट या बिना डॉक्टर के सलाह से घर पे नहीं करना चाहिए, एक बार डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। एक जो क्रोनिक हम बोलते हैं कि जो पुरानी बीमारी हो जाती है, तो उसके लिए हम गर्म सिकाई के लिए उनको बोला जाता है, गर्दन के लिए कभी भी हम ठंडे सिकाई के लिए नहीं बोलते। ठंडा सिकाई अपन वहाँ पेशेंट को बोला जाता है जो अक्यूट हुई, अभी लगी हुई है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि नसों में सडनली खिंचाव आ गया है, चलते चलते पैर में मोच आ गई है, या कहीं कोहनी में खिंचाव आ गया है, घुटनों में चलते चलते कहीं ट्विस्ट हो गया है, तो अक्यूट कंडीशन के लिए 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर ठंडे सिकाई के लिए बोला जाता है। इससे धीरे धीरे जैसे अगर पेशेंट पुराना हो जाता है, उनके चोट पुरानी है या मार पुरानी है, तो फिर उसके लिए गर्म सेक के लिए बोला जाता है।
0: जी सर, हमारे साथ एक और कॉलर है। हेलो हेलो हेलो, लगता है हमारी आवाज़ उनको नहीं मिल पा रही है या फ़ोन कट गया है। सर, बातें आपसे बड़ी अच्छी चल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी पसंद का कोई एक गीत भी हो जाए तो कार्यक्रम थोड़ा और रोचक हो जाए।

0: आएगा, तो
1: जी
0: कोई गीत
1: सर,
0: आप हमें बताएं जो आप सुनना चाहते हैं।
1: चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी
0: बिल्कुल सर,
1: अलविदा ना कहना।
0: ठीक है सर, हम भी चाहते हैं कि आप हमें कभी अलविदा ना कहें, हम इसी तरह मिलते रहें, आपसे जानकारियां लेते रहें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: सर कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। इस मधुर से गीत को जो आपने हमें और हमारे श्रोताओं को भी सुनवा दिया।
1: जी सर, धन्यवाद।
0: सर इस गीत के साथ ही मेरे दिमाग में एक सवाल आया। पहले हमारे एक श्रोता का फोन आ रहा है तो हम उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो सर, जिस सवाल के लिए मैं पूछ रहा था, जैसे हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी की यानी एक्सरसाइज की, दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी, मैं आपसे एक बार पहले पूछ चुका कि दवाइयों के साथ फिजियोथेरेपी लेना जरूरी है क्या? अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी यानी एक्सरसाइज के साथ दवाइयों का कितना महत्व है?
1: हाँ, अपन इसको 50-50 डाल सकते हैं कि हम जो पेशेंट कभी हमारे पास डायरेक्ट भी सीधे आ जाते हैं कि हमने पहले भी आपको दिखाया हुआ था तो मुझे वापस गर्दन में दर्द चालू हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम भी एक बार जो ऑर्थोपीडियशियन या न्यूरो वाले हैं उनके पास पेशेंट को रेफर करते हैं कि इसके होने के पीछे का कारण क्या है, कारण जानने के लिए कि वापस कहीं दबाव तो नहीं आ गया है या किस लेवल पर कितना दबाव आया है। तो ये एक ऑर्थोपीडियशियन या न्यूरो वाले ही उसको रिकमेंड करते हैं कि आपको MRI कराना चाहिए। तो डॉक्टर को वो जो मेडिसिन लेते हैं, फिर अगर उसमें फिजियोथेरेपी की नीड होती है तो बकायदा डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आपको मेडिसिन के साथ साथ फिजियोथेरेपी लेना चाहिए तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। जी सर,
0: यानी मेडिसिन तो आपको लेनी ही होंगी।
1: हाँ
0: सर, ये हमने बात की एलोपैथी की और फिजियोथेरेपी की, आयुर्वेद या होम्योपैथी, क्या ये भी इतनी ही कारगर हैं गर्दन के दर्द में, सर्वाइकल पेन में, कि हम इससे भी काम चला सकते हैं?
1: नहीं सर, आयुर्वेद और होम्योपैथी अपन बिल्कुल ले सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे ये वाला मेडिसिन लेने से मेरा शरीर में ये सूट नहीं कर रही है, मुझे इससे एलर्जी होती है, तो बहुत सारे पेशेंट आयुर्वेदा की तरफ चले जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट जिनको एलोपैथी की तरफ चले जाती है। सबका अपना पर्सनल एक ओपिनियन होता है कि उनको सब हर विभाग में सब जगह इनके हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, पर किसी को इंस्टेंट आराम चाहिए तो वो एलोपैथी की तरफ दौड़ते हैं। अवेयरनेस के अकॉर्डिंग आजकल सब जानने लगे हैं कि फिजियोथेरेपी में कोई मेडिसिन नहीं दिया जाता है, वहाँ पे एक्सरसाइज के साथ मोडालिटी मशीन के साथ इसमें अपन को सुधार किया जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है तो फिजियोथेरेपी की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। तो ये एक एक नया फील्ड है कि फिजियोथेरेपी से आप भी बिल्कुल आप बहुत जल्दी और आराम पा सकते हो।
0: जी, मेरे जहन में एक और सवाल सर आया कि जैसे हम फिजियोथेरेपी ले रहे होते हैं तो एक लंबे समय तक भी हमने फिजियोथेरेपी ली और उससे आराम मिलने लग जाता है, जब वो वापस आता है तो फिर क्या कुछ मशीनें, जैसा आप अभी बता ही रहे हैं कि कुछ आप रिकमेंड कर देते हैं कि भाई इन मशीनों से आप ये एक्सरसाइज करें, तो खुद एक्सरसाइज करने में और एक फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेने में कितना अंतर आ जाता है?
1: सर बहुत अंतर है वापस, क्योंकि दर्द हुआ है तो जरूरी नहीं है कि आपको उसी प्रॉब्लम के कारण वो दर्द हुआ है।
0: अच्छा।
1: तो पहले किसी के अपन बोलते हैं ना लाइक वो, तो वो जिम भी जाते हैं तो किसी के गाइडेंस के अंदर ही अपन जिम करते हैं। तो ऐसे अगर आपको कहीं कोई तकलीफ आई है गर्दन में, कमर में, कहीं भी पूरे शरीर में कहीं भी आपको कोई दर्द है तो आप किसी उससे के जो एक्सपर्ट होंगे उनकी सलाह के आधार पे काम करो तो वो बहुत अच्छी बात है। अपन पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख के ये गर्दन का या कमर का मैंने एक्सरसाइज करी पर मुझे धीरे धीरे दर्द कम होने की जगह वो जो और बढ़ गया है। तो आपको एक बार सलाह लेना चाहिए कि डॉक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट से, कि मुझे ये तकलीफ है तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं या बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको नित फिजियोथेरेपी लेने की भी नीड नहीं होती है, तो उनको फिजियोथेरेपिस्ट एक डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप घर पे रह के ये वाली कसरत, ये वाली एक्सरसाइज कंटिन्यू करो और फर्दर एक फॉलोअप के लिए आप 5 या 7 दिन बाद आके डॉक्टर से वापस मिलो।
0: यानी प्रॉपर गाइडलाइन तो आपको हमेशा चाहिए होती
1: है। जी,
0: ताकि वो जरूरी नहीं है कि जिस नस के दबाव को सही किया गया हो दोबारा से उसी नस में दबाव, हो सकता है कोई और
1: दूसरी प्रॉब्लम
0: प्रॉब्लम हो गई हो। सर कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है तो मैं आपसे बस अब ये पूछना चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे जिससे वे इस समस्या से मुक्त रह सकें और एक स्वस्थ

0: लाइफस्टाइल का आनंद ले सके।
1: जी सुबह इवनिंग में थोड़ा जल्दी सोना चाहिए, सुबह
0: जी
1: जल्दी उठो, नित व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड में लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स और फल फ्रूट लेना चाहिए, और
0: जी
1: अपने पोस्चर में थोड़ा सुधार करना चाहिए
0: जी
1: धीरे धीरे। अभी की जीवन शैली के आधार पे जैसे मोबाइल का एक ट्रेड ज़्यादा चल रहा है, लैपटॉप या इनका, तो इनको धीरे धीरे स्क्रीन टाइम हम उनको कम करना चाहिए।
0: जी
1: जी
0: डॉक्टर कमल सिंह जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी
0: सर।
1: सर, धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी सेहत, आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। अब सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 3 देशों की यात्रा के अगले चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचेंगे। राज्य में ओबीसी की वास्तविक स्थिति और स्थानीय निकायों में उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी का आकलन करने के लिए आज से डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में प्रदेश में 33,969 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हुआ, ये पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक। और जोधपुर की पारंपरिक मोजड़ी को GI टैग मिला, स्थानीय कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलेगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 3 देशों की यात्रा के अगले चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और राजनीतिक सहयोग को प्रगाढ़ करने पर व्यापक चर्चा हुई। इससे पहले श्री मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर एचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है, हम अधीर है, बेसब्र है, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की वास्तविक स्थिति और स्थानीय निकायों में उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी का आकलन करने के लिए आज से डिजिटल सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। 23 जुलाई तक चलने वाले इस राज्यव्यापी सर्वेक्षण के दौरान ओबीसी परिवारों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी स्थिति का वास्तविक अध्ययन किया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश में लगभग 51,000 प्रगणक नियुक्त किए हैं। वहीं अजमेर में जिला स्तर पर करीब 82 और ब्लॉक स्तर पर 765 नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से सर्वे टीम और प्रगणकों को तकनीकी और प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन ने सभी ओबीसी परिवारों से सर्वेक्षण दल को सटीक और प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है। राज्य सरकार की ओर से महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत बकाया बिलों का भुगतान जल्द सुनिश्चित

0: किया जाएगा। वीबी जी राम जी आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक लेकर इसके संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने सामग्री मद के लंबित सभी बिल भुगतान आगे भेजने के लिए कहा। आयुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक नियोजन बढ़ाने, हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक काम शुरू करने और काम की मांग करने वाले प्रत्येक जॉब कार्डधारी परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों और जिला प्रशासन को समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा है। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से लागू इन नियमों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पूरा पालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण, घर घर कचरा संग्रहण, वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निस्तारण, खुले में कचरा फेंकने और जलाने पर रोक तथा जन जागरूकता कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। पाली जिले के खिवांदी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नामकरण अमर शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा के नाम पर किया गया है। उनके बलिदान दिवस पर आयोजित समारोह में इसकी घोषणा की गई। समारोह में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने भाग लिया। समारोह में शहीद के परिजनों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर भी लगाया गया। गौरतलब है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा का फाइटर जेट पिछले वर्ष चूरू जिले के भाणुदा गांव में क्रैश हो गया था। इस हादसे में वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 33,969 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हुआ है। ये जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11.54% अधिक है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्व चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कर संग्रहण में तकनीक तथा नवाचारों का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने वित्तीय वर्ष की पहली से अंतिम तिमाही तक राजस्व संग्रहण की गति बनाए रखने को कहा। जोधपुर की पारंपरिक मोजड़ी को जीआई टैग मिल गया है। केंद्र सरकार की जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने यह प्रमाण पत्र जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और ग्राम विकास सेवा संस्थान को प्रदान किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जोधपुर की मोजड़ी अपनी पारंपरिक कारीगरी, हाथ से की जाने वाली बारीक कढ़ाई, टिकाऊपन और विशिष्ट डिजाइन के लिए देश विदेश में अपनी पहचान रखती है। जीआई टैग मिलने से स्थानीय कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय बाजार में बेहतर पहचान और आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
1: करीब 200 वर्ष पुराने जोधपुरी मोजरी उद्योग का घरेलू बाजार वर्तमान में लगभग 100 करोड़ रुपए का है, जबकि करीब 10 करोड़ रुपए का निर्यात हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीआई टैग मिलने के बाद इसका निर्यात बढ़ेगा और अगले 2 साल में कारोबार दुगना हो सकता है। इसे जोधपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों परिवार लाभान्वित होंगे जो पीढ़ियों से मोजरी निर्माण से जुड़े हुए हैं। जीआई टैग मिलने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिलेगी। इससे फर्जी उत्पादों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। कारीगरों और उत्पादकों को बेहतर कीमत मिलने के साथ ही पारंपरिक कला और शिल्प का सांस्कृतिक संरक्षण भी होगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मोबाइल की लत से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का विशेष शोध करेगा। संस्थान लत से प्रभावित लोगों का चयन कर उनकी दिनचर्या, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का 6 महीने तक अध्ययन करेगा। रोग निदान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि शोध का उद्देश्य मोबाइल की लत से होने वाली समस्याओं के लिए प्रभावी आयुर्वेदिक उपचार विकसित करना है।
2: और हमारे जो यूथ है वो भी मोबाइल का प्रति बहुत एडिक्शन ही हो रहा है बहुत से लोगों को, कि वो मोबाइल के बिना रह नहीं पा रहा, क्योंकि मोबाइल में जो कंटेंट जो है उसमें वो बहुत से कंटेंट ऐसे हैं जो उसको नहीं देखने चाहिए। बहुत से हिंसक कंटेंट हैं, बहुत से

0: वल्गरिटी बढ़ाने वाले कंटेंट है, तो एक तो कंटेंट वाइज उस पर बच्चों पर ध्यान देना आवश्यक है, उनके पेरेंट्स को, कि बच्चा क्या देख रहा है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी तीन देशों की यात्रा के अगले चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचेंगे। राज्य में ओबीसी की वास्तविक स्थिति और स्थानीय निकायों में उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी का आकलन करने के लिए आज से डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में प्रदेश में 33,969 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हुआ। ये पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक और जोधपुर की पारंपरिक मोजड़ी को GI टैग मिला। स्थानीय कारीगरों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए अब चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं ऐश किंग और रिजवान अली खान साथियों की आवाजों में ये गीत फिल्म रश से। आशीष पंडित ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है प्रीतम ने।

अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है गीतकार असद भोपाली का जन्मदिन। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा गीतकार असद भोपाली पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में, यानी 9:30 पर, और ये कार्यक्रम पुनः आप सुन सकते हैं रात 9:30 पर। और अब कार्यक्रम चित्रलोक का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सरफरोश से। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें हैं, समीर के बोल, जतिन ललित का संगीत।

क्या यही प्यार है, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज़ में, रश्मि विराग और आनंद बख्शी के बोल हैं, अमाल मलिक और आजी बर्मन का संगीत।

अरमान मलिक की आवाज में अभी ये गीत सुन रहे थे आप। गीतकार और संगीतकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, रश्मि विराग की रचना थी, अमाल मलिक का संगीत। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म फना से सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में, प्रसून जोशी की रचना, जतिन ललित की बनाई धुन।

की आवाजों में और ये गीत बना आज के कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी पेशकश। कार्यक्रम चित्रलोक से अब आज्ञा दीजिए पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोठे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

असद भूपाली का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 जुलाई सन 1921 में हुआ। मुंशी अहमद खान के वो बड़े साहबजादे थे। जब उनका जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया असदुल्ला खान, फारसी

असद भूपाली का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 जुलाई सन 1921 में हुआ। मुंशी अहमद खान के वो बड़े साहबजादे थे। जब उनका जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया असदुल्लाह खान। फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। शहर भोपाल एक अदबी शहर, वहाँ की हवा में शायरी की खुशबू होने से कई शायर इस शहर ने दिए हैं। उन्हीं में से एक जगमगाता नाम है असद भोपाली साहब का।

असद भोपाली कोई 28 साल के रहे होंगे जब उन्होंने माया नगरी मुंबई का रुख किया, ताकि वो अपने शायरी का फन फिल्मी गानों की शक्ल में उभार सके। भोपाल से मुंबई आने वाले शायरों की फहरिस्त का अव्वल नाम है असद भोपाली साहब का।

स्नैन साहब। फिल्म के अभी दो गाने ही लिखे गए थे। लिखने वाले थे आरजू लखनवी साहब, जो तकसीम हिंदुस्तान के पेश नज़र पाकिस्तान चले गए थे। अब फाजली ब्रदर्स के सामने मुसीबत मुंह बाय खड़ी थी कि बाकी गाने किससे लिखवाएं। इसी दौरान भोपाल के सुगम चंद कपाड़िया, जिनके भोपाल शहर में दो थिएटर थे, मुंबई आए हुए थे। उन्हें जब इस बात की खबर मिली तो फाजली साहब के सामने उन्होंने मदद की पेशकश करते हुए मशवरा दिया कि भोपाल शहर में शायरों की कमी नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं एक मुशायरा भोपाल में करता हूँ, नामी गिरामी शोहरा इसमें भाग लेंगे। आप और आपके निर्देशक साहब जिस किसी शायर से मुतासिर हों उससे बाकी गाने लिखवा लें। तजवीज फाजली ब्रदर्स को पसंद आई, भोपाल में मुशायरा हुआ। फिल्म के प्रोड्यूसर फाजली ब्रदर और एस एफ हसनैन साहब मुशायरे में आए। जो शायर उन्हें सबसे अच्छे लगे वो थे असद भोपाली। फिल्म दुनिया के बाकी गाने फिर उन्हीं से लिखवाए गए। इस तरह से उनकी फिल्मी गीतकारी के रूप में पेश कदमी हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं हम सब उस्ताद हैं, इस फिल्म का किशोर कुमार का गाया हुआ ये।

असद भोपाली का मुंबई आना किस तरह हुआ ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। फाजली ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दुनिया। निर्देशक थे SF

फिल्म दुनिया में असद भोपाली के दो गाने थे, रफी साहब का गाया हुआ रोना है तो चुप चुप के रो, आंसू न बहा आवाज न हो। सुरैया का गाया हुआ गाना था अरमान लुटे दिल टूट गया, दुख दर्द का साथी छूट गया। अगले साल यानी 1950 में फिल्म आधी रात के दो गाने लिखने का उन्हें ऑफर मिला, इधर तो आओ सरकार, किसी की जीत किसी की हार, और दिल ही तो है तड़प गया, दर्द से भर न आए क्यों। ये दोनों गाने लता मंगेशकर ने गाए थे, संगीतकार थे पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम। अब आपको सुनवा रहे हैं आगे बढ़ने से पहले ठाकुर जरनैल सिंह फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना जिसे गाया है आशा भोसले ने।

सन 1950 में ही एक और फिल्म के लिए उन्होंने गाने लिखे। वो फिल्म थी निर्दोष। अगर आपको याद हो तो मुकेश साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। संगीतकार थे श्याम सुंदर।

सन 50-51 के आसपास बी.आर. चोपड़ा साहब ने एक फिल्म अफसाना का निर्माण किया था। अशोक कुमार और वीणा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के संगीतकार थे पंडित हुसैन लाल और पंडित भगत राम। कुल 9 गाने थे फिल्म में, इनमें से 6 गाने लिखे थे असद भोपाली साहब ने और काफी मकबूल भी हुए थे।

फिल्म अफसाना एक सफल फिल्म थी और इसका संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ था। असद भोपाली को इसके बदले मिली एक फिल्म राजपूत, जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। उन दिनों साल में इक्का दुक्का फिल्में बनती थीं। काम पाने के लिए स्ट्रगल और कंपटीशन बहुत कड़ा हुआ करता था। इसी की एक मिसाल 1954 में असद भोपाली को फिल्म गुलबहार में एक गाना लिखने का मौका मिला, जिसका संगीत खयाम साहब ने दिया था। इस फिल्म के दो संगीतकार थे, एक खयाम साहब और दूसरे धनी राम। दूसरे गीतकारों में थे जानेसार अख्तर, कैफी आजमी और शेवन रिजवी साहब। असद भोपाली का लिखा हुआ गाना था मुबारक बेगम का गाया हुआ, कलियों को चूमूं मैं तारों से खेलूं। दोस्तों 1949 से 1990 तक असद भोपाली ने कुल 100 के आसपास फिल्मों में गाने लिखे। करीब करीब

400 के आसपास गाने हैं। असद भोपाली साहब का लिखा हुआ टावर हाउस फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना है, लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है।

पंडित हुसन लाल, पंडित भगत राम, सी राम चंद्र, खय्याम, हंसराज बहल, लच्छी राम, धनी राम, दत्ता राम, पंडित शिव राम, श्याम सुंदर, एम दत्ता, नौशाद, ए आर परेशी, चित्रगुप्त, रवि, सी अर्जुन, सोनी कोमी, राजकमल, लाला सत्तार, हेमंत कुमार, मानस मुखर्जी, कल्याण जी आनंद जी, इतने सारे संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया। सबसे ज्यादा काम उन्होंने गणेश और उषा खन्ना के साथ किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी आनंद बख्शी साहब के साथ साथ असद भोपाली से गाने लिखवाए थे। फिल्म पारसमणि के जो दो गाने हैं, वो जब याद आए, बहुत याद आए, और हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये काफ़ी मकबूल हुए थे।

अपने जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक के आसिफ साहब का एक अनोखा शाहकार था फिल्म लव एंड गॉड। इस फिल्म के लिए भी असद भोपाली साहब ने अपनी कलम का सही इस्तेमाल किया। नौशाद साहब का संगीत सब कुछ अमर सा लगता है।

सन 1989 में सूरज बड़जात्या ने बड़ी ही खूबसूरत प्रेम कहानी बनाई मैंने प्यार किया। इस फिल्म का कबूतर जा ये गाना सुपर डुपर हिट रहा, पर अफसोस इस गाने को जो सर्वश्रेष्ठ गाने का पुरस्कार मिला उसे लेने अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे असद भोपाली साहब भोपाल से मुंबई न आ सके।

9 जून सन 1990 को इस शायर गीतकार असद भोपाली ने बगैर किसी अहलो अयाल के अपने शहर भोपाल से दुनियाए फानी को अलविदा कहा।

0: आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था गीतकार असद भोपाली पर, शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। और मुंबई की इस झमाझम बारिश में हो रही है श्रोताओं की बातचीत की बरसात और साथ में पड़ रही है गानों की फुहार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातचीत का, देखते हैं ये पहला कॉल किसका आया है। हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: विराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान जी, बताइए क्या हाल है आपका और सीहोर का क्या हाल है?
1: सीहोर में दीदी बारिश हो रही है और हमारा हाल भी अच्छा है दीदी। हम खेती किसानी करते हैं और हमारे इधर सोयाबीन और मक्का की बुआई हो चुकी है दीदी। 12-13 दिन की फसल हो चुकी है हमारे इधर।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है। तो आपका अपना क्या शौक है बताइए
1: दीदी? मुझे तो क्रिकेट देखना का बहुत शौक है और मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, अब तो नहीं खेलता हूँ दीदी।
0: अब क्यों छोड़ दिया
1: दीदी? अब क्या है, खेती किसानी में रहते हैं ना, इसलिए टाइम नहीं मिलता दीदी।
0: तो क्रिकेट खेलने के शौकीन रहे तो रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का बहुत चार्म रहा है, तो आप सुना करते थे क्रिकेट कमेंट्री रेडियो पर?
1: जी दीदी, हम बहुत सुनते थे। पहले क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी दीदी, तो हम रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे दीदी और बहुत अच्छा लगता था हमको।
0: जी जी, और एक अलग नॉस्टैल्जिया होता था रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का, एक ही रेडियो और चार चार पांच पांच लोग मिल के सुना करते थे, है ना, वो गजब के दिन थे।
1: चार पांच क्या, हमारे यहाँ तो दीदी पूरे गाँव के करीबन 20-25 इकट्ठा लोग हो जाते थे गाँव में से, फिर सुनते थे दीदी।
0: एक घर में रेडियो होता था और आंगन की मुंडेर पर रख दिया जाता था और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रेडियो सुनते थे, है ना। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है खुददार और गाने के बोले तुम सा कोई प्यारा मासूम नहीं है, ये वाला भी सुनना है दीदी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया, सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते मैम साहब।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं राजस्थान के डीडवन और कुसावन जिले के छोटी बेरी गांव से सिकंदर खान बोल रहा हूँ जी।
0: जी बताएं सिकंदर जी, क्या हाल है? ये कोयल की आवाज आ रही है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बाघ से बोल रहे हैं क्या किसी?
1: नहीं एक्चुअल में क्या, अभी मैं खेत में बैठा हुआ हूँ तो वहाँ से कॉल कर रहा हूँ आपको।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। बारिश नहीं हो रही है
1: राजस्थान में? अभी एंट्री हो रही है धीरे धीरे दक्षिण राजस्थान में, तो मानसून आ गया अभी।
0: बढ़िया, ये कोयल की कूक तो बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी मीठी तान छेड़ी है कोयल ने। कौन कौन से पेड़ हैं खेत के आसपास?
1: खेत के अंदर तो ये जामुन के हैं, पपीते हैं, आम वगैरह है।
0: तो खेत में किस चीज की बुआई चल रही है अभी?
1: अभी तो ये मानसून की बारिश में जो ये बाजरा है, गंवार है, ये मोठ वगैरह की बिजाई चल रही है जी।
0: और उसके बाद फिर धान की बुआई होगी जब बारिश होगी, तब
1: फिर वो जो रबी वाली फसल है वो स्टार्ट हो जाएगी।
0: जी जी, खेती किसानी की सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध हैं आपके यहाँ?
1: यहाँ पे हमारे वैसे तो ये इंदिरा गांधी नहर की भी सुविधा है, उसके अलावा ये ट्यूबवेल है, कुएं वगैरह, इनसे भी सिंचाई हो जाती है। इन दिनों में मानसून जो हो जाता है तो उसकी भी फसल वो अच्छी होती है।
0: बढ़िया, बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फकीरा पिक्चर है, उनका गाना है वो, के रहूंगी तेरी
0: दिल में तुझे बिठा के, कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी।
1: मैं साहब बहुत पुराना श्रोता हूँ, जब से वो जो ये हेलो फरमाइश शुरू हुआ था कमल शर्मा ने 1996 में स्टार्ट किया था, वो मैंने पहला प्रोग्राम सुना था मैम साहब।
0: जी जी, बहुत बढ़िया, तब से आप सुन रहे हैं, तब से तो कितने सारे बदलाव हुए प्रोग्राम्स में,
1: बहुत काफी चेंजेस हुए हैं साहब। लेकिन 26 साल में कॉल लगा नहीं, लेकिन 2026 में मेरी दूसरी बार बात हो रही है विविध भारती में।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम फकीरा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, मैं इंदौर से सत्यप्रकाश दीक्षित बोल रहा हूँ ममता दीदी।
0: जी सत्यप्रकाश जी, बताइए क्या हाल है आपका, इंदौर का क्या हाल है, बारिश वगैरह हो रही है?
1: हाँ, अभी पिछले एक हफ्ते से प्रकृति की बहुत अनुपम कृपा है कि अच्छी बारिश हो रही है और चारों तरफ हरितिमा और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ गया है।
0: जी क्या
1: और
0: बात है।
1: ऐसा लगने लगा है कि सावन बहुत निकट ही है और आनंददायी वातावरण हो गया है।
0: सावन का जब इंतजार होता है तो मन यादों के गलियारे में पहुंच जाता है, तो जब सावन आता था तो आप अपने यादों के गलियारे में जाइए और बताइए कौन सा सावन आपके लिए बड़ा यादगार रहा है। बचपन में जो सावन के झूले पड़ते थे नीम की पेड़ पर, तो कभी झूलने का मौका मिला?
1: भी याद आते हैं, पेड़ों पे जब गांव में जाते थे तो पेड़ों पे झूले झूलते थे, बड़ा मनोरम वातावरण लगता था सावन का। चारों तरफ एक जो प्राकृतिक सुषमा प्रकृति की दिखती थी, बहुत ही मन भावन रहती थी और आज भी वह सब देखने के लिए मन तरसता है। अब शहर में जरूर रह रहे हैं पर गांव की वो हरितिमा और वसुंधरा जो प्राकृतिक वातावरण में जो सावन में हो जाती है वो बहुत याद आती है। और अक्सर हम जाया भी करते हैं गांव में, तो वो पुराने दिनों को याद करके, सावन को याद करके मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है।
0: तो उन दिनों में कजरी वगैरह गाई जाती थी सावन में, याद है क्या आपको?
1: हाँ, मैंने बहनों से भी सुने हैं वो। अभी तो खैर मैं चूंकि अभी वरिष्ठ नागरिक हूँ, 71,
0: अच्छा।
1: तो थोड़ी सी याददाश्त भी थोड़ी सी क्षीण हो चली है, पर हाँ मैंने बहुत सुने हैं, बड़े मन भावन गीत और कजरी रही है।
0: आप बताइए आज कौन सा गाना सुना चाहेंगे? हाँ, और ये भी बताइए, आपने कहा इतने वरिष्ठ नागरिक हैं, कहाँ पर आपने काम किया और कितने साल से रेडियो सुन रहे हैं?
1: मैंने बैंक में अधिकारी के रूप में काम किया करीब 40 वर्ष।
0: अच्छा।
1: और अभी 10 साल से सेवानिवृत्त हूँ। सामाजिक सेवा में और दूसरे कार्यों में समय निकल जाता है, पारिवारिक दायित्व भी है, उनका भी निर्वहन करते हैं। लोग रिटायरमेंट को ये कहते हैं कि अब आपकी सेकंड इनिंग चालू हो
0: रही
1: है, तो वो एक तरह से सही भी कहते हैं कि अपन उन दायित्वों को पहले सर्विस में रहते नहीं पूरे कर पाए, तो उन दायित्वों का निर्वहन कर लें। और जो आनंद कहीं किसी विशेष स्थान की यात्रा वगैरह का नहीं ले पाए हो, कंपोजिट टूर प्रोग्राम हो, जब समय मिलता है तो पर्यटन के लिए, तो उन स्थानों पे जब भी जाने का मौका लगता है तो समूह के साथ चले जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, घूम के आए और एंजॉय करें। तो सत्यप्रकाश दीक्षित जी का फोन बीच से डिस्कनेक्ट हो गया, बातचीत उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से की, शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका। और उनके लिए हम सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अशोक आनंद बोल रहा हूँ, लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से।
0: आपने लेक सिटी उदयपुर कहा, तो पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर खूब बारिश हो रही है, मुंबई में भी। तो क्या आपके उदयपुर में बारिश हुई तो झीलें भर गई?
1: कल शाम को भी बहुत झमाझम बारिश हुई थी।
0: क्या बात है, झीलें लबालब भर गई होंगी फिर तो?
1: नहीं, अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी उसमें जुलाई अगस्त तक में भरेगी। झीलों की नगरी है तो काफी सारी झीलें हैं, और जैसे जैसलमेर लेक है तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
0: जब बारिश होती है तो आप सोचते हैं कि राजस्थान में खास तौर से पानी की कमी होती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं लोगों से मिलजुल कर?
1: मैंने जैसे कई बार देखा अपने घर पे भी, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जैसे अपने छत पे जो पानी होता है उसको पाइप से अपने वापस बोरिंग के अंदर जैसे सेट करवा रखा है, और वेस्ट पानी करते नहीं है। पर राजस्थान में हमारा उदयपुर शहर जैसे है ना, इतना पानी का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जैसे राजस्थान में लोग बोलते हैं कि सूखा होगा, वो एक्चुअली क्या है, जोधपुर जैसलमेर उससे ज्यादा सूखा होता है।
0: जी जी, वहाँ की और जगहों के बारे में बताइए, उदयपुर के आसपास क्या कुछ है
1: पर्यटन? उदयपुर के बाद में बताना चाहूंगा कि जैसे उदयपुर के पास में एक सज्जनगढ़ फोर्ट किला है, जिसकी दीवार विश्व के सबसे दूसरे नंबर की दीवार है, और उदयपुर पर्यटक की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो विश्व में एक नंबर पे आता है।
0: वाह।
1: तो पहले किसी जमाने में फर्स्ट प्रायोरिटी कश्मीर और दिल्ली हुआ करती थी, अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्टली होती है

0: राजस्थान में उदयपुर या और दूसरे किले फोर्ट वगैरह
1: जी,
0: और राजस्थान के कुछ अच्छे मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध थी उनको देखने के लिए विजिट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं।
1: क्या बात है, आप जो जानकारी दे रहे हैं हमारे श्रोताओं की जानकारी समृद्ध हो रही होगी और बड़ा अच्छा लग रहा है इतनी सारी बातें आपने बताई।
0: मैं और आपसे अर्ज करना चाहूंगा।
1: जी हाँ,
0: गाना आज का मेरा जो पसंद का है वो कुदरत फिल्म का है, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, नितिन मुकेश। नितिन मुकेश जी मेरे फेवरेट सिंगर है, बहुत अच्छा लगता है उनका गाना सुनना मुझे।
1: और मुकेश के गाने
0: जी, मुकेश के भी सुनता हूँ, किशोर जी के भी, लता जी के भी, खासकर मदन मोहन जी और लता जी का जो कॉम्बिनेशन है ज्यादा लाइक करता
1: हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। तो बस विविध भारती से भी, सारे श्रोताओं से आपकी दोस्ती यूं ही सलामत रहे, इस बात के साथ बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: दीदी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लगाने बोल रहा हूँ।
0: राजू जी, आगरा में क्या खास है बताइए, कोई विशेष धरोहर है?
1: जी दीदी, आगरा में तो सबसे पहले तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल ही है, लाल किला है, सिकंदरा है, आगरा का पेठा,
0: आगरे का पेठा भी बहुत मशहूर है। क्या बात है भाई।
1: जी बिल्कुल, और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात आज ममता दीदी से हो रही है, बड़ा खुशी हो रही है दीदी मेरे को।
0: जी बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अब जरा आगरे के ताजमहल के बारे में बताइए, आपने देखा है ताजमहल?
1: देखिए दीदी, मैं तो ब्लाइंड पर्सन हूँ।
0: अच्छा, ओ
1: तो मैं तो कभी ताजमहल गया नहीं, मैं तो उन्हीं जगह जाता हूँ जहाँ भगवान का मंदिर होता है, क्योंकि भगवान के मंदिर में हमें मंदिर नहीं देखना होता है, भगवान हमें खुद देखते हैं। हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें भगवान को दिखाई दे या न दे, लेकिन भगवान हमें
0: जी जी
1: दीदी मैं।
0: बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो बताइए और क्या करते हैं आप दिन भर घर में?
1: जी दीदी, मुझे संगीत से शौक है, मैं रेडियो सुनता हूँ, आपके विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता रहता हूँ अपने रेडियो के माध्यम से।
0: अब हमें बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, और आपने कहा कि संगीत का शौक है, तो निश्चित रूप से आप भी गाते होंगे, क्या सीखा है आपने गाना क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज की फिल्म है लम्हे, आवाज है लता जी, इला अरुण जी और सखियों की, और गाने के बोल हैं मेघ।

0: तूने किसको याद किया। ये वाला गाना सुनना था दीदी।
1: वाह, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। तो आपने कौन सा संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत?
0: जी दीदी, मैं ज्यादातर लाइट म्यूजिक में चलता हूँ, कथाओं में, भागवतों में, सुंदरकांड में, सत्संगों में। मैंने कुछ नहीं सीखा थ्योरिकली, मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है जो कुछ भी है।
1: अच्छी बात है। तो कोई लोकगीत भी याद है उत्तर प्रदेश का?
0: जी बिल्कुल, ब्रज का लोकगीत मेरे को बिल्कुल याद है।
1: तो सुनाइए फिर हमारे श्रोताओं को भी।
0: अरे बंश

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: जी टेकचंद जी, बताइए क्या हाल है आपका और छिंदवाड़ा का क्या हाल है?
1: मैडम हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया, एकदम बढ़िया। बारिश वारिश हो रही है?
1: हाँ मैडम, चार दिन से लगातार बारिश हो रही है, कहना चाहिए झमाझम बारिश हो रही है, जैसा कि हम लोग चाहते हैं, कहना चाहिए एक प्रसन्नता की बात है। और साथ में हमारे जो किसान भाई है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं।
0: स्वाभाविक है उनकी खुशी, उनके लिए तो पानी एक अमृत की तरह है, सारा कुछ, पूरी खेती किसानी उनकी बारिश पर ही निर्भर करती है ना।
1: जी जी जी।
0: तो आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या काम काज है?
1: मैडम मैं जो हूँ एक सीनियर सिटीजन हूँ, और मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि मैं ये जो जुलाई माह है ये मेरे लिए काफी वरदान साबित है, कहना चाहिए।
0: अच्छा, किस सिलसिले में?
1: क्या हुआ मैडम, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि 2001 सात 2020 को मेरा रिटायरमेंट हुआ है ऑल इंडिया से, तो सुरक्षित हम अपने काम से अपने घर लौटे हैं, ये बहुत खुशी की बात है।
0: कहाँ काम करते थे?
1: कोल इंडिया में मैडम, तो मैं उससे कहना चाहिए 38 वर्ष देकर के सुरक्षित अपन घर पर पहुंच गए हैं, ये एक हमारे लिए काफी और हमारे परिवार के लिए खुशी की बात है।
0: जी जी, बहुत बढ़िया बात है। तो वहाँ की कोई अनुभव, कोई छोटी सी घटना, कोई बात हो तो बताइए।
1: पहले जो होता था वो काफी असुरक्षित मतलब रहता था माइंस में काम करना, लेकिन अभी सरकार ने इतना ज्यादा सुरक्षित मतलब वर्करों को कर दी गई है, तो कहना मैडम अब उतना जो हमारे साथ जो घटनाएं होती थी वो अब नहीं के बराबर हो गई है। हम अपनी लापरवाही से कहना चाहिए या असावधानी जो होती है उससे दुर्घटनाएं होती है।
0: जी जी,
1: तो ये कहना चाहिए एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जो दुर्घटनाएं नहीं के बराबर हो रही है वो काफी हमारे मजदूरों को या हमारे जो साथ के कामगार हैं लोग को काफी प्रोत्साहित करती है इस ओर काम करने के लिए।
0: जी,
1: नहीं तो पहले के मजदूर मैडम काम करना छोड़ करके भाग जाते थे।
0: तब भी बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा तो जोखिम भरा काम है ये।
1: धरती को चीर करके उसके सीने से कोयला निकाला जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है, और प्रकृति के विरुद्ध काम करना, कहना चाहिए किसी भी क्षेत्र में हो प्रकृति के विरुद्ध करना हम देख रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक ही हो, चाहे वो हम पृथ्वी के अंदर से कोयला निकाल रहे हों या बाहर प्रकृति के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, आज जो प्रदूषण हो रहा है या हम पेड़ काट रहे हैं, तो उसका भुगतान अभी हम ये बारिश देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे कई जगह पे हो रही, कई जगह पे हो ही नहीं रही।
0: जी बिल्कुल, मतलब जो पर्यावरण का असंतुलन होता है इस सबसे, वो हम सबके लिए बहुत नुकसानदेह है। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है कहीं दिन कहीं रात, महेंद्र कपूर जी और आशा जी की आवाज है, संगीत ओपी नैयर का है, गीत है एच बिहारी का, और गीत है मैडम तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में।
0: क्या बात है, बढ़िया गीत चुना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: प्यार भरा नमस्कार
0: नमस्कार
1: वो प्यार भरा सुनने वाले हो हेलो फरमाइश सुनने वाले हो प्यार भरा नमस्कार मेरा नाम है पांडुरंग मोरे मुक्काम पोस्ट वारंगा फाटा तालुका कळमनुरी जिला हिंगोली महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी
0: जी पांडुरंग जी बताइए बड़ा लंबा चौड़ा परिचय देते हैं
1: कैसा है बम्बई में मौसम कैसा है इधर बारिश नहीं है उधर बारिश होंगी तो थोड़ा भेज दो हमारे इधर महाराष्ट्र में
0: एकदम भीगा मौसम खूब सारी बारिश हो रही है और खूब सारी बारिश आपके रेडियो सेट तक भेजेंगे आपके गाने के माध्यम से और आपकी बातचीत के माध्यम से जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: फिल्म का नाम है हीरो गाने के बोले तू मेरा हीरो है मैं तेरा हीरो टाइटल सॉन्ग का गाना सुनना है
0: सुनिए अपनी पसंद का ये गाना

0: हेलो फरमाइश.
1: नमस्कार मैम.
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूँ.
0: प्राकृतिक सुषमा जहाँ पर मौजूद है और दिल वहाँ जाए तो दिल वहीं पर रुक जाने का मन करता है ना. तो सबसे पहले आप त्रिपुरा के हालचाल बताएं. त्रिपुरा में जो प्राकृतिक छटा है वहाँ के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को.
1: मैम अभी तो त्रिपुरा में बारिश का सीजन है और कुछ दिन से लगातार बारिश चल रहा है. कभी कभी रुकता है, धूप निकलता है, फिर बारिश, ऐसा ही चल रहा है लगभग दो महीना.
0: तो ये बताइए कि बारिश जब होती है ज्यादा तो वहाँ के लिए नुकसानदेह है या सही है? ठीक है.
1: नहीं मैम जी, ज्यादा बारिश होने से तो नुकसान तो हो ही जाता है
0: बिल्कुल. और वहाँ के आसपास की जगहों को आपने कहा ना सेवन सिस्टर्स, यानी कि वो जो कौन कौन से उसमें शामिल है सेवन सिस्टर्स में बताइए.
1: सेवन सिस्टर में त्रिपुरा का पासी है असम, और आता है मेघालय,
0: अरुणाचल प्रदेश,
1: मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
0: मतलब खूबसूरती का आलम है. तो त्रिपुरा के आसपास क्या है बताइए.
1: त्रिपुरा में तो मैं जहाँ रहता हूँ मैम जी, त्रिपुरा का नॉर्थ साइड में मैं रहता हूँ. ये उलोकुटी टेम्पल, बाहर से बहुत लोग आता है दर्शन करने के लिए. ये सर्च करने से मैम जी आपको मिल जाएगा.
0: जी जी जी.
1: इंडिया का बाहर से भी आता है मैम जी.
0: जी बिल्कुल,
1: देखने के लिए.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: त्रिपुरा का और मशहूर टेम्पल है त्रिपुरेश्वरी मंदिर. देवी का और शरीर का एक अंग घिरा था त्रिपुरेश्वरी मंदिर में, जो असम में भी एक घिरा था और बन गया बड़ा टेम्पल माँ कामाख्या.
0: तो ये शक्तिपीठ है.
1: बिल्कुल.
0: और एक और खास बात है त्रिपुरा की, त्रिपुरा से एक बहुत बड़े संगीतकार आए जिन्होंने पूरी फिल्मी दुनिया में जिनके संगीत का जादू छाया, हम सब के दिलों पर आज भी कायम है उनके संगीत का जादू. वो नाम आपको पता है?
1: बिल्कुल पता है मैम जी, सचिन देव बर्मन
0: जी.
1: और तो, उनका बेटा तो पिताजी को भी छोड़ के चला गया,
0: राहुल देव बर्मन. तो इसलिए त्रिपुरा और खास हो गया ना आपके लिए. तो
1: जी जी.
0: तो बताइए फिर कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आज?
1: जी आज मुझे याद आया 1980 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है फिर वही रात, और इस गाने को गाया है सुरों का मल्लिका लता जी ने बिंदिया पैरिस से. और इस गाने को लिखा है मैम जी संगीत का सबसे बड़ा राइटर में एक नाम है मजरूह सुल्तानपुरी
0: जी, गीतकार.
1: संगीत तैयार किया है
0: जी. जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने त्रिपुरा से हमें फोन किया. अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना.

0: हेलो फरमाइश।
1: आपको प्रणाम है।
0: आपको भी प्रणाम है। नाम और कहाँ से बोल रहे हैं जरा बता दीजिए।
1: पहड़िया वाराणसी उत्तर प्रदेश अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: वाह भाई बढ़िया। तो ये नाम परमानेंट लगा रखा है अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का।
1: जी जी जी, जब भी फरमाइश भेजता हूँ मैं वाराणसी से, वाराणसी का रहने वाला हूँ, तो यही बोलता हूँ श्रोता दंपति अनिल, जैसे मेरा नाम है अनिल गुप्ता गोंड और वाइफ का नाम है रमा गुप्ता गोंड,
0: तो
1: श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: जी बहुत बढ़िया, आपने स्पष्ट कर दिया। तो बताइए अनिल जी और रमा जी के क्या हाल है और बनारस का क्या हाल है?
1: जी बनारस में तो इस समय तो मौसम बहुत सुहाना हो गया है, बरसात हो रही है। 2-3 दिन पहले तो बहुत गर्मी थी,
0: तो अब जी, जी, जरा बताइए कि बारिश हो रही है बनारस में, गंगा जी हैं, तो इस समय क्या बाढ़ आई है उसमें उफान पर है या नॉर्मल है नदी?
1: नहीं नहीं अभी उतना नहीं है, जब एक्चुअल में जब ये उत्तराखंड में बरसात बहुत तेज होती है तो पानी का स्तर बढ़ने लगता है, लेकिन अभी इधर बरसात तो उतनी हुई नहीं जितनी उम्मीद रहती है हर साल, उतनी बरसात इधर उत्तर प्रदेश में कम हुई है बरसात।
0: जी बनारस में जो गंगा आरती होती है शाम को उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, आप जरा बताइए क्या होता है उसमें?
1: गंगा आरती में एकदम बहुत बड़े बड़े वो दीपक टाइप के लेके उसमें हवन सामग्री जलाई जाती है।
0: गंगा जी में नौका विहार का भी एक अलग आनंद होता है, तो आपने कभी नौका विहार किया है वहाँ रहते हुए?
1: कई बार किए हैं। चलो मैं तो पहाड़िया क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन मैं गंगा जी में 78 में बनारस में आया था, मैं पहले दिल्ली में रहता था, तब से बहुत बार मैंने गंगा जी स्नान किया है, पूजा पाठ और आरती देखी गई है। मैं रहता हूँ वहीं बगल में सारनाथ है।
0: अरे वाह क्या बात।
1: तो सारनाथ में जैसा आप जान ही रहे हैं कि अशोक स्तंभ में राष्ट्रीय चिन्ह है म्यूजियम में,
0: फिर बनारस का पान, बनारस की चाट बहुत मशहूर है, और बनारस मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का लोकगीत बहुत मशहूर है, बनारस की ठुमरी बहुत मशहूर है, तो इनमें से आपको क्या शौक है? क्या बनारस की ठुमरी या बनारस का कोई लोकगीत याद है, सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को?
1: कजरी जो है, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
0: अरे वाह क्या बात।
1: मिर्जापुर कैला गुलजार हो,
0: तो गा के सुनाई गनवा।
1: मिर्जापुर कैला गुलजार हो, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
0: बहुत बढ़िया, बताइए कौन सा गाना?
1: देखिए बरसात का

0: तो मैं तो मल्हार राग पर एक गाना था लगान फिल्म के, नर गनर घिरा है बदला, ए आर रहमान जी, जावेद अख्तर जी के बाद मैं लिखल।
1: बेहतरीन गाना चुना है बारिश के मौसम के अनुरूप, तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है, अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। नमस्कार मैम जी।
0: क्या बात है भाई, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोलिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: क्या बात है भाई, बरेली से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी मैम जी, आपसे लगता है हमारी पहली बार बात हो रही है।
0: जी, बरेली का नाम एक गाने में आता है, कौन सा गाना है याद है क्या आपको?
1: हाँ जी, साया मूवी का है, झुमका घेरा रे बरेली
0: बरेली
1: के
0: के
1: बाजार
0: बाजार
1: में।
0: में। और बरेली की और
1: हाँ
0: कोई
1: जी,
0: खासियत हो तो बताइए आपके नजर से।
1: बरेली की खासियत एक जरी के नाम से जाना जाता है, और एक नया काम चल रहा है, राम वाटिका जो रामायण में दिखाया गया वो सभी बनने आया है मैम जी।
0: अच्छी बात है। और
1: जी
0: अपने कामकाज के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: मैम जी, अभी तो खैर हमारे मकान का काम चल रहा है, वैसे तो हम भी जरी का ही काम करते हैं।
0: जरी का काम
1: हाँ जी
0: करते हैं, मतलब जरी वाली साड़ियाँ तैयार करते हैं या और दूसरी तरह के कपड़े, कुर्ते, क्या बनाते हैं
1: मैम जी, हम
0: क्या?
1: सूट भी बना लेते हैं, साड़ियां भी बना लेते हैं, आए पर शेरवानी भी बना लेते हैं, कलियां भी बना लेते हैं, और जो साड़ी होती है रेशम, करदाना, मोती, ये भी बना लेते हैं।
0: तो जरी के किस काम की ज्यादा मांग होती है, क्योंकि आजकल लोग सादा पसंद करते हैं ना ज्यादातर?
1: सबसे ज्यादा

0: डिमांड होती है लहंगा चुन्नी की
1: शादियों में।
0: हाँ बहन जी
1: बताएं कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा दिलवाले, गाने के वो रहेंगे सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, अब पूरी हो रही आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक वे हमें कृपया फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें कॉल करने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दें 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड 022। और अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग

नमस्कार श्रोताओं, आपका कार्यक्रम रंग तरंग में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मीरा भजन इस एल्बम से। लता मंगेशकर की आवाज है, मीरा बाई का लिखा गीत, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत।

रंग तरंग कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको सुनवाया हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई का ये भक्तिपद, आवाज लता मंगेशकर की थी।

0: और आइए अब सुनते हैं निदा फाजली का कलाम, स्वर चंदन दास का।
1: रुलाने वाला

0: चंदन दास की आवाज में अभी आपने निदा फाजली का ये कलाम सुना। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। और आइए अब सुनते हैं मिलिंद गदवी का लिखा गीत, इसे आवाज दी है हमशिका अय्यर ने।

हमशे का अय्यर की आवाज थी ये, और अभी आपने इनका गाया ये औगार फिल्मी गीत सुना। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: शोभा गुल्टो की आवाज में अभी आपने ये शास्त्रीय रचना सुनी।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: रंग तरंग कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जावेद अली की आवाज। इनका गाया ये अगार फिल्मी गीत सुनी।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। यह आवाज है विशाल मिश्रा की और गीत और संगीत भी विशाल मिश्रा का ही है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और

0: और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
1: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले और हरजोत कौर की आवाजों में है। गीतकार हैं अनजान और ये एक गैर फिल्मी गीत है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए अब सुनिए पलक मुछाल और उत्कर्ष शर्मा की आवाजों में ये गैर फिल्मी गीत।

और आइए अब सुनते हैं रंग तरंग कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश। कलाकार हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन।

0: इस रचना के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग,
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: आप सुन रहे हैं FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1325वां भाग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले

0: श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
1: विमलेश जी, अजीत जी, नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
0: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
1: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
0: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
1: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
1: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
0: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
1: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
0: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
1: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
1: जी।
0: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
1: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक AC की तरह काम कर रहा होता है।
0: श्रोताओं, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
1: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
0: श्रोताओं, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
1: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
0: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
1: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
1: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए।
0: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
1: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस

0: मेरा भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी, और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई।

इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने, सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा। जब बुद्ध पाटली ग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्र। उदाई भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदाई भद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: अरे अरे भागो
1: अरे भूल जाओगे अरे भागो अरे अरे सिपाही आ गए अरे अरे भागो
0: जाओगे अरे भागो भागो अरे
1: चुप रहो चुप रहो
2: अरे यहां यहां नहीं मिलेगा
0: भागो अरे मैंने कुछ नहीं किया
3: भागो आया काबू
4: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धन नंद। बड़ी

सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की,

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे। उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
4: ऐसा ही होगा।
3: ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों?

0: जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो। याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो, मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
1: हम वापस लौटना चाहते हैं।
0: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
2: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लड़ सकते हैं।
3: ऐसी दुनिया चलो,
2: वापस चलो
3: सम्राट।
0: सुनो मेरे वीरों, सुनो
4: मेरे वीरों, सबर करो साथियों। अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए। अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं टाल सकते।
0: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: हाँ? महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए, मैं सावधान हूँ।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
4: धन्य हो आचार्य,
5: धन्य हो,
4: धन्य हो आचार्य,
5: धन्य हो।
6: मगध सुखी था, चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा।

0: अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
1: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी न जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छिनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्यकालीन पाटलिपुत्र अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1325वां भाग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए वापस चलें विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म रूप तेरा मस्ताना का गीत सुनवा रहे हैं, शब्द असद भोपाली के और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की ही आवाज में, फिल्म का नाम श्रीमान पंटूश, रचना असद भोपाली की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म टावर हाउस का गीत सुनवा रहे हैं, रचना असद भोपाली की और संगीत रवि का।

कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत निर्देशन में असद भोपाली का ही लिखा हुआ, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम है आया तूफान।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म नाग मंदिर का गीत, आवाज मोहम्मद रफी की।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब यह प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी है।

0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म एक नारी दो रूप का ये गीत।

ग्यावस्ती मोहम्मद रफी की फिल्म का नाम था एक नारी दो रूप। गीतकार थे असद भोपाली। और आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको गीतकार असद भोपाली के लिखे कुछ गीत सुनवाए।

0: आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए कृषि तथा उद्यानिकी विभाग ने 30 से अधिक एमओयू पर आज जयपुर में हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञापन गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं और एग्री टेक कंपनियों के साथ किए गए हैं। विभाग के अनुसार इन समझौतों से सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा। विभिन्न संस्थाएं अपनी तकनीकी जानकारी और अनुभव के आधार पर विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करेंगी। इसके तहत प्राकृतिक और जैविक खेती, जल संरक्षण, आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग, किसान प्रशिक्षण, डिजिटल कृषि और कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसानों तक योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की वास्तविक स्थिति और स्थानीय निकायों में उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी का आकलन करने के लिए आज से डिजिटल सर्वेक्षण किया जा रहा है। 23 जुलाई तक चलने वाले इस राज्यव्यापी सर्वेक्षण के दौरान ओबीसी परिवारों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी स्थिति का वास्तविक अध्ययन किया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश में लगभग 51,000 प्रगणक नियुक्त किए हैं। इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से सर्वे

0: टीम और प्रगणकों को तकनीकी और प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 यूसीसी के प्रारूप पर आमजन के सुझाव लेने के लिए विभिन्न स्तरों पर जनसुनवाई की जा रही है। इन जनसुनवाइयों के माध्यम से विभिन्न वर्गों से यूसीसी पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। इसी कड़ी में आज जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में जयपुर संभाग स्तरीय जनसुनवाई की शुरुआत हुई। दो दिन की इस जनसुनवाई में पहले दिन विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और अधिवक्ताओं से सुझाव मांगे जा रहे हैं। वहीं कल आमजन अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे। उधर भरतपुर में भी संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रही इस बैठक में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और डीग जिलों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। सबसे अधिक 56 मिलीमीटर बारिश अजमेर जिले के केकड़ी में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बारां के अंता, अलवर के बनसूर तथा चूरू के तारानगर रेणी क्षेत्र में भी अच्छी बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज उत्तर पूर्वी भागों में छुटपुट स्थानों पर बरसात की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार मॉनसून के कमजोर पड़ने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक ज्यादातर स्थानों पर मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज तमिलनाडु के कोयंबटूर में मानव वन्य जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला भी रखी गई है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष देश के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है और इसके समाधान के लिए आधुनिक तकनीक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नया केंद्र अनुसंधान, नवाचार, क्षमता निर्माण और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। आइए वापस चलें विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: यही भारतीय फिल्म संगीत की खूबसूरती है। एक कालजयी धुन समय के साथ नए शब्द पहनती है, नए स्वर पाती है, नए भाव ग्रहण करती है, फिर भी अपनी आत्मा को सुरक्षित रखती है। एक सुंदर धुन समय की सीमाओं को पार कर कई पीढ़ियों तक जीवित रहती है। आज के सभी गीत आपने उस राग का जिक्र भी कर दिया है, लेकिन आपने बहुत सुंदर इबारत लिखी है। जो बात हम कहना चाहते थे वो आपने पूरी तरह से कह दी है। तो चलते हैं इस सुरीले सफर पर।

यह आवाज़ लता मंगेशकर की थी फिल्म नौजवान के लिए। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के सभी गाने मुख्य रूप से अलग अलग रागों पर आधारित हैं। आपने कुछ रागों का जिक्र किया है। आप लिखते हैं कि कुछ संगीतकारों के अनुसार राग पहाड़ी, राग देश के प्रभाव वाली धुनों से प्रेरित हो सकते हैं आज के गीत। और आपने आगे लिखा है कि राग बिहाग भारतीय शास्त्रीय संगीत यानी हिंदुस्तानी संगीत का एक अत्यंत मधुर, लोकप्रिय और श्रृंगार रस प्रधान राग है। इस राग की मुख्य विशेषताएं आपने लिखी हैं कि गंभीर और शांत प्रकृति का है और श्रोताओं को एक आध्यात्मिक और कोमल चांदनी जैसी शांति का अनुभव कराते हैं ये राग। जी हाँ, लेकिन आज के गाने तो राग बिहाग पर आधारित नहीं है और ना ही हमारा उद्देश्य है कि हम किसी राग पर हमारे श्रोताओं से जानना चाहें, क्योंकि वही बात कि हर श्रोता शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मों का चयन नहीं कर सकता है। हमारा उद्देश्य था कि आज के गीत जो हमें अनुभूति दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने शास्त्रीय रागों का जिक्र किया है जिसका आज हम यहाँ पर पठन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, ताकि अच्छा लगेगा आज का ये कार्यक्रम कि शास्त्रीय राग कौन राग आपको प्रभावित करता है और किस तरह से प्रभावित करता है, ये भी जानने का अवसर हमें मिलेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप पहली लेकर आए हैं जिसमें दो बातें उभर कर सामने आई हैं। सिर्फ शब्दों के आधार पर गाने चुने और वो एक ही भाव और मूड के हों तो शायद राग अलग अलग हैं, लेकिन अगर सिर्फ शास्त्रीय राग को आधार बनाए तो दिए गए शब्दों में कुछ गाने शायद नहीं है। हाँ, अंतरे में कहीं एक दो शब्द हैं, इसलिए अगर एक ही जैसी धुन पर गानों और एक ही राग की बातें तो ठंडी हवाएं, और आपने कुछ गानों का जिक्र किया है और बहुत सही किया है। हाँ, लेकिन आप जिस राग का जिक्र कर रहे हैं वो शायद न हो। आप लिखते हैं कि आज मेरे हिसाब से तो राग यमनी चुना होगा और मैं ऐसा मानता हूँ, और इसी राग पर कई गाने रखे गए हैं और आपने आगे भी लिखा है कि कुछ राग पहाड़ी पर भी आधारित हो सकते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीतों का किसी न किसी राग से क्या नाता, उसके बारे में जानकारी आज के कार्यक्रम में क्या हमें मिलेगी। वैसे कोई भी गीत हो वो फिल्मों में उस दृश्य पर बनाया जाता है और वो गीत किसी राग पे आधारित ही बनेगा। ये राग कौन से हैं ये हमारे कई गुणी रेडियो श्रोता ही जानते हैं। वैसे आज के गीतों को आपने भी किसी राग का जिक्र किया है उस पर ज़्यादा संगीतबद्ध किया हुआ लगता है, पर मुझे पक्का पता नहीं। वैसे मैंने सभी गीतों की लिस्ट भी भेज दी है, देखें कितने गीत मेरी लिस्ट के बचते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी बात ही, और हमने जो आपको शब्द दिए उन शब्दों के आधार पर तो हम सिर्फ शास्त्रीय रागों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, है ना। एक श्रोता

हैं कि कुछ गीत अपने अस्तित्व को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो सिर्फ किसी का लिखा या किसी का लयबद्ध गीत ही नहीं रह जाता, वे दशकों तक अपने सुनने वालों के हृदय में बस जाते हैं। जैसे कि आज के इबारत के गीत, जिनके बोल तो अलग हैं मगर धुन कमोबेश एक सी है। अतीत की परछाई को टटोलें तो और न जाने कितने ऐसे गीत कहीं न कहीं सांस ले रहे होंगे, यानी उमड़ रहे होंगे। मन का आंगन भीग रहा है और मैं सोच रही हूँ, क्या कभी ऐसा भी कोई वक्त था जब मेरे साथ ये गीत नहीं थे? तो एक ही जवाब आता है, गीत चाहे कोई भी हो, ये गीत ही हमारे मित्र हैं, सहोदर हैं। इन गीतों ने ही हर उदासी को मुस्कान में और अवसाद को हौसले में बदला है। जैसे कि ये गीत, आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है, बिल्कुल सही कहा आपने, बस उन्हीं गीतों को आज हम लेकर आए हैं। तो अभी आपने जो गीत सुना था फिल्म नौजवान से, उसको ध्यान में रखिए और सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत। आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल वैसा ही तो है ये गीत।

जी, तो अभी आपने सुना ये गीत, फिल्म का नाम था चांदनी चौक। हमारे श्रोताओं को बताना है कि इस गीत को आवाज़ किसने दी थी और गीतकार संगीतकार के नाम भी अगर आप बता दें तो हमें अच्छा लगेगा, है ना। कितना प्यारा गीत था ये, और गायिका का नाम बताइए, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का ये सुरीला सफर थोड़ा कठिन लग रहा है। कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए। आंखों को बंद कीजिए, भीतर सांस खींचिए और पता लगाइए कि क्या जो मुझे लगा वो आपको भी लग रहा है कि हाँ, ये गीत सुनने में एक ही तरह के तो लग रहे हैं, है ना? वही भाव, वही उसी तरह का माहौल। तो अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो आज का ये सफर आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राग की पहचान करना तो मुश्किल नहीं है, हवाएं और दिल जैसे शब्दों से ही पता चल जाता है कि आज का कार्यक्रम किस राग पर आधारित है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपने अंदाज में अव्वल अनुसंधानिक अभिनव प्रयास की एक और अनुपम श्रृंखला स्वागत योग्य और सराहनीय है। राग रागिनी के तिलस्मी सम्मोहन से

रस्ता संभाव युक्त गीत संगीत आधारित कार्यक्रम कुछ जटिल मगर संभाव्यता पूर्ण है। नई दिशा दर्शन कराती सुरीला सफर का रोमांच आज संभवतः अपनी चरम पर रहेगा, इंतजार है। बहुत सुंदर लिखा है आपने, और आगे आप लिखते हैं कि समानता वाले संभावित गीत आपने लिखे भी हैं और बहुत गीत आपके सही जा रहे हैं। आप सुनते रहिए कार्यक्रम को अंत तक और आपको पता लगेगा कि जो आपने सोचा ठीक वही हमने भी सोचा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गाने का कोई भी हो इबारत पढ़कर लगता है कि वाकई में आज तो सुरीला सफर सुरीला होगा। मधुर और सदाबहार गीतों के माध्यम से आज दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक का सफर सुरीला तो होगा ही। तो मिलते हैं दोपहर 1 बजे से। अगला गीत हम आपको सुनवाएं, उससे पहले हमारे दो सवाल।

जी, तो आपको बताना है कि ऐसे और कौन से दो गीत जो आपको याद है या आपको महसूस हुए, उन गानों का जिक्र करिए, सिर्फ दो गानों का, जिसमें आपको लगेगा कि ये दोनों गीत जब जब मैंने सुने मुझे लगा कि ये दोनों गीत एक से हैं। और हमारा दूसरा सवाल, अगर आप शास्त्रीय संगीत का ज्ञान रखते हैं, हमारे जो श्रोता, जैसा कि हमें हमारा फेसबुक पेज देखने पर पढ़ने पर पता चल रहा है, तो आपको कौन सा शास्त्रीय राग पर आधारित गाया हुआ गीत ज्यादा प्रभावित करता है? अपनी अपनी पसंद के राग होते हैं ना, तो आपको किस राग ने ज्यादा प्रभावित किया, ये वही लिखें जिन्हें शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गानों का थोड़ा सा विज्ञान है। सवाल एक बार फिर से कि आप बताइए ऐसे दो गीत जो लगभग एक जैसा ही गाए हुए आपको महसूस होते हैं। और हाँ, हमारे जो शास्त्रीय संगीत के रसिक श्रोता हैं, जिन्हें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है या उन्होंने शास्त्रीय गायन सीखा हुआ है, तो बताइए आपको किस राग पर आधारित फिल्मी गीत ज्यादा पसंद आए। और हाँ, हमने आपसे पूछा था कि फिल्म चांदनी चौक में जो गीत गाया गया है वो किस गायिका की आवाज है और संगीतकार और गीतकार कौन है। और अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। मदन मोहन का संगीत है, राजा मेहदी अली खान के बोल हैं, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम आपकी परछाइयां। ये गीत भी हमें थोड़ा थोड़ा वैसा ही महसूस होता है जैसे इससे पहले के दो गीत आपने सुने थे।

जी, तो आज फेसबुक पेज पर जब हम नजर दौड़ा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि आज का ये सफर थोड़ा सा कठिन हो गया है हमारे श्रोताओं के लिए, जबकि कठिन नहीं है। भाई बड़ा रुक रुक कर चल रहे हैं आप लोग। तो हमने तो आपसे वादा लिया था कि सुजीला सफर में आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे और दुख तकलीफें जो भी कुछ आएगा उसे महसूस करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन लगता है हमारे श्रोता थोड़ा सा थक गए हैं, है ना? थके नहीं, हमारे साथ चलते रहिए और अंततः हमें मंजिल मिलेगी जरूर। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सभी को हमारा नमस्कार। आज आप कुछ अलग ही थीम लेकर आई हैं, राग रागिनी का तो हमें नहीं पता, हमारे जो गाने हमें याद आएंगे उन्हें हम लिख भेजेंगे। हाँ तो लिख भेजिए ना कि आपको ऐसे कौन से गीत याद आ रहे हैं जब आपने इन्हें जब जब सुना तो लगे आपको ऐसा लगा कि अरे ये गीत तो हमने पहले भी सुना था और ये गीत भी वैसा ही लग रहा है। तो इस तरह के भाव कई बार हमें लगता है। हम हालांकि शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता नहीं हो सकते, लेकिन एक श्रोता मात्र होते हुए भी हम ऐसा महसूस तो कर ही सकते हैं ना। तो उन दो गानों का जिक्र आपको करना है और जो शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं हमारे श्रोता वो तो हमें बता सकते हैं कि उन्हें किस राग पर आधारित कौन सा गीत ज्यादा पसंद आता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमें राग कभी समझ ही नहीं आए और न ही कभी हमने समझने की कोशिश की, बस हमने गीतों से प्यार किया, फिर राग कोई भी हो, जो गीत हमें अच्छा लगा उसे गाया गुनगुनाया और आज तक गीतों के साथ हैं। कुछ गीतों से बहुत कुछ सीखा है और कुछ गीतों ने हमें सहारा भी दिया है। कुछ गीतों को सुनकर हमने बहुत अच्छे से काम भी किए और हाँ कुछ गीत उदास भी कर गए, पर फिर कुछ गीतों ने जीवन के सच्चे राज भी दिखाए जिनके साथ रहकर हमारा इतना सफर कट गया, बस आगे का सफर भी अच्छा बीते इन गीतों को गुनगुनाते हुए। कितनी बढ़िया बात लिखी है आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। और वही हम भी आपसे चाहते हैं कि एक श्रोता मात्र बनकर आप उन गीतों को याद कीजिए जो कभी आपको लगे होंगे कि ये गीत हमें एक जैसे लगे। बस इतना ही तो सोचना है कि दो गीत कौन से ऐसे दो गीत थे जो हमें एक जैसे महसूस हुए, है ना? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का जो शब्द है वो एसडी बर्मन साहब की धुनों से प्रेरित होकर लग रहा है, ठंडी हवाएं, और फिल्म के गीतों से मिलते जुलते सभी गीतों की धुन भी हम आज सुनने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हवाएं शब्द पर हिंदी फिल्मों में कई बेहतरीन और सदाबहार गीत बने हैं जो प्यार, उदासी और मौसम के अलग अलग रंगों को दर्शाते हैं। यहाँ हवाएं या हवा से जुड़े कुछ सबसे लोकप्रिय गानों की सूची भी आपने दी है और आपने हमारे हर शब्द पर बहुत कुछ लिखा है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हर शब्द पर अपनी राय हमें लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पुराने गीत सिर्फ कानों में नहीं गूंजते, वे यादों में महकते हैं और जब उन्हें सुनने वाले दिल से जुड़े हों तो हर धुन अपनी सी लगने लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम किसी गाने से दिल से जुड़ जाते हैं तो हर गीत हमें अपना सा लगने लगता है। चलिए ये जो गीत अब हम आपको सुनवाने वाले हैं वो भी आपको अपना सा ही लगता है। याद आया?

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था ममता। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे रोशन। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज एक बात जरूर कहूंगा कि जब रागों की बात करते हैं, खासकर फिल्म संगीत में, तो शुद्ध राग पूरे गाने में शायद ही बजाया गया होता है, क्योंकि कभी कभी कहानी के भावों को विस्तृत रूप से उभारने के लिए स्वरों में फेरबदल भी की जाती है, यानी मिश्रित रागों की धुनें ज्यादा सुनाई देती है ताकि गीत अपने भाव को अच्छी तरह से दर्शकों के दिल तक पहुंचा सके। कहने का मतलब है कि रहे न रहे महका करेंगे गीत की शुरुआत पहाड़ी के स्वर के साथ हुई, लेकिन अंतरे में कहीं यमन राग नजर आ रहा है जो रोशन जी का सबसे मनपसंद राग था। आज रागों की अच्छी व्याख्या सभी मित्रों ने की है, धन्यवाद सभी मित्रों का। बिल्कुल, हम तो आपका भी धन्यवाद करेंगे कि आपने अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से कहा है, जो हमारे वो श्रोता इस बात को समझ पाएंगे जिन्हें शास्त्रीय रागों का ज्ञान नहीं है, या उनमें उनका क्या कहना चाहिए, उत्साह नहीं है या शौक नहीं है या नहीं जानते वो उसके बारे में। बिल्कुल आपने सही कहा है कि कोई भी गीत जो है एक ही राग

पर आधारित हो, ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत सारे रागों को मिलाकर भी कई बार इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने बता भी दिया है कि फिल्म चांदनी चौक के बारे में आपने पूछा था कि गीतकार और संगीतकार कौन है, तो मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं रोशन साहब। बिल्कुल सही लिखा आपने। और ये गाना स्मृति विश्वास पर फिल्माया गया था। और आपने ये नहीं बताया कि आवाज़ किसकी थी, गायिका का नाम भी हमें बताइए तो आपका जवाब पूरा हो जाएगा। वहीं आप लिखते हैं कि दरअसल आज के सारे गाने एक राग पर नहीं हैं बल्कि एक मीटर पर आधारित है, और आपने किसी गाने का जिक्र भी इस सूची में शामिल किया है। आप लिखते हैं कि आपका पसंदीदा राग, यानी कि मेरा पसंदीदा राग है कलावती, बागेश्री, शंकरा, देस और मालकोस। अच्छा, ये राग आपको बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है, धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया कि आप इस सफर में हमारे साथ हैं। जो जैसा हमारे श्रोता कह रहे हैं कि थोड़ा सा कठिन है आज का ये सफर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मन की आंखों से जब इस कार्यक्रम को महसूस करेंगे तो शायद आपको भी सफर अच्छा लगेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम का हमें इंतजार था और अब वक्त यूं ही बीत जाएगा। सुहाना मौसम है, शुभ दोपहर है, साथ ही आपका कार्यक्रम चल रहा है उनके साथ, यानी मेरे साथ मंदाकिनी दीदी के साथ। प्रस्तुति सुंदर, कर्ण मधुर, मनमोहक है और हमारे दिल को ठंडक पहुंचा रही है, ऐसा हम मानते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम हम सुनेंगे अंत तक, ऐसा हम वादा करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हमारे यहाँ सचमुच ठंडी हवाएं चल रही हैं जो बादलों को उड़ाकर ले जा रही हैं। आइए सुनते हैं इसी क्रम में अगला गीत।

तो देखा आपने संगीत का असर। हमारी श्रोता पूछ रही है कि भाई ये किस फिल्म का गीत है जो अभी आप सुनवा रही हैं। बिल्कुल रहे ना रहे हम वाली गीत जैसी धुन का है, जैसा गीत है। हमने आपसे यही तो कहा ना कि कई बार जब हम बहुत ही गहराई से किसी गीत को सुनते हैं, हो सकता है हम उस मीटर को ना समझते हों कि ये गीत किस मीटर में गाया गया है, लेकिन जब हम उसे बहुत गहराई से सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो उस गाने की धुन जैसा ही है जैसा कि अभी हमारी श्रोता ने पूछा। तो हम आपको बता दें, ये आशा भोसले की आवाज में फिल्म नरम गरम से हमने लिया था ये गीत। गुलजार साहब के बोल थे और राहुल देव बर्मन की धुन थी। हमारे श्रोता ने लिखा है कि दादा बर्मन ने 1951 में फिल्म नौजवान में एक गीत रचा था, ठंडी हवाएं लहरा के आई। लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिर साहब के बोल थे। इस गीत के माधुर्य से प्रभावित होकर दादा के समकालीन संगीतकार रोशन ने 1954 में फिल्म चांदनी चौक में गीत रचा, तेरा दिल कहाँ है। इसमें आवाज आशा भोसले की है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो गायिका आशा भोसले हैं जिनकी आवाज हम सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और रोशन की धुन तो थे ही, लेकिन दादा का गाना संगीतकार मदन मोहन को इतना भाया था कि उन्होंने 1964 में फिल्म आपकी परछाइयां फिल्म में इसका मुखड़ा इस्तेमाल किया। यही है तमन्ना, जिसका गीत अभी आपने सुनवाया था, तेरे घर के सामने मेरी जान जाए। कहानी यही खत्म नहीं हुई, संगीतकार रोशन साहब ने इसी धुन को फिर इस्तेमाल किया 1966 की फिल्म ममता में और लता मंगेशकर से गावाया मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना रहे ना रहे हम महका करेंगे। अब ये गीत इतनी प्रसिद्धि देखने के बाद पिताजी की आरडी बर्मन ने भी इस धुन को आधार बनाकर कुछ गीत बनाए और 1981 में आशा भोसले का गाया फिल्म नरम गरम का गाना हमें रास्तों की जरूरत नहीं, जो कि अभी आपने सुनवाया, इसी धुन का एक बार और इस्तेमाल किया गया। और 1983 में फिल्म अगर तुम न होते में भी इसी को फिर से उन्होंने दोहराया। बात और आगे बढ़ी और आपने इसी तरह से बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी गहराई से इस बात को रखा कि आज जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं वाकई इसी बात पर आधारित है कि किस तरह से गीतों को रचा गया और किस तरह से जब संगीत प्रेमी श्रोता उन्हें सुनते रहे तो उन्हें लगा कि अरे ये उस गाने की जैसा ही गाना है। बस यही आज के कार्यक्रम की असली थीम है। तो आइए बढ़ते हैं आगे।

वही जो हमारे श्रोता भी लिख रहे थे कि आगे अगर तुम न होते इस फिल्म में भी इसी बात को दोहराया गया, इसी मीटर को दोहराया गया। किशोर कुमार की आवाज है, गुलशन बावरा की रचना है और पंचम दा की धुन है।

किशोर कुमार की आवाज थी और फिल्म का नाम था अगर तुम न होते। और मैं हमारे उसी श्रोता की बात को आगे भी रखना चाहूंगी जिन्होंने पूरी तरह से अपनी बात रख दी है इस कार्यक्रम के लिए। यूं समझिए कि ये पूरा कार्यक्रम उनकी लिखी इस इबारत में आ गया है। बिल्कुल, वो लिखते हैं कि अगर तुम न होते 1983 की फिल्म थी और हमें और जीने की चाहत न होती बात और आगे बढ़ी। और 1985 आर डी बर्मन ने इसी धुन पर बनाए एक और सुपरहिट गाना फिल्म सागर का लिया। और फिर आप लिखते हैं कि आर डी बर्मन के संगीत साम्राज्य के 9 रत्नों में से एक बासु चक्रवर्ती साहब ने भी इस धुन के नोटेशंस पे थोड़ा हेर फेर कर 1992 की फिल्म नरगिस में जगजीत सिंह साहब से दो गाने गवाए थे, कहा था जो तुमने और दूसरा था दोनों के दिल हैं। और दोनों को ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि किस तरह से ये गाने आपस में मेल खाते हैं। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने इतनी गहराई से अपनी बात हम तक पहुंचा दी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, अच्छा अब हमारे सवालों के जवाब आप देने लग गए हैं। आप लिखते हैं कि एक प्यार का नगमा है, मेरी तमन्नाओं की तकदीर और तुम अगर मुझको ना चाहो, ये गीत आपको एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, यहाँ पर हमें शास्त्रीय रागों पर आधारित एक जैसे गीत नहीं चुनने हैं, क्योंकि वही बात कि हर श्रोता शास्त्रीय रागों पर आधारित गीतों को समझने के लिए जरूरी नहीं कि उसके पास शास्त्रीय ज्ञान हो। हाँ, वो क्या महसूस करता है एक श्रोता के तौर पर, एक श्रोता के रूप में, वही काफ़ी है। तो आपको कौन से गीत एक से लगते हैं वही हम जानना चाह रहे थे। एक श्रोता लिखते हैं कि ये किस फिल्म का गीत था, बिल्कुल रहे ना रहे हम जैसी धुन, अरे आपने अभी तो सुना था। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय थोड़ा कठिन है पर आज गीत बहुत सुंदर बज रहे हैं। तो भाई सफर थोड़ा कठिन भी तो अच्छा लगता है ना, लेकिन आपको मेरे साथ अंत तक, हमारे साथ अंत तक चलना है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि रागों का ज्ञान हो, ऐसा नहीं है, रागों का ज्ञान हमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो गाने शास्त्रीय तरीके से गाए जाते हैं वो बहुत पसंद हैं, जैसे कि झनक झनक तोरी बाजे पाई लिया। अच्छा, ये गीत आपको बेहद पसंद है। वही एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी चौक 1954 की फिल्म, ये गाना भी नौजवान वाले मीटर से ही बंदा है, गीत शैलेंद्र, संगीत रोशन, स्वर आशा भोंसले का था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म चांदनी चौक के लिए मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा था, संगीतकार रोशन साहब थे, गीतकार शैलेंद्र नहीं थे भाई, मजरू साहब थे और संगीतकार रोशन थे और आवाज आशा भोंसले की थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे राग शिवरंजनी ज्यादा पसंद है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने ऐसे कई गाने विविध भारती पर सुने जो एक जैसे हैं पर अभी याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं ना, वही काफी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गिटार के साथ पियानो का प्रिल्यूड राग पहाड़ी है चांदनी चौक, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, एसडी बर्मन के नौजवान के गाने से जबरदस्त शुरुआत हुई और सभी की पसंद का सम्मान किया गया।

तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसा ही एक और गाना राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ सुनते हैं, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम सागर। अब थोड़ा सफर हल्का हुआ ना, कठिन नहीं है ना?

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं शास्त्रीय रागों के मामले में अनाड़ी जरूर हूँ, कोई बात नहीं, परंतु मैं सच कह रहा हूँ कि महकते हुए अच्छे श्रोता की तरह सुरीला सफर प्रोग्राम में आप द्वारा सुनाए जा रहे अनमोल गीतों का मैं आनंद जरूर ले रहा हूँ। वही एक श्रोता लिखते हैं कि इतनी समानता सब धुनों में, मजे की बात है, सबकी खुशबू अलग अलग है, कमाल है हमारे भारतीय संगीत को और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुल मिलाकर कार्यक्रम का विषय वस्तु संग तालमेल

आकर श्रोतागण भी सक्रिय हैं और बराबर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने अपनी पसंद के गीत लिखे हैं कि वो उन्हें एक जैसा लगता है, आज मौसम की मस्ती में या दो बदन प्यार की आग में, इस तरह के गीत उन्हें पसंद आते हैं और वो एक जैसे उन्हें महसूस होते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीले सफर का विशेष आकर्षण है फिल्म ममता का अमर गीत रहे न रहे हम। संगीतकार रोशन ने इस गीत में राग पहाड़ी के स्वरों का अत्यंत सटीक, संतुलित और सुरुचिपूर्ण प्रयोग किया। यही कारण है कि ये गीत केवल अपनी मधुर धुन के लिए नहीं बल्कि राग पहाड़ी की आत्मा को सहजता से अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी फिल्म संगीत की अमूल्य धरोहर बन गया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ए मेरे हमसफर ए मेरी जान ने से मिलता जुलता गाना है हसीना जाने जा जाने मन, ये गाने हमें सिमिलर लगते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये कार्यक्रम हम सुन रहे हैं और गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में गजल तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से, और जॉय मुखर्जी की फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का की गजल हमको तुम्हारे इश्क ने, ये हमें अच्छे लगते हैं और सिमिलर लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हवाओं पर तो बहुत सारे गीत बने हैं और क्या ही अच्छा हो जब आप हवाओं पर कुछ कार्यक्रम पेश करें। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने इबारत कुछ अलग तरह की दी है, इसलिए पहले मुझे घर की बनी हुई अदरक इलायची वाली चाय ऑफिस में पीनी होगी ताकि मेरे दिमाग का केमिकल लोचा एक्टिव हो जाए और मैं सही कमेंट्स लिख सकूं, क्योंकि रागों के मामले में मैं अनाड़ी हूं। मैं एक श्रोता ने लिखा है कि सौंदर्य वही है जहां प्रतीक्षण नवीनता हो। वास्तव में चित्रपट संगीत का क्षेत्र बहुत विशाल है क्योंकि इसकी रचना शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक संगीत और पाश्चात्य संगीत के आधार पर होती रही है। संगीत निर्देशकों ने श्रोताओं की रुचि को ऐसे संगीत का सृजन कर छोड़ा है जो कहीं पर पूर्ण शास्त्रीय संगीत में रचे हैं, कुछ उपशास्त्रीय तो कुछ लोक संगीत में, और इनमें कहीं कहीं पर प्रयोग के तौर पर पार्श्व संगीत और गौण धुन का बेहतरीन संयोजन किया गया है। ध्यान रहे कि गौण धुन मुख्य धुन को दबाती नहीं है बल्कि एक नया संगीतमय रंग और गहराई जोड़कर उसे और आकर्षक बना देती है। कितनी सुंदर और शानदार बात आपने लिखी है। और अब इस कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम प्यार का तराना। इस गीत के बारे में आपको मालूम था?

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म प्यार का तराना का ये गीत सुना और आज का ही कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं। आप समझ गए आज के इस कार्यक्रम का मर्म क्या था। जी हाँ, राग पहाड़ी से प्रभावित होकर अलग अलग संगीतकारों ने अपने अपने जो गीत रचे और उसमें अलग अलग शास्त्रीय रागों को पिरोकर एक ही मीटर में जो संगीत हम तक पहुँचाया उसी को आज आप तक लाना हमारा उद्देश्य था। आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। अब आपको ये कठिन सफर आज का कठिन नहीं लगा होगा। मुझे लगता है कि अब सफर के आखिरी सोपान पर हम मिल रहे हैं और एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं कि हमने एक दूसरे का साथ दिया। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं यानी सफर से इजाजत। फिर मिलूंगी, नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 36वीं कड़ी।

वंदे मातरम, इन शब्दों के प्रचार में तत्कालीन समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बंग भंग विरोधी आंदोलन के कारण पूरे देश में चल रही स्वाधीनता की लड़ाई वंदे मातरम शब्दों पर केंद्रित

रोजमर्रा की इस्तेमाल की वस्तुओं पर भी वंदे मातरम शब्द दिखने लगे। राष्ट्र ध्वज पर भी वंदे मातरम शब्द आ गए और आम लोगों के मन में स्वतंत्रता की ज्योति जलाने वाले

0: Bihar, Sub Himal and West Bengal, Sikkim and North East India for the next 2 days. Talking to Akashwani News scientist at IMD, Dr. Shashi Kant said there is no warning for Delhi and NCR today and tomorrow.
1: Till 9th of July of this month, from 1st June 2026 to 9th July, monsoon rainfall departure was negative in minus 14 over our country. And main zone of negative departures was recorded over eastern parts of Uttar Pradesh, Bihar and Northeast India, in south Kerala and coastal Karnataka, and western parts of the country, Saurashtra and Marathwada.
0: Monsoon activity continues to remain active across several parts of Himachal Pradesh, with persistent rainfall affecting many areas. A report.
2: The southwest monsoon continues to remain active in Himachal Pradesh, with widespread rainfall affecting normal life in Shimla, Solan, Sirmaur and several other parts of the state. Pachad in Sirmaur district recorded the highest rainfall of 207 mm since last night. Heavy rainfall has led to a rise in the water levels of the rivers and streams, prompting the administration to advise people to remain cautious and avoid venturing near water bodies. As a precautionary measure, all educational institutions in Sirmaur and Solan districts have been closed today. Continuous rainfall has also triggered landslides in different parts of the state, while power and drinking water supply have been disrupted at several places.
0: In the FIFA World Cup, in the second quarterfinal tonight, Spain will face Belgium. India's women's cricket team will create history today when they play the first test match at the iconic Lord's Cricket Ground in London against England this evening. It will be the first ever women's test to be held at the Lord's. Led by Harmanpreet Kaur, India will look to make the occasion memorable in this historic encounter. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive shortly in Auckland on a two-day visit to hold talks with his New Zealand counterpart. Centre amends drugs rules to regulate high alcohol-containing drug formulations. India strongly condemns conflict-related sexual violence at UNSC, describes it as tool of war and terrorism. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Uttarakhand today. In FIFA World Cup, Spain to face Belgium in second quarter-final tonight. And in women's cricket, India to take on England in historic one-off test match at Lord's Cricket Ground in London this evening. The details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
4: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और

0: 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: And we've always had a good close relationship with India in playing hockey and the early Indian teams that came here 100 years ago.
0: 100 वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 5% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह की हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र एक संविधान और

0: अजा राष्ट्र भविष्य की मजबूत नींव रखी।
1: टुडे भारत इज मार्चिंग कॉन्फिडेंटली टुवर्ड्स द विजन सेट बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ए विकसित भारत बाय 2047। National integration, cooperative federalism, and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश चोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
3: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल हैं। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रति

प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत। लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म का नाम आशिक, गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत शंकर जयकिशन का।

और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी को, फिल्म का नाम है आरती, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन रोशन की।

0: उसकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हसरत जयपुरी का लिखा हुआ है, शंकर जयकिशन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम असली नकली।

फिल्म रंगोली का गीत सुनिए, इसे आवाज लता मंगेशकर ने दी है, शब्दकार शैलेंद्र हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम संगीत सम्राट तानसेन, रचना शैलेंद्र की और धुन SN त्रिपाठी की।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गीता दत्त को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था साहिब बीबी और गुलाम। इस गीत को शकील बदायूनी ने लिखा था और धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने। इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज होंगी कुछ बारिश से जुड़ी बातें, यादें और किस्से, क्योंकि बारिश का मौसम सबको लुभाता है। बारिश में भीगने का मन और नाचने का मन किसी न किसी का तो होता ही होगा। बारिश में बचपन बहुत याद आ जाता है, जब बचपन में शरारते मस्ती क्या करते थे और बारिश के पानी के संग खेला करते थे, तो वो कुछ यादें भी आज ताज़ा होंगी। तो आज हम इसी पे करेंगे चर्चा, जिसमें नहीं लगेगा कोई खर्चा, है ना। तो मुझे सुनाई दे रही है फ़ोन की घंटी और देखते हैं कि कौन है हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, सोनिया।
0: सोनिया जी, आप बड़ौदा से बोल रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, मैं आज आपने फोन लगाया, तो आपको कैसा लग रहा है?
1: अच्छा लग रहा है।

0: मेरे को
1: जी। और क्या करती हैं आप?
0: हमारी लॉन्ड्री है बंगाली में, है हमारी लॉन्ड्री खुद की है
1: जी।
0: और यहाँ पे कोयली गांव में हमारा मकान है
1: जी जी जी
0: अभी हमारे छोटा बाबू आया है, अभी सवा महीने का हुआ है।
1: अच्छा, अरे बात, अब तो बहुत आप बिजी रहती होंगी इसमें।
0: हाँ,
1: अच्छा,
0: 7 साल बाद में आया अभी।
1: अच्छा, चलिए, आपको अपने छोटे से बच्चे के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये बताइए सोनिया जी कि बारिश आपको कैसी लगती है? बारिश में आप क्या क्या और चीज़ें ध्यान रखती हैं, उस पर भी हमें कुछ बताइए।
0: बारिश अच्छी भी लगती है, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है।
1: जी, किस तरह का आप ध्यान रखती हैं बारिश में?
0: ये कि बच्चे गीले ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सर्दी जुकाम का, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। बच्चा आ गया छोटा, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ज्यादा।
1: जी, और बारिश की कोई जुड़ी यादें बचपन में हो आपकी?
0: जी, बचपन में तो बहुत नहाते थे हम लोग, बारिश जैसे बारिश होती थी वैसे बहुत नहाते थे बाहर जाके।
1: अच्छा, सुनिए जी, आपको जो गाना पसंद है उसके बोल बताइए।
0: पापा में पापा बन गए, मेरे बाबू का नाम राघव है, राघव रखा है।
1: अच्छा जी, राघव जी को तो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये वाला गीत।
2: पापा!

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं समा दीवान बोल रही हूँ, नर्मदापुरम जिला तहसील सोहागपुर से।
0: जी, आप क्षमा दीवान?
1: जी
0: जी क्षमा दीवान जी, आप बताइए कि आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: मेरे को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है।
0: बारिश में क्या खास करती हैं आप?
1: मैं वृक्षारोपण वगैरह करती हूँ, बम बीज बनाती हूँ, उनको बिखेरती हूँ जंगलों में जाके, नहरों पे जाके।
0: अच्छा,
1: हमारी एक संस्था है महिलाओं की
0: जी,
1: तो हम लोग सभी इकट्ठे होकर वहाँ पे ये बनाते हैं और जाते हैं ग्रुप में और सभी दूर उनको बिखेरते हैं।
0: अच्छा,
1: हम लोग इसमें करते हैं जैसे स्कूलों में जाके गरीब बच्चों की फीस वगैरह भरते हैं
0: जी,
1: उनको कॉपी पुस्तक दिलाते हैं
0: जी। तो ये तो आप बहुत अच्छा काम करती हैं।
1: हमारी संस्था ने एक स्कूल को गोद लिया है तो उसके बच्चों को हम लोग हर साल 15 अगस्त पर गिफ्ट वगैरह देते हैं
0: जी
1: और कार्यक्रम करवाते हैं हम लोगों से।
0: तो बच्चे तो बहुत खुश हो जाते होंगे कि जब उनको गिफ्ट मिलता है और
1: बहुत खुशी होती है बच्चों की।
0: जी, और बताइए और अपने बारे में कुछ।
1: जैसे महिलाओं के लिए सिलाई मशीन दिलवाते हैं जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं,
0: तो जिनको मान लीजिए सिलाई नहीं आती है तो उनको भी आप देती हैं?
1: नहीं, उनको हम जैसे हमारे ग्रुप में जो महिलाएं को आती है सिलाई उनसे प्रशिक्षण दिलवाते हैं पहले।
0: जी जी जी,
1: फिर उसके बाद उनको सिलाई मशीन दिलवाते हैं।
0: जी, तो फिर
1: नहीं आता है।
0: हाँ जी,
1: एक खूब गरीब परिवार की बेटी थी
0: जी,
1: उसका माँ बाप नहीं थे तो उसका विवाह हम लोग की संस्था ने करवाया।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। और बताइए क्या आज आप सुनना चाहेंगी?
1: मैं सुनना चाहती हूँ, मेरा फेवरेट गाना है आँखियों के झरों के से जो देखा एक बार।
0: क्या बात है, ये गाना ही बहुत अपने आप में बहुत सुंदर सा प्यारा सा गीत है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बस इसी तरह हमारे वेद भारती से जुड़ी रहिए। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये वाला प्यारा सा गाना।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनीता राजपूत दिल्ली से बोल रही हूँ।
0: अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए।
1: हमारे परिवार, हमारे पति को बहुत शौक है संगीत का
0: जी,
1: बहुत ज्यादा शौक है। और मेरे बेटे, बहू है और बेटी भी है, हम लोग 5 जन हैं।
0: क्या बात है। आपको बारिश का मौसम कितना पसंद है?
1: अच्छा लगता है, पानी गिरता है जब
0: जी,
1: टिमटिमा पानी गिरता है तो अच्छा लगता है।
0: क्या मन करता है कि बारिश में भीग ले, नहा ले?
1: जी, घूमने कहीं चले जाएं और क्या।
0: क्या बात है, हरी हरी वादियों के बीच में घूमने जाएं हैं?
1: जी जी।
0: बचपन की कोई आपकी कुछ यादें, दोस्तों के संग हो, सहेलियों के संग हो, कुछ यादें याद है तो साझा कीजिए।
1: जी जी, मैं 4 भाइयों में एक बहन हूँ
0: जी,
1: तो साथ में खेले हैं हम लोग
0: जी,
1: पानी में, बारिश में, वहाँ पर
0: जी
1: जी, तो अच्छा लगता था। पहले बचपन की बहुत यादें आती हैं हम लोगों को।
0: अब ये बताइए कि आपको कौन सा गाना आज सुनवाया जाए आपकी पसंद का?
1: हमारे लिए विवाह फिल्म का कोई सी भी गाना अच्छा लगता है।
0: जी बिल्कुल, नीता जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का विवाह फिल्म का कोई भी गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं स्मिता बेन राजेंद्र कुमार शाह अहमदाबाद सावरमती से बोल रही हूँ।
0: स्मिता जी बोल रही हैं। तो स्मिता जी, बारिश का जो मौसम होता है, तो जब आप बच्ची थी तो आपको कैसा लगता था? क्या क्या आप खेल करती थी?
1: बारिश में भिगना और पानी में छप छपना बहुत अच्छा लगता था पहले।
0: तो और बताइए अपने बारे में, आपको क्या शौक है, अपने दिन को कैसे बिताती हैं, ये इस बारे में कुछ बताइए।
1: मेरे को सबकी मदद करना अच्छा लगता है। मैं रिटायर्ड पोस्ट वुमेन हूँ
0: जी,
1: गुजरात की फर्स्ट लेडी पोस्ट वुमेन हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बड़े गर्व की बात है।
1: अभी रिटायर्ड हो गए, 8 साल हो गए, 68 की हो गई मैं
0: जी। तो
1: हेल्प करना अच्छा लगता है मेरे को।
0: जैसे कि आप किस तरह की हेल्प करती हैं लोगों की?
1: कोई बीमार हो गया तो मैं दवा बहुत सत्कार करती हूँ।
0: तो ये बहुत नेक काम है, बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं। जो सोचते हैं, हम तो कहते हैं बहुत पुण्य का काम करते हैं वो। तो और स्मिता जी, ये बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं दिल अपना और पीत पाई का गाना
0: जी। बहुत सुंदर सा गीत आपने चुना है, दिल अपना और प्रीत पराई। तो चलिए स्मिता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही है, अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सरिता पांडे बोरीवली से बोल रही हूँ।
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप क्या करती हैं, घर में क्या क्या शौक हैं आपके?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ
0: जी।
1: मैं सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ करती हूँ थोड़ा बहुत।
0: और सरिता जी, हम आज बात करने वाले हैं बारिश के विषय में कि बारिश आपको कितनी अच्छी लगती है और बारिश में आप क्या क्या सावधानियां रखती हैं।
1: बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, बारिश में घर गंदा ना हो ये सब साफ सुथरा रखता है।
0: जी बिल्कुल। और बारिश में आपने कभी बचपन में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करी?
1: हाँ, हम लोग बारिश में गांव में रहते थे, मेरा गांव सुल्तानपुर है
0: जी।
1: हम लोग गांव में बारिश में खेलते थे,
0: अच्छा
1: खो खो खेलते थे।
0: ये बताइए कि जब कभी घर में कुछ खत्म हो जाता है रसोई में, तो फिर अचानक आप क्या सोचती हैं कि मेहमान के लिए हम क्या बना दें फटाफट?
1: जो कुछ रहता है उसको मिक्स करके हम लोग उसका कुछ ना कुछ अच्छा डिश बना के मेहमान को देते हैं।
0: क्या बात है, यानी कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है ना, गृहिणी
1: बन
0: की
1: ही जाता है।
0: जी।
1: हाँ,
0: जैसे पकौड़ी बना ली, सूजी का हलवा बना लिया, है ना?
1: कुछ भी बना। हाँ,
0: और मान लीजिए सूजी कम है तब?
1: इसमें थोड़ा बेसन या बेसन मिक्स कर देते हैं, वो भी अच्छा बनता है हलवा।
0: बिल्कुल सही बात आपने बताई, ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि अगर सूजी कम है तो उसमें बेसन मिला दिया। और आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: मेरी फैमिली बड़ी है, जेठ जेठानी
0: जी
1: बहू
0: जी
1: पोते पोती
0: क्या बात है, भरा
1: बच्चे।
0: पूरा परिवार है, यानी कि बहुत
1: हाँ।
0: अच्छा लगता है आपको, है ना? तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सरिता जी। तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: हम आशीर्वाद फिल्म का बारिश का गाना।
0: ठीक है सरिता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ यूं पल में ख़त्म और आपकी दोस्त मंजरी वर्मा फिर आपसे बातें करने आ गई है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली
0: जी, स्वागत है।
1: नमस्ते मंजरी जी।
0: अरे वाह, आपको तो मेरा नाम याद है।
1: अरे आपकी आवाज से पहचान गए मंजरी जी।
0: और बताइए अपने बारे में, कुछ बताइए हमें।
1: एक हाउस वाइफ हूँ, साधारण सी गृहिणी।
0: प्रतिमा जी, आप हाउस वाइफ है, साधारण सी गृहिणी आपने कहा है, तो हम ये कहेंगे कि आप साधारण सी नहीं हैं, आप बहुत ख़ास हैं। और हर गृहिणी जो होती है वो पूरे परिवार की एक धुरी होती है, सबको लेकर चलती है, सबके लिए सेवा करती है, सबका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, और सुबह उठती है और रात में ही वो पूरे घर के काम निपटा के सोती है। तो ये बहुत पुण्य का काम है, सेवा भाव है। मेरे दिल में बहुत सम्मान है गृहिणियों के लिए, जो भी गृहिणियाँ हैं उनके लिए बहुत सम्मान है। और बताइए कि ये मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे बारिश का मौसम होता है ना, तो वो जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो आपको कैसा लगता है?
1: मुझे तो बारिश का मौसम बहुत पसंद है, इतना सुंदर हरियाली चारों तरफ हो जाती है
0: जी।
1: ऐसा लगता है जैसे पेड़ पूरे नहा लिए पानी से,
0: हाँ
1: भरी हो।

0: जाते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बारिश का मौसम
1: जी। और
0: उसके तो गाने भी इतने अच्छे अच्छे आते हैं उस समय रेडियो में कि वो सुन के भी मन खुश हो जाता है।
1: क्या बात है। और बारिश में बचपन में कोई शरारतें आपने सखियों के साथ या भाई बहनों के साथ करी हो या मस्ती करी हो, कुछ ऐसे किस्से याद है आपको
0: बारिश में? देखिए पहले की तो बात बताएं तो हम लोग को जैसे ही बारिश देखते थे तो स्कूल जाने में छुट्टी मिल जाएगी, इस बात की बड़ी खुशी होती थी। और अब की जो बारिशें हैं उसमें ये खुशी होती है कि चलो अब ये लोग ऑफिस नहीं जाएंगे।
1: सही बात है। और वो अगर
0: घर में पकौड़े और सब ये सब बनेंगे।
1: क्या बात है, यानी कि आप गृहिणी बिल्कुल अच्छी वाली गृहिणी है कि सबका इंतजार कर रही है कि पानी हो और ये लोग नहीं जाए तो हम पकौड़े वगैरह बनाए। बढ़िया बढ़िया है ना। तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर के। प्रतिमा जी ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं?
0: हाँ, सुबह से रात तक।
1: क्या बात है। तो सबसे अच्छे प्रोग्राम आपको विविध भारती के क्या लगते हैं?
0: सबसे अच्छे प्रोग्राम वंदनवार।
1: जी जी,
0: उसमें
1: जी
0: जो चिंतन आता है वो बहुत अच्छा लगता है।
1: क्या बात
0: है। रामचंद्र चरित मानस में जो पहले उसकी समीक्षा करते हैं ना, बताते हैं
1: जी, जी,
0: स्टोरी
1: जी,
0: वो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
1: क्या बात
0: क्योंकि
1: है।
0: वो सुनो तो उसके बाद वो रामायण सुनने में बड़ा समझ में आ जाता है।
1: सही बात है, उसकी विस्तार व्याख्या सुन के बहुत अच्छा लगता है ना।
0: बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो और बाकी प्रोग्राम सभी अच्छे हैं विविध भारती के
1: जी।
0: और मैं सब सुनती रहती हूँ।
1: क्या बात है। तो चलिए बहुत अच्छा लगा। प्रतिमा जी आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: एक्चुअली ये पसंद मेरी मम्मी की है
1: जी।
0: स्वप्न झरे फूल से नीत चुभे शूल से, वो है ना, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे।
1: ठीक ठीक ठीक। तो प्रतिमा जी आपको आज हम सुनवाते हैं आपकी मम्मी की पसंद का ये प्यारा सा गीत।
2: स्वप्न झरे फूल से।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं अंजू श्रीवास्तव बोल रही हूँ भोपाल से।
0: अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे
0: जी,
1: अभी जाके लगा है आपका कॉल।
0: देखिए, कोशिश रंग लाई ना, आपने कॉल लगाने की कोशिश करी और कॉल आपकी लग गई। ये बताइए अंजू जी कि भोपाल का कैसा मौसम है इस समय?
1: भोपाल का मौसम बहुत ही सुहाना है
0: जी,
1: चारों तरफ हरियाली, पानी और मतलब आंखों को बिल्कुल सुकून देने वाला मौसम है।
0: क्या बात है, यानी कि बारिश वहां पर भी खूब हो रही है।
1: बहुत हो रही है
0: तो बारिश से जुड़ी हुई कुछ यादें हो तो आप साझा
1: जी,
0: कीजिए।
1: बहुत बहुत यादें हैं बारिश से जुड़ी हुई, स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की। हम लोग वहाँ पास में, हम एक्चुअली मेरा मायका होशंगाबाद में है
0: जी,
1: तो मैं वहाँ पे हम लोग स्कूल के बाद वहाँ से चले जाते थे, पहाड़िया एक पास में जगह थी
0: जी,
1: तो वहाँ पे अपनी अपनी गाड़ी से हम लोग जाते थे फ्रेंड सर्किल
0: जी
1: पूरा, और वहाँ जाके पिकनिक जैसा बहुत बार मनाए हम लोग। बहुत अच्छा मौसम वहाँ का भी रहता था, पूरी हरियाली और पहाड़ियाँ।
0: दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना एक अपना ही अलग आनंद

0: लोग वहाँ पास में, हम एक्चुअली मेरा मायका होशंगाबाद में है
1: जी,
0: तो मैं वहाँ पे हम लोग स्कूल के बाद वहाँ से चले जाते थे, पहाड़िया एक पास में जगह थी
1: जी,
0: तो वहाँ पे अपनी अपनी गाड़ी से हम लोग जाते थे फ्रेंड सर्किल
1: जी
0: पूरा, और वहाँ जाके पिकनिक जैसा बहुत बार मनाए हम लोग, बहुत अच्छा मौसम वहाँ का भी रहता था, पूरी हरियाली और पहाड़ियाँ।
1: दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना एक अपना ही अलग आनंद का समय होता है, तो कुछ शरारतें भी होती होंगी आपस में दोस्तों में।
0: हाँ जी हाँ, बहुत बातें होती रहती।
1: और ये बताइए कि बारिश के समय में क्या क्या आप सावधानियां रखती हैं, जैसे बाहर जा रही हैं, घर से निकल रही हैं, तो क्या खास बातें ध्यान रखती हैं?
0: बस ये साफ सफाई का और अच्छी जगह खाना, मेन तो साफ सफाई का है बहुत ध्यान रखने का।
1: इस समय आप क्या शौक रखती हैं?
0: मतलब मुझे फ्रेंडशिप बहुत पसंद है और अभी आज भी वो शौक बरकरार है मेरी, मतलब बचपन की फ्रेंड अभी तक हम लोग सब ग्रुप है
1: जी,
0: तो हर बार मिलते हैं, 3-4 साल में मिलते हैं पर मिलते हैं,
1: क्या
0: कभी
1: बात
0: कभी
1: है?
0: कुछ लोगों से 1 साल में मिलना हो जाता है।
1: बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आज भी आप अपनी दोस्तों के साथ जुड़ी हुई हैं।
0: मेरा एक तो म्यूजिक का मुझे थोड़ा सा शौक है
1: जी,
0: तो ये म्यूजिक वाले प्रोग्राम में बहुत देखती हूँ
1: जी,
0: मतलब पूरी फैमिली को ही हमारे म्यूजिक का शौक है। मेरा गेम्स था
1: जी,
0: पहला स्कूल टाइम में, कॉलेज तक मैंने मतलब 5th क्लास में मैंने जो बास्केटबॉल खेला है तो स्टेट लेवल तक खेला हुआ है मेरा, नेशनल में तक पहुंच गई थी मैं
1: जी जी जी
0: तो बहुत खेला है, मतलब मेरा पैशन था, वो पैशन था कि मुझे बास्केटबॉल ही खेलना है और वो ही मैंने एक ही गेम चुना और उसको लास्ट तक
1: जी,
0: स्कूल पूरा कॉलेज पूरा वो खेला।
1: क्या बात है, यानी गेम्स के प्रति, वो भी बास्केटबॉल खेलने में तो बड़ा मजा आता है, और कभी जब बारिश होती तो ये गेम तो और भी अच्छा लगता होगा खेलने
0: और
1: में।
0: भी अच्छा लगता है।
1: तो अंजू जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: आज मैं टिप टिप बरसा पानी सुनना पसंद करूंगी।
1: तो अंजू जी आज आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना, लीजिए सुनिए ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं सरिता बोल रही हूँ, पुणे से।
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैंने बचपन से आज तक रेडियो ही सुने हैं।
0: क्या बात है, तो रेडियो आप सुबह से लेकर रात तक सुनती हैं, तो आपको कौन से प्रोग्राम रेडियो के अच्छे लगते हैं?
1: सब सारे प्रोग्राम उनको बहुत पसंद है।
0: क्या बात है,
1: माला हुआ, फिर छाया गीत, हेलो फरमाइश, हेलो सहेली
0: जी। तो ये बताइए कि और आपको क्या पसंद है?
1: हमको जितना कला है सब पसंद है, चाहे ड्राइंग हो, गीत संगीत, नृत्य, सिनेमा देखना, ये सब की रेडियो सुनना, सब चीज पसंद है।
0: तो आप ड्राइंग भी
1: कला के फैन है।
0: कला के फैन है, क्या बात है जी। कला तो बहुत अनंत होती है,
1: हाँ
0: उसकी कोई सीमा नहीं, हर चीज में कला आपको नजर आती होगी, है ना?
1: हाँ हाँ
0: जी। तो ये बताइए,
1: हाँ।
0: बारिश जब होती है तो उसमें आपको कैसा लगता है?
1: अरे बारिश का तो पूछो मत। हम तो मैंने बचपन में बारिश जब होती थी तो उसका बैठ के और फोटो बनाते थे अपने से,
0: अच्छा।
1: बिना सीखे ही बहुत बनाते थे, और बहुत हमको बारिश में भीगना, नहाना सब बहुत पसंद।
0: क्या बात है,
1: बारिश देखना भी बहुत पसंद है। ऐसे अभी बालकोनी में बैठ के बारिश देखना, अभी तो पुणे में बहुत बारिश हो रही है
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: मेरे बालकोनी से दिखता है।
0: और बताइए, और क्या शौक है आपके?
1: और बस सबको खिलाना, सबसे बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना,
0: जी।
1: बस यही सब मेरा शौक है।
0: क्या चीज खिलाना पसंद करती हैं? आपको क्या पसंद है, क्या बनाए?
1: नहीं, खाना हम अच्छा बनाते हैं, और तरह तरह जो भी बनाते हैं वो किसी को बुला के खिलाना,
0: क्या बात है,
1: ये सब मेरा शौक है कि भाई आए मेरे यहाँ, खाए, बैठे, गप्पे मारे।
0: जी। आज बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: तिलक मंदिर फिल्म का
0: जी।
1: हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।
0: ठीक है, तो हम आपको सुनवाते हैं तिलक मंदिर का ये प्यारा
1: आप ही
0: संगीत।
1: के प्यार में सारा आलम हम खो बैठे।
0: क्या बात है, और यही सारा प्यार हमारा भी है आप सभी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं रतिका तिवारी हूँ, सूरत गुजरात से।
0: रसिका जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है?
1: मुझे फिल्मों के गीत सुनना बहुत पसंद है और सखी सहेली
0: जी
1: और रेडियो सुनना, और उसमें खास तौर पे सखी सहेली मैं रोज सुनती हूँ।
0: क्या बात है। अच्छा ये बताइए रसिका जी कि बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: हाँ, बारिश का मौसम अच्छा लगता है और आजकल तो बहुत बारिश हो ही रही है।
0: अच्छा क्या सावधानियाँ रखती हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो परिवार में बच्चे हैं, भाई बहन हैं, सबके लिए क्या आप खास ध्यान रखती हैं कि कैसे वो ठीक रहें, स्वस्थ रहें?
1: हाँ, बस ये है कि बारिश में ज्यादा बाहर, जब तक जरूरी नहीं हो तो बाहर ना निकलें,
0: जी
1: घर पे रहें।
0: जी
1: हाँ,
0: और बारिश में क्या क्या चीज़ें बनाती हैं?
1: बारिश में हम लोग पकौड़े खाना पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बारिश आती ही सबको पकौड़े याद आ जाते हैं ना।
1: हाँ,
0: मान लीजिए रसिका जी मेहमान आ गए और रसोई में आप गई और कुछ चीज़ें कम पड़ गई, तो फिर क्या आप जुगाड़ लगाती हैं कि क्या चीज़ हम डाल दें और मिला दें जिससे अच्छी चीज़ बन जाए?
1: वैसे तो मैं ज्यादातर बेसन की बनाती हूँ पकौड़े,
0: जी
1: लेकिन अगर बेसन मान लीजिए कम है तो आटा मिला दिया, उसमें सूजी मिला दी।
0: अच्छा,
1: इस तो तरह, और आलू प्याज ये सब कुछ सब्जी और डाल ली।
0: बहुत अच्छा लगा। और परिवार में आपके कौन कौन हैं?
1: परिवार में मेरी सास
0: जी,
1: नंदे
0: जी
1: और मेरे पति, एक बेटा,
0: भरा पूरा परिवार है। बहुत अच्छा लगा सुन करके। और बारिश का मौसम है तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आज?
1: बारिश के मौसम में मुझे आज बरखा बहार आई,
0: परख मूवी का आपको ये गीत सुनना है तो बहुत
1: हाँ, ये गीत
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: आज हेलो सहेली में सखियों ने की अपने मन की दिल की बातें, और बातों के साथ साथ उन्होंने अपने पसंद के गाने भी बताए जो सबने सुने और सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब इस कार्यक्रम से विदा लेने की घड़ी करीब आ गई है, तो जाने से पहले ये आपको जानकारी नोट करा दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। कॉल करने के लिए नंबर्स जो है वो आप नोट कीजिए, फ़ोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी हिंदी में 4002466 2, एसटीडी है 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए 2867 0288, एसटीडी कोड है 022, यानी 2867 0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। अगले मंगलवार हेलो सहेली में कीजिएगा फ़ोन, नई सहेली से दिलों की बातें कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। प्रत्येक शुक्रवार हेलो सहेली दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। अपने फोन में लगा लीजिए टाइमर अलार्म, जिसे याद रहेगा। जिन सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो मन मायूस ना करें, वो अगली बार कॉल जरूर लगाएं। जिनकी कॉल आज लगी है वो 2 महीने तक कॉल नहीं करें। सखा भाइयों से विनती है वे कॉल नहीं लगाएं, क्योंकि व्यस्त होंगी टेलीफोन्स की लाइनें। अपनी बातों को देते हैं विराम, हेलो सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा। आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के साथ, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नायक और भावना सिंदल ने, और संपादन सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वह पुरानी बेंच। हार हमेशा मैदान में नहीं होती, कभी कभी वो इंसान के मन में होती है। ऐसा ही कुछ यश के साथ भी हुआ था। यश की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। एक प्रतिष्ठित कंपनी में 15 वर्षों तक काम करने के बाद अचानक कंपनी बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। कई महीनों तक नौकरी ढूंढने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म होने लगी और आत्मविश्वास भी। हर सुबह वो अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर जाकर एक पुरानी बेंच पर बैठ जाता। वहाँ बैठकर वो आती जाती ट्रेनों और लोगों को देखता रहता, बिल्कुल अपने बचपन की तरह। यश के पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और छुट्टियों में वो अक्सर उसे स्टेशन ले जाया करते थे। यश घंटों वहाँ बैठकर लोगों और ट्रेनों की आवाजाही निहारा करता था, किंतु आज उसे लग रहा था कि जैसे सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, केवल उसकी ही रुक गई है।
2: जिंदगी का सफर।

इसी तरह उदास यश रोज वहाँ बैठा करता। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वो अपने हाथों से बने अचार और पापड़ बेचने दूसरे शहर जा रही थी। बातचीत में पता चला कि उनके पति का कई वर्ष पहले निधन हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने यश को अपने हाथों से बने अचार भी चखाए और ये भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने जीवन की हर कठिनाई का सामना करते हुए ये छोटा सा व्यवसाय खड़ा किया था। उनकी बातों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलक रहा था। यश ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जीवन में इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी कोई इतना प्रसन्न और उत्साही कैसे रह सकता है। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की उद्घोषणा हुई। यश ने सोचा कि उनका भारी सामान होगा, इसलिए उनकी सहायता कर दे। जैसे ही वो सामान उठाने के लिए झुका, महिला ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया और बोली, बेटा ये तो मेरा रोज का काम है, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगी। ये सुनकर यश स्वयं को रोक न सका। उसने संकोच भरे स्वर में पूछा, माताजी, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, जीवन में इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी आप इतनी प्रसन्न कैसे रहती हैं? क्या कभी आपका मन हार मान लेने का नहीं हुआ? यश के प्रश्न को सुनकर पहले तो महिला मुस्कुराई। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर वर्षों के संघर्ष से उपजा आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं। अगर मैं हार मान जाती तो मेरे बच्चों का भविष्य भी हार मान जाता, इसलिए मैं चलती रही। और एक बात मैंने जीवन में और सीखी है, जब तक हम चलते रहते हैं जिंदगी भी चलती रहती है।

अपनी बात कहकर उन्होंने यश के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी ट्रेन की ओर बढ़ गईं। लेकिन उनके शब्द यश के मन में देर तक गूंजते रहे। जब तक हम चलते रहते हैं, जिंदगी भी चलती रहती है। अगले दिन यश फिर उसी रेलवे स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ गया। तभी एक मनमोहक धुन ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो धुन स्टेशन के प्रथम श्रेणी विश्राम गृह से आ रही थी। सुरों में ऐसी मिठास थी कि कुछ क्षणों के लिए यश अपनी चिंताएं भूल गया और उस संगीत के स्रोत की ओर बढ़ चला। उनकी मधुर आवाज सुनकर अनेक यात्री मंत्रमुग्ध हो गए थे और आसपास खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ क्षणों के लिए पूरे स्टेशन का वातावरण ही बदल गया हो। यात्रियों की भागदौड़, ट्रेनों का शोर और प्लेटफॉर्म की चहल पहल सब उस संगीत के सामने फीके पड़ गए थे।

जब संगीत थमा तब तक यश उस विश्राम गृह के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर उस कलाकार को निहार रहा था। तभी भीतर से आवाज आई, कौन हूँ भाई, क्या मेरा खाना आ गया? अचानक आवाज सुनकर यश थोड़ा घबरा गया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। तभी उस व्यक्ति ने फिर बड़े स्नेह से कहा, अरे रुकिए, क्या मेरा खाना आ गया है? तभी यश को एहसास हुआ कि वो व्यक्ति दृष्टिहीन था। ये जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, खाना आ गया? उसकी खुशबू तो नहीं आ रही। इस बार यश ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मैं खाना लेकर नहीं आया हूँ, दरअसल आपके धुन सुनकर यहाँ चला आया था, मैं तो बस एक राहगीर हूँ। ये सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो संगीत तुम्हें यहाँ तक खींच लाया, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसने यश को पास बैठने का इशारा किया। हाँ बैठो, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ ही भोजन लेने गए हैं, उनके आने में भी थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम ही मेरा साथ दे दो। यश बिना कुछ कहे उनके पास चुपचाप बैठ गया। उसे पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में होने वाली ये बातचीत उसके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाली थी। बातचीत के दौरान यश को महसूस हुआ कि सामने बैठा व्यक्ति न केवल एक असाधारण संगीतकार था, बल्कि एक अत्यंत विनम्र और सकारात्मक सोच वाला इंसान भी था। उसकी बातों में आत्मीयता थी और चेहरे पर एक अजीब सा संतोष। यश के मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि इतना प्रतिभाशाली और अच्छा इंसान होने के बावजूद भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया होगा? ये प्रश्न उसके मन में लगातार उठता रहा। अंततः वो स्वयं को रोक न सका और संकोच भरे स्वर में बोला, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? संगीतकार हल्के से मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, पूछो बेटा। यश कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतना सुंदर संगीत रचते हैं, फिर भी भगवान ने आपसे आपकी दृष्टि छीन ली, क्या आपको कभी अपनी किस्मत से शिकायत नहीं हुई? यश के प्रश्न के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। संगीतकार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, मानो उसने ये प्रश्न पहले भी अनेक बार सुना हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, पहले बहुत होती थी, मैं हमेशा यही सोचता था कि भगवान ने मुझसे मेरी आँखें क्यों छीन ली, लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपसे क्या छिपा है, आँखों के बिना अब ये सब कैसे संभव होगा? मेरी बात सुनकर गुरुजी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, बताओ संगीत के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उत्तर दिया, संगीत का वाद्य यंत्र। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं। फिर मैंने कहा, आवाज? उन्होंने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं। मैंने तीसरी बार उत्तर दिया, संगीत की शिक्षा। इस बार भी उन्होंने कहा, नहीं। संगीतकार कुछ क्षणों के लिए रुक गया, मानो वो उस दिन को फिर से जी रहा हो। फिर गुरुजी ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा, ये तो बाद में सोचेंगे कि संगीत के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले ये बताओ कि जिन चीजों को तुम सबसे आवश्यक मानते हो, क्या वे अभी भी तुम्हारे पास हैं? मैंने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ, वे सब तो मेरे पास ही हैं गुरुजी। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो फिर शुरुआत कर दो। कुछ पलों तक तो मैं उनकी बात का अर्थ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब मैंने अपने ही दिए हुए उत्तरों के बारे में सोचना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी दृष्टि चली गई थी, पर मेरे वाद्य यंत्र मेरे पास थे, मेरी आवाज मेरे पास थी और वर्षों की साधना से प्राप्त संगीत की शिक्षा भी मेरे पास थी। मैं उस एक चीज के शोक में डूबा हुआ था जो मुझसे छिन गई थी और उन अनमोल चीजों को भूल चुका था जो अभी भी मेरे पास थी। ये कहते हुए संगीतकार के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने आगे कहा, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। ये कहकर उसने हारमोनियम पर एक मधुर सुर छेड़ा और कहा, जब मैंने अपनी कमी के बजाय अपनी क्षमता पर ध्यान देना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदल गई। और वो गाने लगा।

तभी उनके साथी भोजन लेकर कमरे में आ गए। बातचीत का सिलसिला वहीं थम गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। फिर उन्होंने अपने साथी का परिचय करवाया और कहा, बेटा जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है, जो नहीं है उसकी चिंता कम करो और जो है उसका सदुपयोग अधिक करो। यश जाने लगा तो उनके साथी ने मुस्कुराते हुए बताया, शायद आपको पता नहीं है लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हैं वे देश के एक प्रतिष्ठित संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। इनके शिष्यों में कई प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शामिल हैं। ये सुनकर यश कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि खो दी थी उसने हार मानने की बजाय अपने जीवन को इस तरह संवारा था कि आज वो न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। यश वहां से लौट तो आया लेकिन उस सज्जन के शब्द और उनकी मुस्कान देर तक उसके मन में गूंजती रही। उसके मन में विचारों का एक नया द्वार खुल चुका था। उसे लगने लगा कि शायद समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। विचार बदल रहे थे लेकिन निराशा ने अब भी यश का साथ नहीं छोड़ा था। एक सप्ताह बाद स्टेशन की उसी बेंच पर एक सैनिक आकर यश के बगल में बैठ गया। यश के चेहरे पर छाई निराशा को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने हताश क्यों दिखाई दे रहे हो? यश ने अपनी नौकरी छूटने से लेकर भविष्य की चिंताओं तक सारी बातें उसे बता दी। सैनिक शांत भाव से उसकी बातें सुनता रहा, फिर वो बस मुस्कुरा दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। यश ने जब ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हाथ असली नहीं बल्कि कृत्रिम था। वो सैनिक लगभग उसी की उम्र का था। सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, ये हाथ मैंने सीमा

और एक युद्ध के दौरान खो दिया था। कुछ पल रुककर वो आगे बोला, उस दिन दुश्मन लगातार हमला कर रहा था, मेरे कई साथी घायल हो चुके थे। मैंने अपना एक हाथ खो दिया और असहाय होकर अपने साथियों को संघर्ष करते हुए देख रहा था। उस समय मुझे लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में उस युद्ध की यादें छलकने लगी थी। तभी मेरी नजर अपने एक साथी पर पड़ी। उसने अपनी एक आंख खो दी थी, खून बह रहा था, फिर भी उसने कपड़े से घाव बांधा और अपनी दूसरी आंख से दुश्मन पर नजर टिकाए रखा। वो लगातार जवाबी हमला कर रहा था। सैनिक ने गहरी सांस ली और कहा, उस जांबाज को देखकर मेरे मन में एक विचार आया, यदि वो एक आंख खोने के बाद भी लड़ सकता है तो मेरे पास तो अभी एक हाथ बाकी है। मैंने बिना देर किए दूसरे हाथ से बंदूक उठाई। उसे संभालना आसान नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। किसी तरह उसे सहारा देकर निशाना साधा और दुश्मन पर हमला शुरू कर दिया।

उस पल की बात याद करते हुए सैनिक के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। उस दिन हमने केवल युद्ध नहीं जीता था बल्कि अपनी परिस्थितियों के सामने हार ना मानने का संकल्प भी जीत लिया था। फिर उसने यश की ओर देखते हुए कहा, जवान, इंसान तब नहीं हारता जब वो कुछ खो देता है, वो तब हारता है जब जो बचा है उसकी कीमत भूल जाता है। मैंने एक हाथ खोया था लेकिन दूसरा हाथ अभी भी मेरे साथ था। तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी योग्यता और हिम्मत नहीं। उस रात यश बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हो चुका था कि वो अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना चुका था। सैनिक ने युद्ध में अपना एक हाथ गवाया था, अपने कई साथियों को खोया था, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष था। उन माताजी ने भी जीवन की असंख्य कठिनाइयों का सामना किया था, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी थी और उस दृष्टिहीन संगीतकार ने अपनी आँखों की रोशनी खो दी थी, फिर भी उसके जीवन में आशा और उसके सुरों में उत्साह का प्रकाश आज भी विद्यमान था। इन तीनों ने कुछ न कुछ खोया था, फिर भी वे जीवन से नाराज नहीं थे। शायद समस्या मेरी परिस्थितियों में नहीं, मेरी सोच में थी। जीवन में मुश्किलें सबके हिस्से में आती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उनसे हार मान लेते हैं जबकि कुछ लोग उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही यश ने ये सोचा, उसने ठान लिया कि उसे कुछ करना है। अगले दिन जब यश स्टेशन पर बैठा लोगों को देख रहा था, तभी उसकी नजर एक परिवार पर पड़ी। वे पहली बार उस शहर में आए थे और होटल, टैक्सी तथा शहर के प्रमुख स्थानों की जानकारी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। कोई उन्हें अलग दिशा बता रहा था तो कोई उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक पैसे मांग रहा था। ये देखकर यश को एहसास हुआ कि ऐसी समस्या केवल उस परिवार की नहीं बल्कि प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि यात्रियों को सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन एक ही स्थान पर मिल जाए तो उनकी परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। उसी समय उसे उन तीनों लोगों की बातें याद आ गईं। वृद्धा का संघर्ष, संगीतकार का आत्मविश्वास और सैनिक का साहस। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद जीवन उसे किसी नए रास्ते की ओर ले जाना चाहता है।

यश ने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा की और स्टेशन के बाहर एक छोटी सी मेज और कुर्सी लगाकर सूचना एवं सहायता केंद्र शुरू कर दिया। उसने एक साधारण सा बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा था, यात्री सहायता केंद्र, सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन। शुरुआत आसान नहीं थी। कई दिनों तक मुश्किल से कोई ग्राहक आता। कभी कभी पूरे दिन की कमाई इतनी भी नहीं होती कि उसका खर्च निकल सके। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। नौकरी नहीं मिली तो अब ये काम शुरू कर दिया, कुछ लोग ताना मारते। लेकिन इस बार यश पहले वाला यश नहीं था। उसने हार मानने के बजाय धैर्य रखना सीखा था। वो मुस्कुरा कर लोगों की सहायता करता रहता। फिर धीरे धीरे यात्रियों को उसकी ईमानदारी और विनम्र व्यवहार पर भरोसा होने लगा। जो लोग उसकी मदद से संतुष्ट होते वो दूसरों को भी उसके बारे में बताते। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा सहायता केंद्र यात्रियों के लिए भरोसे का नाम बन गया। समय बीतता गया, यश ने अपने काम का विस्तार किया। उसने होटल बुकिंग, स्थानीय परिवहन, पर्यटन मार्गदर्शन और आपातकालीन सहायता जैसी सेवाएं भी शुरू कर दी। बढ़ते काम के साथ उसने कुछ बेरोजगार युवाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। कुछ वर्षों बाद वही छोटा सा सहायता केंद्र एक सफल ट्रैवल और यात्री सेवा संस्थान में बदल चुका था। वहां कई लोगों को रोजगार मिल रहा था और प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की सहायता की जा रही थी। एक दिन यश अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देख रहा था और दूर उसे वही रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था और उसके सामने रखी वही पुरानी बेंच भी। अनायास ही उसके कदम वहां की ओर बढ़ गए और जाकर खड़ा हो गया। उसने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिया।

उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान उभर आई। वही बेंच जो कभी उसकी निराशा की साक्षी थी, अब उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। उसे एहसास हुआ, यदि उस दिन वो निराशा में डूबकर हार मान लेता तो शायद ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। उस दिन स्टेशन पर एक ट्रेन सीटी बजाती हुई आगे बढ़ गई। यश ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी भी इसी ट्रेन की तरह फिर से चल पड़ी है।

यश कुछ देर तक उसी बेंच के सामने खड़ा रहा। उसके मन में अतीत की अनगिनत यादें उमड़ पड़ी, वृद्धा की मुस्कान, संगीतकार के शब्द और सैनिक का साहस। तभी एक युवक आकर उसी बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वो बार बार अपना सिर झुकाकर गहरी सांसें ले रहा था। यश ने उसे कुछ देर तक देखा। उसे लगा मानो वह वर्षों पहले के स्वयं को ही देख रहा हो। यश धीरे धीरे उसके पास गया और बेंच पर उसके बगल में बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर यश ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? युवक ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसके भीतर दबा हुआ दर्द शब्दों में निकलने लगा। उसने अपनी असफलताओं, बेरोजगारी और भविष्य की चिंताओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर यश की आंखों के सामने अपना ही अतीत घूम गया। वो हल्का से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें तीन लोगों की कहानी सुनाता हूँ। और फिर उसने उस वृद्धा, उस दृष्टिहीन संगीतकार और उस सैनिक की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिन्होंने कभी उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। कहानी समाप्त होते होते युवक के चेहरे पर भी आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी। यश बेंच से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, याद रखना दोस्त, जीवन में अंधेरा स्थायी नहीं होता, बस चलते रहना पड़ता है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवक अब पहले की तरह निराश नहीं लग रहा था। उस पल यश को एहसास हुआ कि वर्षों पहले जिन तीन अनजान लोगों ने उसकी मदद की थी, आज वही कहानी किसी और के जीवन में आशा जगा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल उठता है।

जीवन में सभी कुछ ना कुछ खोते ही हैं, परंतु जो बचता है उसी से नया भविष्य बनाना हमारे हाथ में है। सकारात्मक सोच परिस्थितियों को नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने की हमारी शक्ति को बदल देती है, और यही शक्ति हमें सफलता तक पहुँचाती है।

गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वो पुरानी बेंच, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

श्रोता अभी सुन रहे थे मुंबई से अनुप्रसारित विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी झालावड़ का चंद्रभागा चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार एंड हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अंतिमा। स्वागत और अभिनंदन करती हूं आपका युवाणी के इस बेहतरीन और खूबसूरत कार्यक्रम में। अभी बज रहे हैं शाम के 5, शुक्रवार की शाम, और इस शाम को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ एक और रेडियो दोस्त मौजूद है।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं रफिया खान, स्वागत है आप सभी का अपने दिल अजीज कार्यक्रम युवाणी में,
2: जिसमें ज्ञान सूचना मनोरंजन के साथ ढेरों जानकारी फिर हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों, सच कहूं तो आज की जो ये शाम है ना, मुझे अच्छी नहीं लग रही है और मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हूं और परेशान हो रही हूं।
0: अरे रफिया, लाइव प्रोग्राम शुरू होते ही क्या बम बोल रही हो, क्या हुआ?
2: अंतिमा, मैं पूरी तरह से आज टूट चुकी हूँ। मैं समय पर स्टूडियो नहीं पहुंच पाई, लेकिन मेरे दिमाग में इतनी टेंशन थी, ट्रैफिक में मैं फंस गई। अच्छा। अब मैं कैसे टाइम पर पहुंचूं, कैसे अपने टाइम को मैनेज करूं, कैसे अपने समय को मैनेज करूं, कैसे प्रोग्राम के शुरुआत में मैं यहां पर पहुंचूं, कैसे अपनी तैयारी करूं, कैसे अपने टाइम को मैनेज करूं, अपने कामों को करूं, मैं क्या क्या करूं?
0: ओहो रफिया, शांत हो जाओ। तुम्हारी इस हालत को देखकर पता है हमारे लाखों श्रोता भी परेशान हो रहे होंगे, जो ऑफिस से थक कर घर लौटे होंगे अभी, और उनकी शाम भी शायद तुम्हारी तरह ही बिखरी हुई होगी अभी।
2: हाँ अंतिमा जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक साथ 10 गेंदे हवा में उछाल रही हूँ और कोई भी मेरे हाथ में नहीं आ रही है। समय कम है और काम जो है वो पहाड़ की तरह मेरे सर पे है। क्या आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा स्ट्रेस होता है दोस्तों? क्या आप भी इतनी शांति से रह पाते हैं, या कोई टेंशन आपके दिमाग में चलती रहती है, या काम सही से रैप अप नहीं हो पाते?
0: बिल्कुल होता है रफिया, मेरे साथ भी ऐसा होता है, स्ट्रेस सबको होता है, लेकिन मैं समय के इस पहाड़ के नीचे दबती नहीं हूँ, बल्कि समय प्रबंधन की कला से उस पहाड़ पर रास्ता बनाती हूँ। तुम टाइम मैनेज नहीं, क्राइसिस मैनेज कर रही हो।
2: अंतिमा जी, क्राइसिस मैनेजमेंट इसका क्या मतलब हुआ भला?
0: इसका मतलब है कि बिजली का बिल आज ही क्यों भरा जा रहा है तुम्हारा, वो तो 10 दिन पहले भी भरा जा सकता था।
2: अंतिमा जी, बात तो आपके बिल्कुल सही है और सच भी है। मैं काम आखिरी मिनट के लिए टाल देती हूँ, और जब शाम होती है तो सारे काम एक साथ मेरे सामने आ जाते हैं कि हाँ भाई, ये भी, तो क्या संभालूं मैं।
0: सही है बिल्कुल। जो भी सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, याद रखिए, वक्त को मैनेज करना, घड़ी को देखना नहीं है, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को संभालना है। दोस्तों, आज रफिया के इस बिखरे हुए शेड्यूल से हम सब सबक ले सकते हैं।
2: अंतिमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बताया कि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, शायद आज रेडियो सुन रहे हमारे जो श्रोता हैं उनके साथ भी ऐसा होता होगा। इंसान को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है जब वो अपने काम को सही वक्त पे नहीं करता। अब सोचिए कि जो माएँ हैं और जो स्कूल भी जाती हैं या कोई और वर्क करती हैं, किसी जॉब में है, वो अपने बच्चे भी संभालती हैं, अपना घर भी संभालती हैं, अपनी गृहस्थी को भी मैनेज करती हैं, तो वो किस तरह से काम को करती होंगी? तो इसी तरह से हमें उन मदर्स से सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह ये अपना टाइम मैनेजमेंट करती हैं, अगर उन्हें सुबह जल्दी जाना है, अपने पति को भी ऑफिस में भेजना है, अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, सारे काम को उन्हें मैनेज करना है, लेकिन उस काम को वो पूरा माइंडफुली टैकल करती हैं और सही से चलती हैं। तो दोस्तों, हमें भी ऐसा ही करना है, टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से करना है, और इसी के साथ अपने सभी कामों को स्मूथली करते हुए स्ट्रेस फ्री रहना है।
3: हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
5: So girls, क्या हो रहा है?
6: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
7: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंक

0: बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने के।
1: रफिया, आज शुक्रवार है, यानी वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है आज से।
2: वैसे तो फ्राइडे को सबका मूड जो होता है वो वीकेंड का होता है, लेकिन आज ये जो फ्राइडे है हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर लेके आया है।
1: अच्छा,
2: क्योंकि ये जो तारीख है 11 जुलाई यानी विश्व जनसंख्या दिवस।
1: बिल्कुल सही कहा रफिया, कल शनिवार होने की वजह से हम ये बात आज ही कर रहे हैं, क्योंकि इस गंभीर मुद्दे पर बात करने में हम एक दिन की भी देरी नहीं कर सकते हैं। जनसंख्या ये शब्द सुनते ही मुझे वो लोकल ट्रेन याद आ जाती है जिसमें पैर रखने की भी जगह नहीं होती है।
2: अंतिमा जी, ये बात सिर्फ लोकल ट्रेन या खचाखच भरी हुई बसों तक सीमित नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है और डराने वाली है। कल जो दिन आने वाले हैं वो सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है।
1: चेतावनी? हाँ रविया, तुम सही कह रहे हो, जब धरती एक है, संसाधन सीमित है, तो उस पर पेड़ टिकाने वाले पेड़ लगातार बढ़ते कैसे जा रहे हैं।
2: अंतिमा जी, कभी सोचा है जब एक घर में मेहमान बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो क्या होता है?
1: राशन कम पड़ जाता है, पानी की किल्लत हो जाती है और कमरे छोटे लगने लगते हैं, और साथ ही सुकून तो जैसे कहीं खो ही जाता है।
2: और आज हमारी धरती का हाल भी कुछ ऐसा ही है, हम इंसान बढ़ते जा रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और नदियां जो है ना वो सूखती जा रही है, प्राकृतिक संसाधन खत्म होते जा रहे हैं, और हवा जो साफ थी वो आज साफ नहीं रही है। और साफ हवा, शुद्ध पानी और दो वक्त की रोटी के लिए आज जो हमारी जो बुनियादी जरूरत है उसके लिए हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है।
1: संघर्ष, बिल्कुल सही शब्द। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, हम किस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, यह संघर्ष है उस भूखे बच्चे का जिसे आज रात भी बिना खाए सोना पड़ेगा, यह संघर्ष है उस युवा का जो डिग्री हाथ में लिए रोजगार की कतार में सबसे पीछे खड़ा है।
2: सचमुच अंतिमा जी, जब जो आबादी है वो बेलगाम हो जाती है तो सबसे बड़ा प्रहार जो होता है ना वो हमारी तरक्की पर आता है, अधिकारों पर आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जितनी भी चीजें हैं। अगर कम लोगों के लिए हम कोई फैसला करते हैं, कोई उनके लिए अच्छी व्यवस्था करते हैं तो वो अच्छे से चलती है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए करना ये बहुत बड़ी जद्दोजहद है। और इस आबादी को हम कैसे कम कर सकते हैं, क्या करें कि ये जद्दोजहद जो है वो थोड़ी कम हो जाए।
1: दोस्तों, कल पूरा विश्व जनसंख्या दिवस मनाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी शुरुआत आप आज से ही करें, जिम्मेदारी हमारी है।
2: छोटा परिवार सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक खुशहाल भविष्य की गारंटी भी है।
1: बिल्कुल, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी को एक साथ सांस लेने लायक दुनिया मिले तो हमें आज अपनी सोच बदलनी होगी।
2: जनसंख्या नियंत्रण का मतलब किसी भी के भी अधिकारों को छीनना नहीं है, बल्कि हर पैदा होने वाले बच्चे और उसके हक को जिंदा रखना है।
1: तो चलिए इस वीकेंड पर खुद से और अपने समाज से एक वादा करें, सोच समझ कर कदम बढ़ाएं, आबादी नहीं खुशहाली लाएंगे।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज विशेष मेहमान है आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। आशीष जी, सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं, सस्टेनेबिलिटी माइंडफुल कंजम्पशन अवेक।
1: कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज विशेष मेहमान है आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। आशीष जी, सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं, सस्टेनेबिलिटी माइंडफुल कंजम्पशन अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग। ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सकें, जो हमारे श्रोता सभी समझ कि क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसके पीछे की मूल सोच क्या है।
3: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूँ कि ये पूरा मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में तीन तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहां वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी और हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी, हमारे एक्शंस इंप्रूव होंगे तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे। जिसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहां पॉसिबल हो वहां एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR, कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और जिस भी पैरामीटर पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहां उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज को रेगुलेट करें। और ये एफर्टलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है। और सरल जीवन जहां आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
2: आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही अधूरी है आपके पूरे जो मुहिम की। उसको और गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाए कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
3: तो माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें तो जो नीड वर्सेस वांट जो बोलते हैं
2: जी,
3: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी है, लेकिन कई बार हमारी चाहतें होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी जरूरत नहीं हो। और उस जर्नी

0: में फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं, तो उस चीज को ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अनरियलिस्टिक जो हमारे एम्बिशन है उसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा बेहतर और मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफ स्टाइल की तरफ युवाओं का, हमारे जो भी ऑडियंस है उनका ध्यान लाया जाए।
1: तो आपने जो नीड्स और वॉन्ट्स की बात करी कि एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश,
0: बिल्कुल,
1: ये नीड और वॉन्ट का जो अंतर है क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
0: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये हमारी जरूरत है, कब वो जरूरत वॉन्ट हो रही है उतना हमें अंदर से आवाज आ जाती है, लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में, कि वॉन्ट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूं, मुझे वहां 5x तक पहुंचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहां पर है, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूं कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूं कि मुझे 5x तक पहुंचना है क्योंकि मेरे चाचा का बेटा या एक्स वाई जेड इन माई फैमिली इज एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीजें होती है, पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं एक्स से 3x तक पहुंचा, तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी कि 3 गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, तुम उतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं, उस भड़ास को दबाने के लिए, किसी का वो भड़ास फ्रस्ट्रेशन वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं एक्स से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो बोलता है अब तुम 6 फिगर सैलरी कमा रहे हो तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वेकेशन होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूं बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर
1: जी,
0: और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइस की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से
1: जी। तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जब आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है, आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है, जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं?
0: तो कोई भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ, उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होते हैं दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग, तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर चीज का इमिशन हो रहा है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन हर चीज का इमिशन हो रहा है तो वहां अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चूंकि सैकड़ों चीजें अपने दिन में कंज्यूम करते हैं, तो जहां जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम में से सब लोग भारत में है तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह 1 कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए, तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं, तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम इंटू 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे हजारों चीज हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग कंफर्टेबल है वहां अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
1: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हरेक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था, जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहां पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं।
0: इसको शेयर करने के लिए फाइव आर का यूज करें, रिड्यूस रियूज रिसाइकल, तो फाइव आर में सबसे पहले वो रिड्यूस आता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी देह है कि अपने लाइफस्टाइल को एनवायरनमेंट से कैसे

0: अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता है ऑन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है हमें इमीडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में चीज नहीं आई है। वैसे ही एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो मीट बेस्ड चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आती है, तो उसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें। तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक 4 प्लास्टिक यूज हो जाता है, तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे तो साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती हैं। और वही वो प्लास्टिक भी जैसा हम लोग बोलते हैं ना, सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से। आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है, तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रूमाल वगैरह से, जो हमारे घर में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है, लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है। तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने, फिर वापस लेने आऊंगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा। लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज का। अगर एनवायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए, तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा उसको रिसाइकलिंग के लिए दें।
1: आशीष जी, युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न है उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं, और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा। तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं, जो युवा है उनको इस दिशा में ले जाने की ओर?
0: थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट, जहां पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, जिसको अब अपर मिडिल क्लास बोलते हैं, उसके ऊपर जो इलीट क्लास एफ्लुएंट क्लास होता है, तो आज के डेट में जितनी भी मॉडर्न एज बीमारियां हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है, कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इम्प्रूव होगी, और आपकी अगर वेलबींग इम्प्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने भी बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एन एविल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और सादगी को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
1: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरनमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जांपल्स देके?
0: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत मोटिवेटेड है, बहुत ब्लेस्ड भी है, और हमने देखा है कि दे वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई चीज पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, ये तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने कीप इट, तो उनका इमोशंस एक्शन की जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें, तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जींस बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज किए, यूज किए, धोए, यूज किए, धोए और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जींस के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं?
1: सो आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333

0: है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, ना सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
1: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए तो ये एक इनिशिएटिव आया, प्रोजेक्ट 333, जहां पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
0: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते हैं।
1: जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रेवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिबरेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज, अगर अगेन 33 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पुटिंग सम फिगर इज इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जो इम्पोर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीजें या 55 चीजें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है, तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस कर सके। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो 2 तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रोसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी
0: जी।
1: और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज्ड फूड, उसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो 1 टाइम प्लास्टिक, 1 टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है उसको रिसाइकिल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें, तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
0: तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एवरेज एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
1: तो इसमें 2-3 प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं या शॉपिंग करने का या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं। तो क्या हमें इसकी जरूरत है इमिडिएटली, अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है, उससे आपको इमिडिएटली पता चल जाएगा कि ये रियल में नीड है या वांट है। तो एक बार नीड वर्सेस वांट की चीज हो गई, तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इम्पल्स है तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वांट है, और फिर नीड है कि वांट है फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूं या खरीदती हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा, तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, तो 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशन इनडायरेक्टली बचे।
0: जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था, वही वांट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कम्पीट करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वांट के, जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं, तो उससे हमें बचना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता है ना, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है, और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है, वो कभी खत्म नहीं होगा, और उससे स्ट्रेस ही होना है। जो पहले मैंने एक बार शेयर किया X से 3X और 5X की बात, वो वही चीज है। तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी ये जर्नी अपनी अपनी है, और हमारे कैनवस पे जिस चीज की जहाँ जरूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम लोग,
0: हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे। और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है?
1: 100% मैम। तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड, लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहाँ के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको बनाकर वेस्ट की जो अच्छी चीजें हैं उसको इनग्रेन करनी है। तो

0: बोलते हैं ना मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की जरूरत है।
1: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है, जैसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं सबके बीच। सो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलत फहमियां क्या हैं मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं इस राह की ओर बढ़ने की तरफ।
0: तो जब भी हम लोग माइंडफुल और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आमतौर पर धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोला जाएगा
1: जी।
0: बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता है ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफस्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते हैं, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे वन पे छोटे छोटे एक्शन लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो उस चीज को बताना कई बार होता है कि डे वन पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए, और किसी भी चीज में वो हेल्पफुल नहीं है। क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है, एक छोटे सी चीज से शुरुआत करते हैं और वो चीज भी आपको डिसाइड करनी है। तो देयर इज नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो। ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड करे
1: जी
0: कि वो सैकड़ों चीजें कंज्यूम कर रहा है उसमें कहां वो किस चीज को रेगुलेट कर सकता है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस। क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
1: हमारे जो श्रोता हैं जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ त्वरित ना हो, लंबे समय तक उसका पर्यावरण को फायदा हो, तो कोई ऐसी कॉमन चीजें बता सकते हैं जो हरेक के लिए लागू है, कोई सरल 2-3 ऐसे उपाय, ऐसी बदलाव अपनी जिंदगी में जो वो ला सकते हैं
0: जहां जहां अगेन पॉसिबल हो। तो अगर हम लोग कार यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर एक बार कार पूल कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। महीने में मैं एक बार ट्रेवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रेवल। तो 12 एयर ट्रेवल करने से कम करके अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रेवल का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है।
1: यस।
0: वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है, चाहे वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही है, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की तो उसका बहुत बड़ा इमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं हमारे मेल्स में, हम लोग बहुत सारे लोग को मैंने देखा है इन अनरीड मेल्स, 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलती है वहां अनरीड दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम इमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे इमिशंस बच सकते हैं। तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशंस हो रहे हैं तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रेवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
1: कुछ और एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
0: तो जैसे IIT बॉम्बे के एक सर है, सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं। तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का एमिशंस बहुत है, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में एमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ,
1: हाँ,
0: तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जांपल के लिए तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो इमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो वो करने की जरूरत है, और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को एक कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है वो।
1: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है कि हम योगदान दें, जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के

0: बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं, जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं?
1: सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030 तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है। क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो एनवायरनमेंट से अलाइंड होने चाहिए। ई एनवायरनमेंट, एस सोशल एंड जी इज गवर्नेंस, तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए। तो उसपे बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनीज पे फोकस कर रही है कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके। सेम चीज अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होता है ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, ए प्लस है, बी है, तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं।
0: आशीष जी, जो भी युवा चाहें कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ें एनवायरनमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डी क्लटरिंग जैसा आप कह रहे हैं कि जब डी क्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाएं, माइंडसेट अपनाएं, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाएं ताकि वो बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में?
1: तो इम्पोर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते। या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है, इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। किस मायने में कर सकते हैं, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे, मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी एक्स वाई जेड का अलग हो सकता है, अपने अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इम्प्रूव करने की जरूरत है उस चीज को इम्प्रूव करें। जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा। किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा। किसी को लगता है कि उसको बहुत इंपल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की, तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है और उसका जज वो खुद ही होगा। तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की जरूरत है, जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना जरूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बींग द चेंज वाला कंपोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो हम लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इम्पोर्टेंट जरूरत है।
0: सो आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
1: तो मैम, मैंने इर्मा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था एस्टैब्लिश की, जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है। तो इट इज अ कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स। तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए। लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ हैं, हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो हैं, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे। वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2 वीक 4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं। तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में, फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे। और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया। तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहां 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, IAS, IPS, MLA, सोशल चेंज मेकर, सब से ये समझने की कोशिश की कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा। तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज। तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंज्यूम,

रिडेम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार बन के निकला कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा। और इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया और उस पर फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी। तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए। तो यहां से शुरुआत की और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख

0: तक पहुंचा सके।
1: आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हम सब उसमें अपना अपना योगदान करें ये कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: आप सुन रहे थे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से अनुप्रसारित पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ का नवा एपिसोड।
4: तो दोस्तों अब आप आ चुके हैं फिर से युवाणी कार्यक्रम में। अब आपको लिए चलते हैं चिराग चल रहे हैं युवा डायरी सेगमेंट की तरफ, जहां आपको महिला स्वास्थ्य एवं जागरूकता के लिए हम एक भेंटवार्ता सुनाएंगे। डॉक्टर मधुरिमा वर्मा वरिष्ठ आचार्य स्त्री एवं प्रसूता रोग विशेषज्ञ झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से अंतिमा जी की बातचीत, तो लीजिए सुनिए।
5: कहते हैं एक स्वस्थ महिला केवल एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की मजबूत नींव होती है, इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हम सभी की जिम्मेदारी है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत वरिष्ठ आचार्य स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मधुरिमा वर्मा और मैं हूँ आपकी दोस्त अंतिमा कुमारी। डॉक्टर मधुरिमा वर्मा, आपका आकाशवाणी झालावाड़ के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद
5: मैडम। आज हम महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, किशोरियों की देखभाल और समय पर स्वास्थ्य जांच जैसे कई महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से बात करेंगे आपसे, ताकि हमारे श्रोताओं तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंच सके।
6: जी
5: तो हम बातचीत शुरू करते हैं मैम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज के समय में महिलाओं की सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है?
6: बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है ये, क्योंकि महिलाएं हर एज में किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से गुजरती है। जैसे जब से ही लड़कियों में पीरियड्स शुरू होते हैं तब से लेके जब तक पीरियड्स बंद होते हैं और उसके बाद भी उनको बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे जो किशोरियां होती है उनमें मोस्टली मासिक धर्म संबंधित समस्याएं होती है और भी बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं होती है उनमें भी मेंसेस से संबंधित समस्याएं होती है, जैसे बच्चेदानी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती है, इन्फेक्शन से संबंधित समस्याएं होती है। अगर ये रेगुलर अपना चेकअप करवाती है तो हम बहुत सारी समस्याओं को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं और आगे की कॉम्प्लिकेशंस को भी हम रोक सकते हैं।
5: मैम अक्सर महिलाएं अपनी तकलीफ को लंबे समय तक अगर नजरअंदाज करती रहती हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं?
6: बिल्कुल, अगर महिलाएं अपनी समस्याओं को बहुत लंबे टाइम तक नजरअंदाज करती रहती है तो आने वाले टाइम में उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जैसे कि अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं हैं जो 15 से 45 साल तक की महिलाएं हैं, अगर वो इसी तरह से तो उनको जो महामारी से संबंधित परेशानियां होती तो उसके लिए अगर महिला ज्यादा आता है या फिर महीने के टाइम दर्द होता है तो इसका पूरा कारण जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इनमें जैसे खून की कमी का, जिसको एनीमिया भी कहते हैं, खून की कमी हो सकती है या फिर जैसे बच्चेदानी में कभी सूजन हो सकती है या फिर गांठ हो सकती है, अगर हम टाइम से अगर इसको नहीं दिखाते हैं या ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये आगे चल के उसके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस का विषय हो सकती है।
5: और आगे मैं जानना चाहूंगी कि क्या हर महिला को किसी समस्या का इंतजार किए बिना रेगुलर गायनिक चेकअप करवाना चाहिए, इसकी क्या सही उम्र होती है?
6: महिलाओं को जैसे 21 साल से ही बल्कि उससे भी पहले जब से पीरियड शुरू होते हैं तब से लेके जब तक पीरियड्स चलते हैं और उसके बाद भी महिलाओं को हमेशा रेगुलर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाते रहना चाहिए। इनसे हम बहुत सारी बीमारियों जैसे कि हमारे इंडिया में कैंसर, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन है, तो अगर रेगुलर चेकअप करवाती है तो इन भयानक समस्याओं से हम बच सकते हैं।
5: जी, ये जो चेकअप करवाने का जो अंतराल होता है ये क्या होता है मैडम, कब कब करवाना चाहिए हमें चेकअप?
6: जैसे कि जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर होता है उसके लिए 21 साल से हम शुरू करते हैं परीक्षण करना और ये हर 5 साल में उनको करवाना होता है, कि जो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आसानी से हो जाता है, जिसको कि हम पैप्समियर कहते हैं। और इसके साथ एक और खून की जाँच होती है जो कि HPV इन्फेक्शन के लिए जाँच होती है, तो वो भी हम करवा सकते हैं। अगर हम दोनों करवाते हैं तो ये और भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों करवाते हैं तो 5 साल में हमें हर 5 साल में रिपीट करनी होती है ये। और जो HPV संक्रमण के लिए जो टेस्ट होता है वो 30 साल के बाद से शुरू होता है। तो पैप स्मियर हम हर 3 साल में करवा

0: आते हैं 21 साल से लेकर 30 साल तक, उसके बाद हम HPV DNA टेस्टिंग भी करवा सकते हैं और पैप स्मियर भी करवा सकते हैं, ये हम 60 साल तक करवाते हैं।
1: मैम, जो भी किशोरी बालिकाएं होती है तो इनको जो महावारी की समस्या होती है उसमें सबसे जरूरी स्वास्थ्य सलाह क्या होगी?
0: महावारी से संबंधित ये है कि अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं है या फिर पीरियड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं या फिर पीरियड्स के टाइम इनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो इसका रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है, कि इसका कारण पता लगाना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो कभी कभी बच्चेदानी में बहुत बड़ी गांठ भी हो सकती है या फिर कैंसर भी हो सकता है, तो अगर टाइम से परीक्षण करवाते हैं तो इसका बहुत ही इजीली और समय से पहले इसका समाधान हो सकता है।
1: जी, आजकल कम उम्र की लड़कियों में PCOS के मामले काफी बढ़ रहे हैं, तो इसमें इसके प्रमुख जो कारण है और इसमें जो शुरुआती संकेत जो देखने को मिलते हैं वो क्या हो सकते हैं मैम?
0: हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही आजकल बहुत ही कॉमन है, हमारी नई जो गर्ल्स हैं उनमें PCOD की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, और पहले तो ये शहरी लड़कियों में ही देखी जाती थी लेकिन अब तो ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां हैं उनमें भी बहुत तेज़ी से ये देखी जा रही है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि आजकल जो हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी जीवन शैली है, वो इतना चेंज हो चुकी है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हमने पैदल चलना बंद कर दिया, खेल कूद भी बहुत हमारा लिमिटेड हो गया है, और बच्चे जो आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, और खाने पीने में भी जैसे उनका जंक फूड वगैरह है, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा वगैरह नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा कारण है कि हमारी जो लड़कियां हैं उनमें बहुत ही अर्ली एज में PCOD की समस्या देखने को मिल रही है।
1: बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया मोबाइल का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो जैसे मोबाइल का उपयोग बढ़ रहा है इससे देर रात तक वो लोग जागते हैं, स्ट्रेस भी होता है और एक अनियमित जीवन शैली उन लोगों की बन चुकी है, तो इसमें महिलाओं के हार्मोनल स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है सब चीज़ें?
0: बिल्कुल, क्योंकि ये जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारा जो हम वॉक करते हैं उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है, तो अगर हम रेगुलर हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो हमारे जो बॉडी में जो हॉर्मोन्स है वो इम्बेलेंस रहेंगे और उसी से हॉर्मोन से हमारे जो पीरियड्स हैं वो सब उसी से कंट्रोल होते हैं।
1: मैम, मेरा अगला सवाल है आपसे कि जैसे कि आफ्टर मैरिज, शादी के बाद अगर कोई फीमेल कंसीव करना चाहे तो अगर वो गर्भधारण की योजना बना रही हो तो महिला को किन स्वास्थ्य जांचों पर ध्यान देना चाहिए?
0: महिलाओं में वैसे तो एक साल तक अगर वो साथ में रहती हैं और उसके बाद भी अगर वो कंसीव नहीं करती है तो उनको डॉक्टर को चेकअप करवाना बहुत जरूरी है, ताकि समय से पता चल सके कि वो कंसीव करने में या गर्भधारण करने में उसको क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स उनका रेगुलर चेकअप करते हैं और कुछ टेस्ट वगैरह एडवाइस करते हैं, अगर वो नॉर्मल रहता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं।
1: प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे हर महिला को बचना चाहिए?
0: प्रेगनेंसी के दौरान एक तो रेगुलर चेकअप करवाना बहुत जरूरी है, ताकि टाइम से जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या फिर और भी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अगर होने वाली है तो उसे टाइम से पता कर सके, और उसको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रेगुलर चेकअप से जैसे पेशेंट अगर रेगुलर चेकअप करवाता है तो जैसे खून की कमी वगैरह होती है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट का BP भी बढ़ जाता है, तो ये दो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, इसको अपन टाइम से पहले ठीक कर सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
1: प्रेगनेंसी के दौरान मैम अगर खून की कमी आती है इसका क्या समाधान है मैम? महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेगी आप?
0: खून की कमी का ये है कि पेशेंट को अपनी एक तो संतुलित डाइट रखना है, उनकी डाइट में आयरन रिच फूड होना चाहिए जिसमें कि आयरन बहुत ज्यादा है, प्रोटीन होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, विटामिंस या फिर जो खनिज होते हैं वो होना चाहिए। आयरन रिच फूड की अगर हम बात करें तो जो हमारे पालक है, मेथी है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें काफी आयरन होता है, और जैसे गुड़, चना, बाजरा, इनमें भी काफी आयरन होता है। पेशेंट अगर नॉनवेज भी अगर लेना चाहे तो उसमें भी काफी आयरन होता है, जैसे कि मटन है और चिकन वगैरह होता है उसमें भी काफी आयरन होता है।
1: मैम, समाज में जैसे कि ये नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन को लेकर समाज में कई भ्रांतियां हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
0: समाज में एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी और अगर सिजेरियन होगा, मतलब किस तरह से होगा आगे चल के, तो इसका पूरा ही डिसीजन डिलीवरी के उसके जो प्रेगनेंसी की प्रोसेस होती है उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है और डिलीवरी के टाइम बच्चे की पोजीशन क्या है, उसके फिटल आर्ट क्या है, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो रेगुलर अगर चेकअप करवाती है पेशेंट तो उसका समय से समाधान हो सकता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में जैसे आंवल नाल का नीचे होना या फिर कभी कभी BP बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन जरूरी होता है।
1: मैम, आजकल महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए कौन कौन सी स्क्रीनिंग और जांच जरूरी है?
0: हमारे इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, वो ब्रेस्ट कैंसर है, और ब्रेस्ट कैंसर को हम बहुत ही आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं अगर कोई भी महिला ये सेल्फ परीक्षण भी कर सकती है।

0: है। अगर वो रेगुलर सेल्फ परीक्षण करती है जो हम उसको सिखा भी सकते हैं, तो उससे वो टाइम से पहले ही जो छोटा सा भी ट्यूमर है तो वो टाइम से डायग्नोस हो सकता है और टाइम से उसका समाधान हो सकता है।
1: मैम, अगर कोई महिला है उसको बार बार सफेद पानी की शिकायत हो रही है या फिर उसके पीरियड्स इरेगुलर हैं और अगर उसके पेट के निचले हिस्से में अगर उसको बार बार दर्द महसूस होता है तो उसे कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?
0: अगर किसी भी महिला में इस तरह की समस्या है कि भाई डिस्चार्ज हो रहा है या फिर पेड़ों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब कि उसको इन्फेक्शन है। तो अगर वो इस तरह की समस्या से जैसे ही अगर उसको लगता है कि वाइट डिस्चार्ज भी है, इचिंग है या फिर यूरिन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेड़ों में दर्द हो रहा है, तो उसको तुरंत ही नियरेस्ट जो भी डॉक्टर है उनसे सलाह लेनी चाहिए। अदरवाइज ये चल के आगे चल के बच्चेदानी में सूजन का भी एक कारण बन सकती है।
1: मैम, महिलाओं में गेस्टेशनल एज के बाद मेनोपॉज आ जाता है, तो इसके दौरान महिलाओं में कई फिजिकल और मेंटल चेंजेस आते हैं, तो इसके लिए महिला को किस तरीके से तैयार रहना चाहिए?
0: मेनोपॉज के बाद हर महिला के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, कुछ शारीरिक बदलाव भी होते हैं और कुछ मानसिक बदलाव भी होते हैं। तो उसको एक तो रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और एक संतुलित जो आहार होता है उससे हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर फिर भी अगर नहीं हो तो फिर उनको जरूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
1: मैम, एक चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता है महिलाओं में, बहुत सारी महिलाओं में पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन होता है इसकी महिलाएं शिकार हो जाती है, तो इससे किस तरीके से बचाव किया जा सकता है?
0: बहुत बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद जो पेशेंट होती है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती है, तो इसके लिए हमें उसको परिवार के जो भी सदस्य हैं, उसके हस्बैंड हैं, उनकी सास है जो भी, तो उनको उसको भावनात्मक सपोर्ट देना बहुत जरूरी है और उसको पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है, उसके एक संतुलित आहार उसके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर वो ये सब करती है और उसके बाद भी अगर उसको प्रॉब्लम रहती है तो फिर किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को उसको दिखाना चाहिए।
1: मैम, आज आप आकाशवाणी झालावाड़ के माध्यम से सभी बेटियों और महिलाओं और परिवार के लिए आपका क्या संदेश देना चाहेंगी आप?
0: मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाएं हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और उनका स्वास्थ्य हमारे पूरे राष्ट्र के स्वास्थ्य से संबंधित है, तो अगर हमारी महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। तो महिलाएं जो अपने स्वास्थ्य के लेकर हमेशा अलर्ट रहें और कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो वो उसको तुरंत उसका समाधान करें, अच्छी अपनी डाइट रखें, अच्छी नींद लें और योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज वगैरह करें।
1: डॉक्टर मधुरिमा वर्मा जी, आपने महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, स्वस्थ जीवन की शुरुआत जागरूकता से होती है। नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं, संतुलित आहार लें और किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज ना करें। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: तो साथियों, इसी के साथ आज का युवाणी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
3: तो दोस्तों, ये जो घड़ी की सुइयां हैं इन्होंने हमें समाप्ति का इशारा तो कर दिया है, लेकिन आपको क्या करना है इस गर्मी के मौसम में? अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, अपना खूब सारा ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, और जो भी बातें हमने आपको बताई हैं उन्हें याद रखते हुए जागरूकता ज़रूर फैलानी है। और इसी के साथ कार्यक्रम समाप्ति की हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

युवा साथी अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युवावाणी। ये प्रसारण आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से किया जा रहा है। आइए अब आपको शेष रहे कार्यक्रमों से अवगत करा दें।

6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, साथ ही होगी जिले की चिट्ठी। इन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7 बजे हमारे किसान साथियों के लिए कार्यक्रम होगा कृषक चौपाल। इसमें मृदा एवं जल संरक्षण पर चर्चा होगी। दानमल जी मालव वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक से ली गई भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी। नींबू वर्गीय फलदार पेड़ पौधों की देखभाल जानकारी दी जाएगी। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर और किसान साथी सुनेंगे मौसम, बाजार भाव, समर्थन मूल्य और कल के कार्यक्रम की झलक।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हम मुंबई से रिले करेंगे 7:30 पर और 8:15 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे एक बार फिर फिल्म संगीत।

गैर फिल्मी गीत, गजल और भजन का कार्यक्रम सबरस होगा प्रतिदिन की तरह रात 9 बजे। ये थी शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

0: ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। 6 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं

0: के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली का कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के बलोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की गति बनाए रखने का आह्वान किया था। इसके बाद बलोद जिला जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही
1: This is
2: FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी झालावड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं यादगार फिल्म के गीत से। आवाज लता मंगेशकर की है। इंदिवर के लिखे इस गीत

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आपने सुना, फिल्म थी मन मंदिर।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी

0: डेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी आकाशवाणी।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में अब सुनते हैं कैफी आजमी का लिखा गीत, संगीत मदन मोहन का है और फिल्म है हीर रांझा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

पार्श्व गायिका लता मंगेशकर से अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म है महबूब की मेहंदी। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी झलवड़ का चंद्रभागा चैनल है। 6:30 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, साथ ही होगी जिले की चिट्ठी। इन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: डीडी उर्दू चैनल।
2: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
3: प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7:30 पर सुनिए खेती बाड़ी, प्रायोजक इफको राजस्थान।
4: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: खैर समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर, दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध से कोटा बूंदी क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 जुलाई को विशेष आयोजन, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन शिरकत करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कल, विशेष जन जागरूकता सप्ताह शुरू होगा। और प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी हुई, करीब एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों के कमजोर रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की विदेश यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड दौरे पर हैं। ऑकलैंड पहुंचने पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी की अगुवानी की। प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस दौरे से भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत होगा। इससे पहले श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान खेल सहयोग के रोड मैप पर भी चर्चा की। दोनों देशों के बीच कबड्डी, खो खो जैसे पारंपरिक खेलों और अन्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन मैचों और आयोजनों की मेजबानी के अवसरों का पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस रोड मैप से साझा प्राथमिकताओं, संसाधनों और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान होगी, जिसका दोनों देशों को फायदा होगा।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच, और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
0: केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इसके तहत उच्च अल्कोहल मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने की कवायद की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल वाली दवाओं के लिए मौजूदा छूट खत्म कर दी है। मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट नहीं मिलेगी। इन्हें अब औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के तहत आवश्यक लाइसेंस लेना होगा। मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध से राजस्थान में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा। इससे कोटा बूंदी क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि बूंदी और केशोराय पाटन क्षेत्र के किसानों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर नहरों में पानी की कमी और फसलों को नुकसान की आशंका पर चिंता जताई थी। श्री बिरला ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों से बातचीत कर समाधान निकाला। बांध से कुल 6000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर सहमति बनी है। मीडिया से बातचीत में श्री बिरला ने बताया कि इससे करीब 2.25 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के किसानों को फायदा पहुंचेगा।
2: पानी गांधी सागर से राणा प्रताप सागर में आना, और राणा प्रताप सागर में पानी कम होने के कारण नहरों को छोड़ा जाना संभव नहीं था। गांधी सागर से पानी छोड़ने के बाद जब राणा सागर पानी आएगा तब नहरों में पानी आएगा। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया, वहाँ के मंत्री से कहा कि वह गांधी सागर में पानी राणा प्रताप को दे ताकि हमारे इलाके के किसानों के खेत तक पानी पहुँच सके। वहाँ की सरकार ने सिद्धांत सहमति दे दी है और आज कोटा के LMC RMC में पानी शुरू हो जाएगा।
0: यमुना जल हस्तांतरण परियोजना की DPR की पहली समीक्षा बैठक आज जयपुर में हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अगुवाई में हुई इस बैठक में विभिन्न तकनीकी और वित्तीय पहलुओं पर चर्चा की गई। और ब्यौरा दे रहे हैं न्यूज डेस्क से हमारे सहयोगी रामनाथ मीना।
3: परियोजना के तहत अत्नीकुंड बैराज से राजस्थान के हिस्से के यमुना के पानी को भूमिगत पाइपलाइन के जरिए चूरू के आशियावास पहुंचाने की समीक्षा की गई। इसके लिए पाइपलाइन प्रणाली 386 MCX क्षमता के विशाल जलाशय और अन्य बिंदुओं पर मंथन हुआ। साथ ही रेणुकाजी, लखवार और किसाऊ बांधों की प्रगति, राजस्थान के हिस्से का पानी और लागत भागीदारी पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में यह भी बताया गया कि 34,102 करोड़ रुपए की संयुक्त

0: डीपीआर केंद्रीय जल आयोग के पास विचाराधीन है।
1: मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग की प्रमुख योजनाओं की भी समीक्षा बैठक की। इसमें पीएम सूर्यघर योजना, पीएम कुसुम और यूएलए मॉडल की प्रगति पर जोर दिया गया। यूएलए मॉडल के जरिए 3 लाख घरों में 330 मेगावाट रूफ टॉप सोलर क्षमता स्थापित की जाएगी। बैठक में ये भी बताया गया कि राज्य के 172 ग्रिड सब स्टेशनों पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS स्थापित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 15 जुलाई को विधानसभा में होने वाले इस अमृत महोत्सव में उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन भी शिरकत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा की ओर से होने वाले इस आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी संबोधन होगा। उन्होंने बताया कि इस मौके पर विधायी गौरव यात्रा रखी गई है जिसमें वर्तमान और पूर्व विधायकों का समागम होगा।
2: ये हमारे विधायकों का समागम, पूर्व वर्तमान का ये समागम का कार्यक्रम है। वह 15 जुलाई को प्रारंभ होगा और इसमें दो बातें जो विशेष हैं, एक तो हम अतीत का संस्मरण भी करेंगे और भविष्य के विधायी मार्ग का भी उसमें चर्चा होगी। इस दृष्टि से 4 बड़े कार्यक्रम इस वर्ष भर में विचार किए, उसमें से पहला कार्यक्रम हम आगामी 15 जुलाई को इसी विधानसभा परिसर में हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद विशेषता ये कि 2 सत्र और हैं जिससे 75 साल के अंदर जो हमने कानून इस विधानसभाओं ने पारित किए हैं उसमें से जो प्रमुख रहे हैं उसके बारे में जानकारी और चर्चा उन सत्रों में हो।
1: इस सम्मेलन में विधायी परंपराओं, सदन की गरिमा, संसदीय अनुभवों, चुनौतियों और विधानसभा के डिजिटल रूपांतरण सहित कई विषयों पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने बताया कि सत्र के लिए तय कामकाज की समीक्षा की गई और इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। विश्व जनसंख्या दिवस कल मनाया जाएगा। इस दिन का उद्देश्य परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य और लैंगिक समानता तथा जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से इस मौके पर विशेष जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रदेश भर में कल से 18 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें छोटा परिवार, खुशहाल परिवार और बच्चों में सही अंतराल रखने के साधनों की जानकारी दी जाएगी। शिक्षण संस्थानों, एनसीसी और युवा क्लबों के सहयोग से जागरूकता रैलियां भी निकाली जाएंगी। साथ ही आशा सहयोगिनियों और स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से घर घर संपर्क और परामर्श सेवाएं दी जाएंगी। इस बीच जनसंख्या स्थायित्व में बांसवाड़ा जिले ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भरत राम मीणा ने बताया कि लगातार 3री बार जिले को ये उपलब्धि हासिल हुई है। उद्योग और वाणिज्य विभाग ने 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल शुरू की है। इसके तहत उद्योग, व्यापार, निर्यात, स्टार्टअप्स, पर्यटन और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले 100 व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। उद्योग आयुक्त नीलाब सक्सेना ने बताया कि इसके लिए 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि चुनी गई प्रतिभाओं को 100 आइकन्स कंपेंडियम में स्थान दिया जाएगा। साथ ही उनकी उपलब्धियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। श्रीगंगानगर के नेतेवाला के पास एक सड़क हादसे में आज 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर के पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि दुर्घटना कार, ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर से हुई, जिसमें कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्रदेश भर में मॉनसून की रफ्तार आज से धीमी होने के आसार हैं। इससे अधिकतर स्थानों पर बरसात की गतिविधियों में कमी आ सकती है। हालांकि पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। लगभग एक सप्ताह तक मॉनसून की परिस्थितियां कमजोर रहने की आशंका है। इस दौरान कहीं कहीं छुटपुट वर्षा का पूर्वानुमान है। इस बीच हनुमानगढ़ जिले के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। उधर पाली में आज सुबह से ही बादलों की आवाजाही और धूप छांव का असर रहा। वहीं बाड़मेर में धूल भरी आंधी चली।

0: रानपुर स्थित संस्थान के परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीटेक, एमटेक और पीएचडी की उपाधियां प्रदान की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को देश को विकसित बनाने के लक्ष्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के साथ ही राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर, दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध से कोटा बूंदी क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 जुलाई को विशेष आयोजन, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शिरकत करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कल, विशेष जन जागरूकता सप्ताह शुरू होगा। और प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी हुई, करीब एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों के कमजोर रहने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख रामेश्वर बेड़ा ने तैयार किया है। बीते दिनों जोधपुर को एक नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन की सौगात मिली। 37 एकड़ में बने इस आधुनिक टर्मिनल की वार्षिक क्षमता 20 लाख यात्रियों की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। ये टर्मिनल भवन 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संशोधित उड़ान योजना के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से छोटे शहरों को बेहतर हवाई संपर्क मिलेगा और पर्यटन तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस नए टर्मिनल भवन के बनने से स्थानीय लोगों और पर्यटन व्यवसायियों में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते दिनों जोधपुर प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री के जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल पर प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। अगले दिन वे वापस आए और भाटी चौराहे पर आम जन के साथ चाय पी और स्थानीय नागरिकों से आत्मीय संवाद किया और इसके बाद यूपीआई से भुगतान कर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने का संदेश दिया। जिला स्तरीय रोजगार उत्सव में विभिन्न विभागों में चयनित 1795 नवनियुक्त अभ्यर्थियों ने भाग लिया। पचपदरा से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने 20 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। जोधपुर मंडल के 14 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। महिला यात्राओं की सुविधा के लिए जोधपुर रेलवे स्टेशन पर वात्सल्य कक्ष भी बनाया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कहा है कि ट्रेनों के बढ़ते विद्युतीकरण से पिछले दो वर्षों में 2,84,00,000 लीटर डीजल की बचत हुई है। वर्तमान में अधिकांश ट्रेनों का संचालन विद्युत इंजनों से हो रहा है, जिससे प्रदूषण और परिचालन लागत दोनों में कमी आई है। स्वच्छता पखवाड़ा अभियान में भी उत्तर पश्चिम रेलवे को देश में दूसरा स्थान मिला है। उधर उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर में नव लोकार्पित सेंटर फॉर डेवलपमेंट रेल कर्मियों और अधिकारियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। डीआरएम अनुराग त्रिपाठी की पहल पर बनाए गए इस वातानुकूलित केंद्र में प्रशिक्षण, करियर काउंसलिंग, शोध, व्यक्तित्व विकास और नवाचार के कार्यक्रम होंगे। यहां डिजिटल म्यूजियम, पुस्तकालय, स्पोर्ट्स अरीना, डिजिटल वॉल और कैफे कॉर्नर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने पर जोधपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों की जानकारी आम जन को दी गई। आईआईटी जोधपुर के 2 वैज्ञानिक यूरोप स्थित सर्न CERN की एटलस परियोजना से जुड़कर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के आंकड़ों पर मशीन लर्निंग आधारित शोध करेंगे। वे ब्रह्मांड की संरचना, कणों के गुण और नए वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। केंद्र निदेशक प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल ने इसे संस्थान के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। MBM विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने AI पर आधारित एक ऐसा मॉडल विकसित किया है जो मिर्गी के दौरे से पहले चेतावनी देने में सक्षम है। भविष्य में इस तकनीक पर आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित करने की योजना है। वहीं आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ता

0: अमेरिका नई पीढ़ी के बायोमार्कर्स भी विकसित कर रहे हैं, जिनसे उपचार शुरू होने से पहले ही कीमोथेरेपी की प्रभावशीलता का अनुमान लगाया जा सकेगा। शोध में सिंगल सेल सीक्वेंसिंग, मल्टीकलर हाई पैरामीटर फ्लो साइटोमेट्री और आधुनिक आणविक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे कैंसर उपचार अधिक सटीक, व्यक्तिगत और प्रभावी बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में सामूहिक योगाभ्यास आयोजित किए गए। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और आमजन ने योग कर नियमित जीवन में योग अपनाने का संदेश दिया। जोधपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरा माथे। दोनों देशों बीच कारोबार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करण माथे चर्चा करी जावेला। मध्य प्रदेश रा गांधी सागर बंधाऊ कोटा बूंदी हलका रा किसाना ने पाणत सारू पानी मिलेला। राजस्थान विधानसभा रा 75 साल पूरा भेवन रा सिलसिला माय 15 जुलाई ने खास आयोजन उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ई शिरकत करेला। विश्व जनसंख्या दिवस काल मनायो जावेला, जन जागरूकता सप्ताह शुरू भेला। और प्रदेश में चौमासारी बिरखा सुस्त पड़ी, करीब एक सप्ताह ताई बिरखा कम भेवन रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे बस समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों रा दौरा रा आखिरी चरण माय आज न्यूजीलैंड माय ऑकलैंड पुग्या। न्यूजीलैंड रा प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन श्री मोदी री अगवानी किन्नी। प्रधानमंत्री मोदी रा ई दौराऊ भारत और न्यूजीलैंड बीच आपसी रिश्ता, कारोबार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत बनेला। इनु पहले श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया रा दौरा री बगत खेल सहयोग रा रोड मैप रा बारा माय चर्चा किन्नी। रोडमैप रातेत दोनों देशों बीच कबड्डी और खो खो सरीखा पारंपरिक खेलना समेत न्यारा न्यारा प्रदर्शन मैच और आयोजनारी मेजबानी रा मौका री ठाकरी जावेला। प्रधानमंत्री मोदी कहो कि इन भेड़ी प्राथमिकतावां, साधन और सहयोग रा हलका री पिछाण करी जावेला, जिणु दोनों देशों ने फायदो मिलेला।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
1: मध्य प्रदेश रा गांधी सागर बंधाऊ राजस्थान माय पाणत सारू पानी छोड़ियो जावेला। इनु कोटा बूंदी हलका रा किसाना ने फायदो मिलेला। ध्यानजोग है कि बूंदी और केशोराय पाटन हलका रा किसान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मिलर नहरा माय पानी री कमी और साखा ने नुकसान री शंका जताई ही, जी पाछे श्री बिरला राजस्थान और मध्य प्रदेश रा अहलकारा बातचीत कर और जरूरी हुक्म दीना। ई बंधाऊ 6000 क्यूसेक पानी छोड़न माथे एक राय बनी है। शुरुआती दौर माय 200-300 क्यूसेक पानी छोड़ियो जावेला। इनु करीब 2.25 लाख हेक्टेयर कमांड हलका रा किसाना ने फायदो मिलेला।
3: पानी गांधी सागर से राणा प्रताप सागर में आना और राणा प्रताप सागर में पानी कम होने के कारण नहरों को छोड़ा जाना संभव नहीं था। गांधी सागर से पानी छोड़ने के बाद जब राणा सागर पानी आएगा तब नहरों में पानी आएगा। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया, वहाँ के मंत्री से कहा कि वह गांधी सागर में पानी राणा प्रताप को दे ताकि हमारे इलाके के किसानों के खेत तक पानी पहुंच सके। वहाँ की सरकार ने सिद्धांत सहमति दे दी है और आज कोटा के LMC RMC में पानी शुरू हो जाएगा।
1: जयपुर माय आज यमुना जल हस्तांतरण परियोजना री DPR री पहली समीक्षा बैठक राखी जी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माय हुई मीटिंग माय न्यारा न्यारा तकनीकी और माली पहलुआ ने बारा माय चर्चा करी जी। ई परियोजना रा तहत हथिनी कुंड बैराज राजस्थान री पांती रो यमुना नदी रो पानी जमी हेठे पाइप लेन रे जरिए चूरू जिला रा हासियावास ताई पोगावन रा काम रो जायजो।

0: इंसारू पाइपलाइन सिस्टम 386 MCX बोतारा जलाशय और दूजा मुद्दा माथे विचार करी चियो। इसागई रेणुका जी लखवार और किशाऊ बंधाना काम राजस्थान रे पांतीरा पानी और खर्च माए भागीदारी रबारा माए विचार करी चियो। मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग री पीएम सूर्य घर योजना पीएम कुसुम और यूएएल मॉडल सरीखी खास योजनावां रोई जायजो लीनो। यूएलए मॉडल रे जरिए 3,00,000 घरां री छत माथे सूरज री रोशनी 330 मेगावाट बिजली बनावण री मशीना लगाई चावेला। मीटिंग में बताई चियो कि राज्य रा 172 ग्रिड सब स्टेशन माथे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS लगाया चावेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक मत है AIR News राजस्थान पर आई सुन सको हो। इंसा गई आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in मत है समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। राजस्थान विधानसभा रा 75 साल पूरा भेवन रा सिलसिला माए 15 जुलाई ने खास कार्यक्रम राख्यो जावेला। विधानसभा भवन माए राख्या जावन वाला ई अमृत महोत्सव कार्यक्रम माए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने शामिल फैला। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज जयपुर माए खबर नवीसा ने आज जानकारी दीनी। वे बतायो कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ री राजस्थान शाखा री ओर राख्या जावन वाला ई आयोजन माए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाई विचार बतावेला। श्री देवनानी बतायो के ई मौके विधायी गौरव यात्राई राखी जावेला जिनमाए मौजूदा और पहली वाला विधायक ही शामिल वेला।
1: ये हमारे विधायकों का समागम पूरा वर्तमान का ये समागम का कार्यक्रम है। वह 15 जुलाई को प्रारंभ होगा और इसमें दो बातें जो विशेष हैं, एक तो हम अतीत का संस्मरण भी करेंगे और भविष्य के विधायी मार्ग का भी उसमें चर्चा होगी। इस दृष्टि से 4 बड़े कार्यक्रम इस वर्ष भर में विचार किए, उसमें से पहला कार्यक्रम हम आगामी 15 जुलाई को इसी विधानसभा परिसर में हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद विशेषता ये कि 2 सत्र और हैं। इससे 75 साल के अंदर जो हमने कानून इस विधानसभा ने पारित किए हैं उसमें से जो प्रमुख रहे हैं उसके बारे में जानकारी और चर्चा उन सत्रों में होगी।
0: सम्मेलन में विधायी परंपरावां सदन री गरिमा संसदीय अनुभव चुनौतियां समेत कई मुद्दा माथे चर्चा करी जावेला। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज संसद भवन परिसर में मानसून सत्र री तैयारियां रो जायजो लीनो। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई 13 अगस्त तई चालेला। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए मेघवाल बतायो कि सत्र शुरू ते कामकाज रो जायजो लियो चियो और जरूरी हुक्म दिया चिया। काल विश्व जनसंख्या दिवस मनायो जावेला। इनरो मकसद परिवार नियोजन मातृ स्वास्थ्य लैंगिक बराबरी और जनसंख्याओं जुड़िया मुद्दा ने बारा माए जाग जगावनो है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकार री ओर ई मौके खास कार्यक्रम रख्या जावेला। आखर राज्य माए काल 18 जुलाई ताई जनसंख्या स्थिरीकरण सप्ताह मनायो जावेला। इन तेत नाना और खुशहाल परिवार और बच्चा बीच सही आंतरो राखण सारू जरूरी साधना री जानकारी दी जावेला। स्कूल कॉलेज NCC और युवा क्लबा नी मदद जागरूकता रैलियां निकाली जावेला। इस आगे आशा सहयोगिनिया और स्वास्थ्य कर्मचारियां रे जरिए घर घर संपर्क कर और परामर्श सेवा दी जावेला। बीच जनसंख्या स्थायित्व रा मामला माए बांसवाड़ा जिलो आखा राज्य माए अव्वल रहो है। जिला रा अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भरत राम मीणा बतायो कि जिला ने लगातार तीजी दफा आ उपलब्धि हासिल भी है। उद्योग और वाणिज्य विभाग 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल शुरू कीनी है। इन तहत उद्योग कारोबार परदेश माए बिक्री स्टार्टअप्स सैर सपाटा और दूजा हलका माए खास काम करन वाला 100 जना चुनिया जावेला। उद्योग आयुक्त नीलाभ सक्सेना बतायो कई सारू 15 अगस्त ताई ऑनलाइन तरीकों अर्जी दी जा सके है। वे बतायो कि चुनी ज्या लोगों ने 100 आइकन्स कंपेंडियम माए जगह दी जावेला और हमारी उपलब्धियां रो

कृषक चौपाल कार्यक्रम सुनबाला सभी किसान भाई बहना के ताएं आपका साथी राकेश को घणो घणो राम राम। किसान भाई बहनाओ देखो साड़ी को टाइम चल रही है और आपने देखवा में आ रही है कि देखो किसान भाई बहनाओ बहनों बारिश भी मंदी पड़ गई और दो दिन से बढ़िया सूखो मौसम हो रही है। लेकिन देखो आपने घना किसान भाई बहन ऐसा है कि ज्या का जो फसलां है वो बाया कोई का 10 दिन की होगी कोई का 15 दिन की होगी तो वहाँ का बढ़िया निराई गुड़ाई को खरपतवार भी होगी हो गया तो निराई गुड़ाई को बढ़िया टाइम हो गया। तो देखो यो जो अपने जो समय मिले छे ये समय को आपन छावा तो सदुपयोग कर सका चा। देखो बारिश तो 2 दिन न 4 दिन बाद आओगी सही लेकिन जो उगाड़ मिले छे तो ये में अपन आज अपन देखो अपना जो फसला में देखो खरपतवार हो जाए कचरो काटो उग गया छे तो वो अपन बाजार में से दवाया लाऊँ चा और दवाया कोई स्प्रे करा चाहे जैसे अपने कचरो थोड़ो बहुत चल जाए फिर पाचो उग गया छे। और देखो मौसम भी आपने अगर मौसम ने थोड़ो सो अंतराल दे दियो तो ये मौसम में अगर आप अपनी फसलों की जो खरपतवार उनको अगर आप निराई गुड़ाई कर लिया बढ़िया तो वो देखो खत्म हो जाएगा आपने देखो पीसा भी ना लगगा। आज आप खेती बाड़ी कर रहे तो खेती बाड़ी इनके लेके फायदा कर लेके तो कह रहे जा भाई अब ये अपनी सोच यही रहे कि आपने जो खेती बाड़ी चाहे खर्चो तो कम से कम हो अब अपना फायदा अधिक हो तो देखो फायदा तो जब आप मेहनत करेंगा जब जा रही और काम करेंगा जब जा रही फायदा होगा। आज अपना सोच बस से काम न चल काम करेंगा जब जा रहा अपना कहते फायदा होगा। तो देखो ये समय में अगर अपना अपनी जो फसलें चाहूँगा कि निराई गुड़ाई खरपतवार को अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करें वहीं ख़त्म कर दिया तो अपनी फसल भी अच्छी होगी पैसा भी न लगगा। और देखो आज अपने जो दवाइयों को जो स्प्रे करा चाहते तो अपने देखभा में सुनवा में हो चुका देखो कितनी प्रकार की बीमारियाँ भी है वो दवाया से देखो अपने जो खेत की जो मिट्टी है उनको उपजाऊपण भी धीरे धीरे देखो कम हो तो जा रही है। आज अपना पैदावार दनादन घटती जा रही है आप जब वो खाद डालेंगे अतिरिक्त जब जा रहा अपना पैदावार बढ़ रही है। तो और देखो किसान भाई बनाओ मारा मन में एक और बात आ रही है आज अपने खेती बाड़ी करी रही है तो खेती बाड़ी तो अपन का ताई हमेशा ही करनी है। तो अगर अपनी जो खेत की जो मिट्टी है वही अगर अपना स्वस्थ रखेंगे जब भी जा रहा अपना हमेशा लेकर अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकेंगा। और धीरे धीरे अपना खेत की मिट्टी देखो प्रदूषित होती जाओगी तो क्योंकि पैदावार कम होती जाओगी तो वो नुकसान अपने ही। तो किसान भाई बनाओ इस संदर्भ में आज जो आप बातचीत करेंगे वह बातचीत करेंगे मृदा एवं जल संरक्षण। देखो किसान भाई बहनों आपने खेती कर लेकर देखो सबसे मेन चीज़ है अपना खेत की मिट्टी और जल। देखो मिट्टी में तो अपना अपनी फसल उगाऊँ और जल बिना अपने अपनी जो फसल च वो पैदा न कर सका। तो अगर यहाँ दुनिया को अगर आपने संरक्षण कर लियो तो आपना देखो फायदो फायदो च नुकसान वालों काम ही कोई ना। देखो किसान भाई बहनों मृदा को अब जल संरक्षण को सबसे बड़ो देखो काम ही हो चुके एक तो सबसे बड़ो अगर आप भूमि को कटाव जो चाहे अपने खेत की जो मिट्टी चाहे उनको अगर कटाव रोक लिया अगर आपने जल जैसे बारिश का समय में देखभा में हो चाहे किसान भाई बहनों को देखो बारिश आ रही है अनाप शनाप तो अपना खेत में पानी बह जा रही है तो उनके साथ में पानी के साथ में अपना खेत की मिट्टी भी बहे तो ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी रहे वह तो बह जाए आज अपन खाद डाला चाहे कोई दवाया डाला चाह तो उनको जो वो तो बह जाए तो वो नुकसान आपन कथा है। तो आपन चाहवा तो अपना खेत में देखो और सरकार भी देखो मृदा एवं जल संरक्षण के लेकर तरह तरह की कितनी प्रकार की अनेक योजनाएं ला रही है वहाँ पर आपन कथा है अनुदान भी दे सब्सिडी भी दे तो आपन कथा है यह चीज़ों को भी लाभ उठानी चाहिए जी। आज देख लियो आपन अपना सरकार ने कितनी प्रकार का कृषि विभाग से मृदा विभाग से वहाँ में तरह तरह की अपने जानकारी ले सका चाह कैसे कैसे योजना चाल भी है वहाँ की जानकारी प्राप्त कर सका चाह अब वहाँ को लाभ प्राप्त कर सका चाह। और किसान भाई बनाओ अगर आपने अपना खेत की जैसे मृदा और जल को संरक्षण कर लियो तो उनसे अपना जो खेत की जो मिट्टी है उनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी उनको उपजाऊपन भी बढ़ेगो। अब तो इनके लेकर किसान भाई बनाओ देखो आपन के ताई सबसे पहली मारा मन में एक सवाल आ ढाल कर विपरीत जुताई करवा से आपने जो मिट्टी को कटाव है वो कटाव रुक जाए बारिश का समय में जो पानी भर कर तो अगर डाल का विपरीत दिशा में अगर अपना खेत की जुताई करेंगे तो मिट्टी को अपनी मिट्टी पानी न बहेगो पानी न जो पानी पड़ेगो बारिश होगी वो पानी बरसेगो वो पानी अपना खेत में रम जाएगा

0: तो अपना खेत को मिट्टी को भी कटाव ना होगो और साथ में जल को जो संरक्षण है वो संरक्षण भी हो जाएगो। और किसान भाई बड़ा देखो एक साथ साथ आपने कताएं देखो खेत की जो मेड़ा आप अगर आपने पेड़ पौधा लगा दिया तो उनसे भी आपने कताएं देखो घणों प्रकार को फायदों से आज उसे अपना पेड़ पौधा रहेगा तो उसे अपना खेत की मेड़ बढ़िया रहेगी तो अपना खेत की मिट्टी पानी भी बहेगो तो भी मेड़ कटेगी ना, मेड़ न कटेगी तो वो पानी भी ना निकलेगा और अपना खेत की जहाँ मिट्टी चे वो मिट्टी भी ना बहेगी। और साथ में देखो आज अपन खेती बाड़ी को काम कर देता माड़ में काम कर देता दिन भर थोड़ी बहुत देर आराम करवा के लेकर उन पेड़ की छाया में अपन बैठकर आराम भी कर सका चाहे तो अपना अतनी प्रकार का फायदा है। तो इसके लेकर देखो मेड़बंदी भी किसान भाई बनाओ अगर अपने अपना खेत की मिट्टी और जल संरक्षण करना चाहे तो एक लेकर आपने कहता है मेड़बंदी भी करवानी पड़ेगी। और साथ में किसान भाई बनाओ देखो मिल्चिंग देखो मिट्टी की अपना खेत की जहाँ मिट्टी है उसकी नमी बनाए रखाण वा के लेकर देखो किसान भाई बनो जो अपना फसल अवशेष रहे और सूखे पत्तियाँ से खेती ढक दे तो उनकी वह भी अपना खेत की मिट्टी की नमी बनी रहे जिसे आपने देखभाल में आ देखो बनो आपने बहुत सारा किसान भाई बहना ने फसलों की बुआई कर दी अब दो चार दिन के रह के पानी कोई ना लेकिन देखो भगवान का घर में देव अंधेर कोई ना पानी तो आओगे सही बारिश को मौसम से। अब किसान भाई बढ़ाओ देखो यहाँ चीज़ों में आपन कताएं सरकार भी देखो आपने जो सरकार जो अभी तरह तरह की आपने बढ़ावा देवा के लेकर आपने कताएं अनेक प्रकार की योजना की शुरुआत करे कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपन कताएं समय समय पर मार्गदर्शन करती रहे चे और आपन छावा तो आपन कृषि विभाग से मृदा विभाग से यहाँ से आपने यह चीज़ है कि और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सका जा आज आपने पास में देखो कितना कृषि कार्यालय से कृषि अधिकारी बैठिया चे कृषि वैज्ञानिक चे वहाँ से भी चाल है आपन आपने जो मन में जो सवाल चे वो पूछ सका चा तो वहाँ को आपन समाधान कर सका चा और आपने जो भी समस्या चे वह समस्या को समाधान हो सके चे। तो किसान भाई बहनों अब देखो आपने बाता चिता तो चालती रहेगी लेकिन देखो किसान भाई बहनों आज आपने खेती बाड़ी करे चा खेती बाड़ी में देखो आपने देखवा में आऊँ कि कितनी नई नई प्रकार की खेती आएगी नई नई प्रकार की तकनीकें आएगी तो क्यों ना आज आपने जो परंपरागत खेती कर दिया था तो अगर आपन नई नई तकनीक और नई नई जो खेती है उनका बारे में भी अगर आपन विचार करा तो देखो घणा फायदा आज आपन खेती फायदा के लेकर ही तो कर दिया था। तो इस संदर्भ में आज जो आप बातचीत करेंगा वो बातचीत करेंगा आप नींबू वर्गीय फलदार पेड़ पौधों की देखभाल की प्रकार से करा और आपन कथा यह जानकारी देगा श्री दानमल जी मालव वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक। तो किसान भाई बनाओ आप सुना यह जानकारी किसान भाई बड़ा देखो आज आपन खेती बाड़ी कर ही रहा था खेती बाड़ी के साथ साथ अगर आपन कुछ और भी फसलों को आपन लाभ दे सका चाह और भी आपने पेड़ पौधा लगा सका चाह तो इन संदर्भ में आज आपन जो बातचीत करेगा वो बातचीत करेगा नींबू वर्गीय फलदार पेड़ पौधों की देखभाल वो यह जानकारी आपन कताएं देगा दानमल जी मालव वरिष्ठ कृषि प्रेक्षक झालावाड़। दानमल जी छपाल कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। राम राम साहब।
1: राम राम राम राम।
0: आपने बातचीत करा नींबू वर्गीय फलदार पेड़ पौधों यहाँ कशा कशा पेड़ पौधा हो चुका
1: देखो नींबू वर्गीय में संतरा है मौसमी है नींबू है के अंदर आती है
0: जी। तो अपना जो किसान भाई बहन से कार्यक्रम सुन रहे थे वो भी जो किसान छे वो यहाँ की मतलब फसल किस प्रकार से प्राप्त कर सके जैसे आपने संतरा की फसल ही ले लिया
1: संतरा तो की फसल देखो फसल संतरा की फसल में कहीं दो बार फल आओ जे
0: जी
1: दो बार फूल आओ जे एक तो आओ जे मृग बहार और एक आओ जे अंबे बहार। जब फरवरी मार्च में जो फूल आओ जे वो संतरा का रूप में अपना सितंबर अक्टूबर नवंबर में पकवा लग जाओ जे
0: जी
1: और एक आओ जे फूल मृग बहार वो आओ जे अपना बारिश के जैसे बारिश हो जाए बारिश के बाद में जून जुलाई में फूल जुलाई में फूल आवा लग जाओ तो वो पके जाए अपना फरवरी मार्च
0: जी
1: यही कहे नारंगी सर्दी में पके जाए वहां से कहे संतरा सर्दी में जिसे अपना दिसंबर नवंबर दिसंबर में जो पकेगा ना वहां से संतरा कहे और जो फरवरी मार्च में जो पकेगा ना वहां से नारंगी कहे
0: जी जी।
1: एक ही पौधा में दो प्रकार का फल आओ दो संतरा नारंगी
0: तो अलग अलग फल रहे कि एक ही प्रकार का
1: एक ही प्रकार का फल रहे बस मौसम को अंतर रहे।
0: अच्छा मौसम के अनुसार यहाँ को नाम चेंज
1: नाम चेंज
0: और इनके अलावा आप कसी कसी फसला ले सका
1: देखो नींबू भी ले सके जा अपन नींबू भी बहुत अच्छी चीज है
0: नींबू में भी अगर मालो साहब देखवा में आ रहे कि नींबू की आपने देखा जा गर्मी का समय में नींबू मार्केट में बहुत महंगा महंगी बात का
1: जी
0: तो इससे तो अगर ये नींबू की फसल किस प्रकार से करा देखो
1: नींबू नींबू में कहीं जे के रूट सेटिंग करनी पड़ेगी
0: जी
1: ये में कहीं करनी रूट प्रूनिंग बोले जो अपन अगर बरसात खत्म हो

0: बाद
1: जी
0: जैसे अक्टूबर नवंबर को महीनो रह जाए तो नवंबर का महीना में इनके रूट प्रूनिंग करी जाओ, यानी कि जड़ा का जाला निकाल दो और पानी बंद कर दो, और जैसे पानी बंद करने के बाद में कड़क बाहर आ जाओ वो टाइम की में आप जड़ा निकाल दो खुदाई करके, और जड़ा निकाल के और उसको 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक खुला छोड़ो, तो उस टाइम की क्या सर्दियां पड़ेगी, तो सर्दियों में क्या उसके पत्ते जो पत्तों में जो रोग हैं वो पोते गिरने लग जाएंगे, उसकी कटिंग कर दो, और उसके बाद में 15 दिसंबर के बाद गोबर का खाद सुपर फॉस्फेट फिनाइल पोस्ट डस्ट ये डाल के और भर दो उसको, तो भरने के बाद भर के एकदम पानी फूल भर दो, जब पानी दोगे तो उसमें नई फुटान आएगी, उसी के साथ फूल आने लग जाएंगे, तो वो फूल क्या अपने जनवरी के महीने में आ जाएंगे। अब जनवरी के महीने में जो फूल आएंगे ना वो पकेंगे अपने के मई में, अप्रैल मई में पकने लग जाएंगे, तो मई में पकेंगे तो मई में सबसे ज्यादा रेट मिलती है इसकी।
1: जी जी बिल्कुल, और अगर का मौसम अपन, देखो नींबू की जरूरत भी ज्यादा रहे चलो,
0: पर अगर आपने उसकी कटिंग नहीं करेंगे तो अपने आप जो फल आएगा वो आओगे अपना फरवरी मार्च में, तो फरवरी मार्च में जो फूल आओगे वो बरसात में पकेगा, तो बरसात में रेट डाउन हो जाएगा।
1: जी,
0: तो नींबू के लिए बहुत बढ़िया चीज है यह कहीं की रूट प्रूनिंग करो और या नवंबर दिसंबर में आप कर दो
1: जी,
0: और जब ये का फूल आओ तो फूल आते वक्त में पानी नहीं देना, अगर फूल आगे टाइम पर पानी दे देगा तो फूल खिल जाओगे और पत्ती चालू हो जाओगी।
1: अच्छा मतलब जी टाइम पर फूल आओ तो टाइम पर पानी ना देना, पानी ना देना। एक सवाल होगा मालव साहब, मतलब जैसे एक जो आप जड़ा खोल के बता रहे थे जड़ा में,
0: जी,
1: तो वो जड़ा जड़ा अपन कितनी जमीन से कितनी गहराई का जड़ा साफ करा तो
0: उसमें ज्यादा गहराई नहीं है, जो पौधा है उसके पौधे की जो कैनोपी होती है, पौधे का जो मेन जड़ है मेन तना है, और तने से 1.5-2 फुट दूर तक उसमें जाले आते हैं, मेन जड़ों के बीच मोटी जड़ों के बीच में बारी बारी जाले होते हैं, वो निकालना पड़ता है, वो ज्यादा गहराई भी नहीं करनी पड़ती, वो जाले अपने आप दिख जाएंगे, आप अगर खुदाई करोगे उन जालों को टना, वो क्या करते हैं भोजन रोकने का काम करते हैं।
1: अच्छा पौधा ही मतलब भोजन रोक,
0: हाँ जो जड़े उसको रोकने से उसका पौधे का विकास अवरुद्ध हो जाता है, अब उनको जब से कोड़ेंगे तो उसकी जो जड़े है ना भोजन लेने वाली वो जड़े होती है उसकी कैनोपी जो उसका घेरा होता है ना छाया का, दोपहर में जब देखते हैं जहाँ जहाँ छाया जा रही वहाँ जड़े होती है भोजन लेने वाली, तो उस जगह पे अपने को खुराक देना होता है।
1: मालव साहब मारा मन में एक और सवाल आ रही, जैसे आपने संतरा का बताया, नारंगी का फल का और नींबू का बारे में आपने बात करी, तो यहाँ पर कोई प्रकार की कोई बीमारियां कोई कीट ये भी तो लागवा की संभावना रहती है, यहाँ को उपचार आपने ठीक तरीका से करा है, कशा कीट लागे कैसी कैसी बीमारियां हो चुके।
0: इसमें एक कीट लगता है नींबू की तितली जिसको सामान्य भाषा में कोट बोलते हैं, तो ये एक तो बरसात की शुरुआत होती है जुलाई अगस्त में बहुत ज्यादा लगता है फर्स्ट बारिश में, तो वो क्या तितली जब लगे ना तो वो चिड़िया की बीट के समान दिखाई देती है मटमैले कलर की, तो उस टाइम की उसका ध्यान रखो, पौधे पर अगर आप जाओगे तो पत्तियां नई पत्तियां वो खाई हुई लगेगी, अगर वो दिखाई देती है तो उसमें हाथ वहां दवाई का स्प्रे करो, अब दवाई उसमें अपन प्रोपेन पोस्ट डाल सकते हैं, किनाल पोस्ट डाल सकते हैं, मोनोकोटो पोस्ट डाल सकते हैं, तो उसका स्प्रे हो जाए तो कीट कंट्रोल हो जाएगा, अगर नहीं करे तो फिर वो बढ़ के और पौधों की एकदम नई पूरी खोपलों को पत्तों को सबको खा जाता है। और एक इसमें आता है नींबू वर्गीय साइट्रस कैंकर, तो साइट्रस कैंकर एक प्रकार का नींबू में दबेदार आता है जिससे अपने जंग आता है ना लोहे पे, इस प्रकार से वो बीमारी है, तो उसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस सीओसी का स्प्रे कर दे तो उसमें वो कंट्रोल हो जाता है।
1: वो इकला एक मारा मन में एक सवाल हो रहा है, बहुत सी बार देखा था कोई नींबू का पेड़ में देखो नींबू लाग भी तो नींबू फट जाओ।
0: हाँ ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा, इसमें क्या अपने जमीन के अंदर बोरोन की कमी होती है उसी जैसे वो पटने की समस्या आती है, तो अपन जीरो जमीन में बोरेक्स जो आता है दानेदार भी आता है, आजकल जिंक का जो आ रहा है वो बोरोन एडेड आ रहा है, तो उसको भी अपना ये जो सुपर फॉस्फेट आता है जिंक वाला तो उसको अपन उसमें डाल सकते हैं, और जब ये समस्या है तो बोरेक्स का स्प्रे भी कर सकते हैं 0.2% का,
1: ये सब मतलब वो समस्या खत्म हो जाए
0: समस्या, क्योंकि उसमें टाइटनेस आ जाता है इसलिए फटते हैं।
1: आपने तो देखो ये तो मान लो आज नींबू फटता है अपने जी किसान वहाँ का तो बहुत सारा नुकसान हो जाओ
0: तो कड़कपन की वजह से वो फटता है, नींबू भी फटती है, संतरा भी फटता है, नारंगी भी फटती है, तो बोरन की कमी की वजह से फटता है।
1: कार्यक्रम में चलता आप अपना जी किसान भाई बहन जी वहाँ सलाह के तौर पर आप का कबो
0: चाहो
1: देखभाल
0: देखो जो पौधे लगे हुए हैं, एक तो पौधों को जो लगाए नए बीजे भी लगा रहे हैं अभी लोग, तो उनको एक तो 6x6 मीटर पे लगाए, इसका संतरा है मौसमी नींबू है उसको 4x4 मीटर 5x5 मीटर पे लगाए, तो उसमें क्या पर्याप्त दूरी रहेगी तो पौधे को उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और पौधे में बीमारियां कम लगेगी। दूसरी बात समय पे पौधों को देखते रहे, और जब बगीचा लगाएं तो उसमें ड्रिप का उपयोग जरूर करें, क्योंकि ड्रिप सिंचाई से बूंद बूंद पानी मिलेगा, उसके साथ उसको भोजन भी दे सकते हैं, क्योंकि दोरे से जो पानी देते हैं किसान लोग तो उसमें क्या एक तो कचरा ज्यादा होता है और जो पोषक तत्व है वो लीच करके नीचे चला जाते हैं, तो ये समस्या है, इसलिए ड्रिप का उपयोग करें और पौधों को समय समय पर देखते रहें, पौधों में जो बीमारियां वो अपने आप बता देता पौधा भाई मेरी ये बीमारी है, तो उसके पास जाएंगे तो अपने आप मालूम पड़ जाएगी, तो किसान भाइयों से यही निवेदन है कि वो आप अपने अपने बगीचों की मॉनिटरिंग करते रहे, जिसे अपन कोई दुकान लगाते हैं वहां रोजाना जाते हैं सुबह शाम इसे खेत पे अपने

0: सुबह शाम या जब भी टाइम मिले जब जरूर उसमें देखभाल करें।
1: जी बिल्कुल, ना तो देखभाल माँ उच्च मालो साहब बहुत सी बार ऐसे हो उच्च। देखो किसान भाई बने काम की शुरुआत तो कर दे, पेड़ आज आपने नींबू का नारंगी का पौधा तो लगा लिया, लेकिन वो
0: जी
1: जानकारी का अभाव में आपन वहाँ को उचित लाभ प्राप्त न कर
0: न
1: सका,
0: कर
1: जितना
0: पाऊंगा।
1: आपन वहाँ से पैदावार ले सका चाहे वह
0: सही,
1: पैदावार प्राप्त न कर सका।
0: देखो इसके लिए बहुत बढ़िया बात बताई। इसके लिए आपने जो संबंधित कृषि पर्यवेक्षक हैं, सही कृषि अधिकारी हैं, जो कृषि विभाग हैं, उद्यान विभाग हैं, तो इनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे संपर्क में रहें। कोई बीमारी भी लगे, कोई भी समस्या है, तो उनसे समाधान ले, तो उसमें सही जानकारी मिलेगी, सही सलाह मिलेगी।
1: मतलब समय समय पर आपने मतलब आपने जान जी आपने कृषि अधिकारी से कृषि पर्यवेक्षक से वहां से जानकारी लेता रहा। मालो साहब आपने अपनो अपनो कीमती समय माँ कताई जो इकले का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम राम।
2: किसान भाई बहनों, देखो आपने सुनी यह जानकारी नींबू वर्गीय फलदार पेड़ पौधों की देखभाल और यह जानकारी आपन कताई दी जी श्री दानमल जी मालो साहब ने। तो किसान भाई बहनों देखो, मारो तो आपसे यही खबो छे कि भाई अगर आपन देखो खेती बाड़ी करे जाए तो खेती बाड़ी ऐसी करा अलग अलग प्रकार की जिसमें आपने अधिक से अधिक फायदा हो। आज देखो खर्चा तो दनादन बढ़ता जा रहा है, तो वह खर्चा की देखो भरपाई करवा के लेकर आपन कथाएँ पैदावार बढ़ानी पड़ेगी। अपना साथ में अपना जो खेती में खर्चा है वो खर्चा कम करनी पड़ेगा। जब जा रही अपने पैदावार बढ़ेगी, खर्चा कम होगा, पैदावार बढ़ेगी तो अपना अधिक फायदा होगा। आज अपन खेती फायदा के लेके तो कर देता। और किसान भाई बनाओ देखो, आज अगर अपन समय पर देखो कोई भी फसल हो, अगर उनको अपन समय पर जानकारी, अगर अपन कहते हैं पूरी जानकारी चे, अब उनको जो फल अपन समय पर अगर वही ले चा तो उनको सही समय पर अगर लेगा तो उनको अच्छो दाम मिलेगा, तो अच्छो दाम मिलेगा तो आपन कहते हैं अच्छो फायदा होगा। और किसान भाई बहनों अपनी बातचीत तो चलती रहेगी, अब आपने सुना ये संदेश।
3: शहर और जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग अब शहरों में रहते हैं और ये शहर दुनिया के 3/4 ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो और आबादी घनी हो, वहां बुरे मौसम, हवा में गंदापन और बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन शहर समस्या का हल भी बन सकते हैं, जैसे बेहतर सार्वजनिक परिवहन, कम गाड़ियां और अपने शहर में ही खाद्य उगाना। यह सब प्रदूषण को घटाता है और जीवन को बेहतर बनाता है। सतत योजना बनाना अब कोई विकल्प नहीं रहा, बल्कि यह एक आवश्यकता बन गया है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। आज लगभग 55% लोग पृथ्वी पर शहरों में रहते हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

किसान भाई बनाओ। देखो अब अपना अपना जो बातचीत वो बातचीत पर पाचा हुआ। देखो अब किसान भाई बनाओ, आज अपन एक और बातचीत पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो किसान भाई बनाओ देखो आज अपन के ताई देखो अपन खेती बाड़ी कर दिया जा, तो अपन के ताई प्रधानमंत्री जी ने अपना देखो कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को करी थी। और देखो इनको जो मुख्य लक्ष्य जो हर खेत तय पानी और प्रति बूंद फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप सुनिश्चित करवा की यह योजना च। और देखो यह योजना ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे सूक्ष्म सिंचाई जो तकनीक है वहाँ बढ़ावा देवा के लेकर करी। और देखो जब बूंद बूंद सिंचाई है तो इनके लेकर देखो सरकार अपन कताई कितने प्रकार की सहायता भी दे, अनुदान भी दे, सरकार की कतनी

कितने प्रकार की योजना च वो देखो तो सब्सिडी भी आपन कत प्रदान करे तो यह योजना अगर आपन लगाओ चा तो आपन कितने प्रकार को फायदा चा। साथ में देखो किसान भाई बहनों पानी की भी बचत च। आज आपन जो जल संरक्षण पर आपन बात कर रहे चा तो देखो आप बारिश का समय में देखा चा देखो कितना पानी की बर्बादी हो चा। तो उन पानी अगर आपन उनको संरक्षण कर लिया तो देखो आपने जो जमीन को जो जल स्तर है वो भी ऊपर आओगे और अपना खेत की नमी भी बराबर बनी रहेगी। आपने जो मिट्टी की जो उत्पादकता है वह भी बनी रहेगी। साथ में आपने जो उत्पादक मिट्टी है वह भी बढ़ने जाओगी बात। और देखो सिंचाई को जो क्षमता को जो विस्तार है आज आपने देखो तो वर्षा के ऊपर बहुत निर्भर चा तो इसमें भी आपन कमी ला सका चा। लेकिन यह देखो सोच आपन भी जब हर चीज़ की जानकारी रखेंगा वो चीज़ का बारे में अगर आपन भी काम करेंगे हर चीज़ का बारे में ध्यान देंगे वो चीज़ का बारे में आपने भी कोई जिम्मेदारी रहे तो ऊँच जब जारी काम चलोग यूँ तो चाहे कोई ना एक मनक सोच बस सब काम हो जाए। तो किसान भाई बहनों आपने देखो ये छोटी छोटी बात जैकर लेकर अब आज आपने देखो आपने जो बात करी मृदा एवं जल संरक्षण तो उनका बारे में देखो विचार कर रहे कि आपन कहता है जरूरत है यह चीज़ सोचा आज आपने खेती बाड़ी करे चाहे खेती बाड़ी हमेशा ही करनी चाहिए। तो अगर आपने देखो आज आपने देखभाल में आ रहे दो दिन हो गया आपन का टाइम देखो बारिश न हो रही तो दो चार दिन में देखो घना किसान भाई बना के चिंता होगा लाग जाएगी कि बारिश न हो रही बारिश न हो रही। लेकिन देखो तो यह चिंता दूर करवा के लेकर आपन का टाइम भी काम करनी पड़ेगा और आपन का टाइम भी जिस सरकार जी योजना लाओ चाहे वहाँ को अगर आपन अच्छी तरह वहाँ को उपयोग करा तो ये समस्या से आपन थोड़ी बहुत निजात पा सका चाह। अब किसान भाई बहनों देखो अपनी बातचीत तो चाल ही रही है लेकिन अब मनोवेज मनोरंजन करवा को तो किसान भाई बहनों आपन सुना एक प्यारो सो लोकगीत।

किसान भाई बहनों, देखो आपने यो सुनियो प्यारो सो लोकगीत कोरे काजल की कोर सीमा मिश्रा की आवाज़ में, और आशा करा चाहे आपका ताय भी पसंद आयो होगो। अब किसान भाई बहनों देखो आपनों जो कार्यक्रम छे उनको समय समाप्ति की ओर जा रहे छे, तो अब आपका साथी राकेश कताई दिवाज्ञा राम राम।

अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषक चौपाल FM 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। 7:30 हुए हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं मुंबई से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। इन्हें हम मुंबई से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

लता मंगेशकर की आवाज़ में पाकीज़ा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कमाल अमरोही ने बोल लिखे थे, गुलाम मोहम्मद ने तर्ज बनाई थी। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में शैलेंद्र का लिखा गीत, संगीतकार शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम राजकुमार।

लीजिए, अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में आया तूफान फिल्म का ये गाना। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई।

असद भोपाली के लिखे और मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, सविता सिंह को नमस्कार।

0: अनमोल यादें। अनमोल यादें।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनमोल यादें कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू जयंत जी, और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार फिर से।
1: आज हम किस गीत को याद करके शुरुआत करने वाले हैं कार्यक्रम की?
2: एक सिंगर थी जो लाजवाब थी और जिन्होंने लता जी और आशा जी को और गीता दत्त को भी टक्कर दी, और वो थी सुमन कल्याणपुर जी। जो हाल ही में गुजर गई।
1: जी जी,
2: उनको मिलना भी मेरा सौभाग्य रहा।
1: अच्छा।
2: और बहुत सी प्यारी बातें हुई एक डेढ़ घंटे से। उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी गिला नहीं है कि मुझे कम गाने मिले। उन्होंने कहा कि जो मेरी तकदीर में है वो मेरे पास गाने आने ही थे और वो आ गए। और उन्होंने अपना नाम हिंदी के अलावा बहुत सारी भाषाओं में, मराठी, गुजराती, बंगाली वगैरह वगैरह, और नॉन फिल्म सेक्शन में भी उन्होंने बहुत नाम कमाया। फिल्मों में तो उनके गानों का, जैसे उन्होंने सही कहा कि मेरे कम गाने थे लेकिन मेरी जो परसेंटेज थी हिट्स की वो बहुत ज्यादा थी।
1: जी, जी जी जी।
2: तो ऐसा ही एक गाना जो थोड़ा उनका अनफॉर्चुनेटली कम पॉपुलर था, कम लोकप्रिय था, शराबी शराबी ये सावन का मौसम, ये फिल्म थी नूरजहां 1967 की।
1: अच्छा।
2: उस जमाने में मीना कुमारी, प्रदीप कुमार और रोशन
1: जी
2: ये जो

0: त्रिमूर्ति है, ये कॉम्बिनेशन बहुत चल रहा था बहु बेगम, चित्रलेखा और भीगी रात वगैरह में
1: जी।
0: तो ये गाना सुमन कल्याणपुर जी ने इस फिल्म के लिए गाया है, बड़ा ही खूबसूरत गाना है, उसमें बहुत ही नशा है मैं कहूँगा। और इसका जो कॉम्बिनेशन है
1: जी जी।
0: रोशन जी और शकील जी, ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है।
1: चलिए सुनते हैं।

0: राजीव जी, ये आज के कार्यक्रम में इस कड़ी में पहला गीत आपने नूर जहां फिल्म से सुनवाया सुमन कल्याणपुर की आवाज में, और अब हम किस गीत की चर्चा करेंगे?
1: और एक गाना है जो मुझे बहुत ही प्यारा है
0: जी
1: पर्सनली, और ये शायद उस फिल्म का मुझे पसंद आने वाला इकलौता गाना है।
0: अच्छा,
1: लेकिन इसमें और एक अजीब चीज है कि इस फिल्म में ये इकलौता गाना है जो दादा बर्मन ने कंपोज किया, और शायद ये उनका आखिरी रिकॉर्डेड सॉन्ग हो सकता है, क्योंकि उनकी जो फिल्म मिली थी उसमें भी कुछ उन्होंने गाने

0: जी जी
1: लेकिन उस वक्त मैंने सुना वो बीमार थे।
0: हाँ
1: लेकिन इस फिल्म में इन्होंने एक गाना करने के बाद प्रोड्यूसर से ये कहा कि मैं इस फिल्म को छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ बराबर है नहीं अभी। तो ये गाना जो है वो फिल्म दीवानगी से है जिसमें शशि कपूर और जीनत अमान थे।
0: अच्छा।
1: और एक गाने को रिकॉर्ड करने के बाद बाकी सारे गाने दूसरे संगीतकार ने बनाए थे।
0: अच्छा।
1: और इस गीत के लेखक हैं आनंद बख्शी और किशोर दा ने गाया है। ये फिल्म इनके हाथ इसके लिए लगी थी शायद क्योंकि इसके पहले सुबोध मुखर्जी जो प्रोड्यूसर थे, समीर गांगुली जो डायरेक्टर थे और शशि कपूर जो हीरो थे, इनके साथ इनकी बहुत ही सुपरहिट म्यूजिकल रही।

0: चल सपनों के शहर में गीत हम सुन रहे थे दीवानगी फिल्म से, और आज की कड़ी में अब तीसरे गीत की बारी है। हम अब किस गीत की यादों की ओर बढ़ रहे हैं?
1: अभी हम दादा के जो बड़े ही होनहार बेटे आरडी बर्मन,
0: हाँ,
1: उनकी तरफ चलते हैं
0: जी।
1: और गीतकार वही है आनंद बख्शी,
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन इसमें बहुत ही दिलचस्प बात है,
0: हाँ हाँ,
1: कि ये अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया पहला गाना है।
0: ओहो, क्या बात।
1: अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी सात हिंदुस्तानी, जिसमें उन पर कोई भी गाना फिल्माया नहीं था।
0: जी बिल्कुल।
1: उसके बाद में दूसरी फिल्म थी आनंद, जिसमें भी वही सिचुएशन थी, सारे गाने राजेश खन्ना जी के थे। तो ये जो तीसरी रिलीज थी प्यार की कहानी,
0: हाँ,
1: इसमें उनके ऊपर पहली बार दो गाने फिल्माए गए, दोनों रफी साहब ने गाए थे।
0: अच्छा।
1: मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि उनमें से पहला गाना रिकॉर्ड कौन सा हुआ था, लेकिन वो दूसरा गाना था एक पते की बात सुनाओ सुन मेरे हम जोली, वो पॉपुलर बहुत हो गया था, बहुत चला था।
0: अच्छा।
1: और ये दूसरा गाना जो कम चला है वो हमारे इस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है।
0: जी, जी, जी।
1: और वो गाना हम अभी सुनते हैं, कोई और दुनिया में।

0: तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये अनमोल यादें कार्यक्रम की कड़ी संपन्न हो रही है। और राजीव जी, अपने श्रोताओं को कुछ आप बताना चाहेंगे इस कड़ी के पूरा होने से पहले?
1: मैं ये बताना चाहूंगा, इस श्रृंखला में हम हर युग के गाने पेश करेंगे।
0: अच्छा।
1: चाहे वो 80s हो, 90s हो, उसके भी बाद हो, क्योंकि उस दौरान ऐसे हुआ कि म्यूजिक लेबल्स जो है वो चुने हुए गाने या गानों को प्रमोट करने लगे और उसमें कुछ ऐसे हीरे अंदर ही दबके रह गए जिनको मैं आपके सामने पेश करूंगा।
0: क्या बात है, और हमारे कई श्रोता जो है आश्वस्त हो गए होंगे और बड़े खुश होंगे। अगली कड़ी से कुछ ऐसे गीत भी होंगे जो 80 या 90 के दशक के गीत हैं और उनसे जुड़ी अनमोल यादें हमको सुनने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, मिलते हैं अगली कड़ी में।
1: सभी श्रोताओं को फिर से नमस्कार और शुभ रात्रि।
2: अनमोल यादें।

0: हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको अनिल निगम का लिखा एक प्रहसन सुनवा रहे हैं, फोकट चंद।
1: दफ्तर, घर में दफ्तर, बाहर दफ्तर, दफ्तर में दफ्तर। मैं कहती हूँ अपनी फाइलें समेटो।
2: अरे इन फाइलों में तो मेरा फ्यूचर है।
1: अजी अपना फ्यूचर खिसका लीजिए तो मैं आपके प्रेजेंट के कपड़े प्रेस कर दूँ।
3: ओफो मम्मी पापा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात बतानी है।
4: लो कर दी फाइल बंद। अब बताओ बेटी क्या बात है?
3: आप लोगों ने तो पूरे कमरे की दिन में लाइटें जला रखी हैं।
4: अरे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बेकार की बात बताने के लिए तूने मेरी फाइल बंद करवा दी। अरे अब तक तो मैं पूरी ड्राफ्टिंग कर चुका होता।
1: लेकिन तुम्हारी अक्ल कहीं नहीं पहुंची, जैसी शादी के पहले थी वैसी ही आज है।
4: थैंक यू।
1: अरे कमरे में जब दिन का उजाला है तो ट्यूबलाइट और बल्ब बुझा क्यों नहीं देते?
4: अरे फोकट चंद की शान फोकट की बिजली जलाने में है, चाहे ऑफिस हो या घर। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं अपनी शान में बट्टा लगा दूं?
1: नहीं, शान में लगाम तो लगा ही लो, कहीं ऐसा ना हो अपनी शान की बदौलत ना तुम घर के रहो ना दफ्तर के।
3: पापा, ये फोकट की बिजली का क्या चक्कर है?
4: बेटा यही तो बिजनेस सीक्रेट है इस किराए के मकान का।
1: अरे अब पहले ही बुझाओगे या बाद भी बताओगे?
3: पापा आप तो हमेशा किश्तों में सस्पेंस खोलते है ना, आजकल की फास्ट लाइफ में ये सब नहीं चलेगा।
4: अच्छा अच्छा जो चल रहा है वो सुन लो।

0: तुम्हारे पापा और इनके पति यानी कि मैं फोकट चंद अपने मकान मालिक नेक चंद को केवल मकान का किराया देता हूँ, बिजली का कुछ नहीं।
1: अब समझी, इसीलिए आप लोग दिल खोलकर बिजली खर्च कर रहे हैं।
2: भाई ऊपर वाले ने जब छप्पर फाड़ कर दिया है
0: तो खर्च करने में कंजूसी किस बात की।
2: अरे अरे अरे अरे अरे अरे, बिना कोई नोटिस दिए तुम अचानक रोने क्यों लग गई?
3: मुझे गुस्सा लग रहा है।
2: क्यों?
3: इतनी सी बात मैं क्यों नहीं समझ पाई?
2: अरे मैं तो डरी गया था।
3: सुनो जी,
2: हाँ?
3: मुझे रुपए चाहिए अभी इसी वक्त।
2: देखो जी, बिजली जितनी चाहे खर्च कर लो, लेकिन
3: अरे मैं बिजली खर्च करने के लिए रुपए मांग रही हूँ।
1: बिजली खर्च करने के लिए रुपए?
3: हाँ हाँ रुपए, तुम लोगों की चाय की फरमाइश पूरी करने के लिए बिजली की केतली, साफ सुथरे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन और गैस की बचत के लिए बिजली का चूल्हा इस घर के लिए जरूरी है या नहीं?
2: जरूरी
1: तब तो मैं भी हेयर ड्रायर खरीदूंगी मम्मी।
0: और मैं खरीदूंगा बिजली से शेव बनाने वाली मशीन।
3: हाय हाय।
2: लेकिन ये सब खरीदने के लिए तो रुपए बहुत चाहिए।
3: अजी आप तो किश्तों के मरीज है, ये सारा सामान किश्तों पे ले आइए।
2: तुम ठीक कहती हो।
4: एक ही अंधकार में बैठे बैठे चाय पी रहे हो, लाइट तो जला ली होती।
5: अभी शाम के उजाले में तुम्हारे हुस्न का दीदार अच्छी तरह कर सकता हूँ।
4: इश रसगुल्ला के माफिक मिष्टी बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। ओए माँ, आमी तो भूले गए जी।
5: ये क्या है?
4: ये लीजिए। ओफो, जरा लाइट जला के रोशनी में देखिए ना।
5: बिजली का बिल?
4: जी हाँ।
5: अरे ये तो बहुत ज्यादा है, इतनी बिजली तो हम लोग जलाते भी नहीं।
4: लेकिन आपके हम लोग की पूरी भाषा में आपके किरायेदार फोकट चंद और उनका परिवार शामिल नहीं है क्या? अरे उन लोगों ने तो अपने घर में बिजली के सामान की दुकान लगा रखी है।
5: ओफो, मुझे क्या पता था फोकट चंद मेरी सिधाई का इतना फायदा उठाएगा।
4: अब तो पता चल गया है, आगे सोचो क्या करना है।
5: पानी सर के बहुत ऊपर निकल गया है, लेकिन इलाज है मेरे पास।
4: क्या करेंगे आप?
5: अरे उनके पोर्शन में बिजली का सब मीटर लगवा दूंगा और उसी की रीडिंग के मुताबिक फोकट चंद को भी बिजली का भुगतान करना होगा।
4: किंतु अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो?
5: डाल डाल और पात पात का खेल खेलना मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। बात ना मानने पर कह दूंगा कोई और मकान तलाश कर लो, फिर तुम देखना तेल और तेल की धार।
4: ओए माँ, तुमने फोकट चंद का एकदम सोई नबज टटोला है, औलादीन का चिराग लेकर भी वो दूसरा घर तलाश
5: नहीं कर पाएंगे।
0: बड़ी मुश्किल से
3: तो शेफ बड़ी जोरदार बनी है।
2: ये सब इसी इलेक्ट्रिक शेवर की मेहरबानी है।
1: मम्मी ओफो मम्मी, जब से घर में वॉशिंग मशीन आई है तब से तुम्हें कपड़े धोने की बीमारी लग गई है। हर वक्त तुम्हें कपड़े गंदे ही नजर आते हैं।
2: बेटी ये सोचकर तुम क्यों दुबली हो रही हो? अरे जब तक इन्हें बिजली मिल रही है तब तक इनके कपड़े धोने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए।
3: मकान मालिक ने चंद को देखो, कलकत्ते वाली को ब्याह के लाया है, और कितना एका है आपस में। एक तुम हो कपड़े धुलवाने के लिए मुझसे शादी की थी।
2: लाजो, अरे लाजो, इन आंसुओं को रोक लो। अरे कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे आंसू इस घर में बाहर लाकर हम सबको तबाह कर दे और मैं एक भूली हुई खुशखबरी तुम्हें ना सुना पाऊं।
3: खुशखबरी? खुशखबरी और वो भी तुम्हारे मुंह से? मुझे यकीन नहीं होता।
2: तुम्हें तो यकीन ना करने की बीमारी हो गई है। अरे जब ऑफिसर की बीवी कहलाओगी तब समझ में आएगा तुम्हें।
3: क्या बुढ़ापे में तुम मुझे तलाक देने वाले हो?
2: ऐसा मेरा सौभाग्य कहाँ? अरे मैं तो खुद बड़े बाबू से ऑफिसर बनने का ख्वाब देख रहा हूँ। अगर बास शर्मा जी की मेहरबानी हो जाए तो ये सपना सच भी हो सकता है।
3: अरे तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो शर्मा जी की मेहरबानी हो ही जाएगी।
2: मैंने अपना प्रमोशन का भला देखने के लिए कल शर्मा जी को खाने पर बुलाया है।
3: हो गई छुट्टी,
2: देखता हूँ प्रमोशन कैसे नहीं मिलेगा।
3: प्रमोशन और वो भी तुम्हारा? जी मैं तो रिटायरमेंट तक तुम्हारी नौकरी सही सलामत बनाए रखने के लिए भगवान से हमेशा दुआएं मांगती
1: हूँ। पापा मैं तो आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात बताने आई थी और यहाँ आकर आप लोगों की बातों में उलझ गई।
3: अरे बेटी इनकी बातें तो द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ती ही चली जाएंगी। तुम अपनी कहो बेटा।
1: कल आप लोग जब वॉशिंग मशीन खरीदने गए थे ना तब नेकचंद अंकल आए थे।
3: नेकचंद जी?

0: ये तो है।
1: अरे किराया लेने आए होंगे।
0: क्या तुमने अभी तक किराया नहीं दिया?
2: कहां से दूं? इस समय तो रुपए बिजली का सामान खरीदने के लिए दुकानदारों को दे रहा हूँ किश्तों में।
3: पापा नेकचंद अंकल कुछ देकर भी गए हैं।
0: लेने आए और देकर चले गए, कुछ बात समझ में नहीं आती।
2: अरे मेरी किस्मत ने अगर कुछ पाना लिखा है तो तुम्हें ज्यादा समझने की क्या जरूरत है
0: जी।
2: अच्छा बेटी दिखाओ तो क्या देकर गए हैं नेकचंद जी।
3: पापा अंकल बिजली का सब मीटर देकर गए हैं।
2: क्या बिजली का सब मीटर?
0: सब मीटर?
3: हाँ उन्होंने हम लोगों के पोर्शन में बिजली का सब मीटर लगवा दिया है।
2: मारे गए।
3: और कह गए हैं उसकी रीडिंग के मुताबिक किराए के साथ साथ बिजली का भी भुगतान करना होगा।
2: भुगतान?
3: और हाँ ये भी कह रहे थे अगर आपको ये मंजूर ना हो तो कोई दूसरा मकान तलाश कर ले।
2: अरे ये तो बहुत बुरा हुआ।
3: पापा अगर आपने बिजली के सामान का इस्तेमाल ही करना छोड़ दिया तो आपकी शान का क्या होगा?
0: मेरी आदत तो सारा काम बिजली के सामान से करने की बन गई है।
2: लाजवंती तुम ठीक कह रही हो, बिजली के सामानों का इस्तेमाल तो करते ही रहना होगा। बास के आगे इम्प्रेशन भी तो जमाना है। प्रमोशन के बाद देख लूंगा नेकचंद को भी।
0: बिल्कुल ठीक।
4: पता नहीं ये सुबह सुबह अखबार कहाँ रख देती है। अरे लकी आज का अखबार कहाँ रखा है भाई?
5: ए, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे सामने तौकत पे तो रखा है।
4: ठीक है मिल गया है। गर्मी की तपिश से जनजीवन अस्त व्यस्त।
5: सुनिए ये फोकटचंद अपना किराया कब देगा? समझ में नहीं आता ये बिजली का शॉप मीटर लगने के बाद भी एतो बेशी बिजली क्यों खर्चा कर रहा है।
4: बिजली की कटौती। लक्ष्मी अरे ये है आज की जोरदार खबर फोकटचंद को सबक सिखाने के लिए।
5: कौन सी खबर पढ़ के खुश हो रहे हो?
4: यही कि बिजली की कमी से निपटने के लिए कल से 8 घंटे बिजली की कटौती का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।
0: बेशोइचे अब पता चलेगा फोकटचंद और उनके परिवार को।
2: अरे लाजवंती अगर इसी तरह कछुए की चाल चलोगी तो अगले 7 जन्म तक भी मेरे प्रमोशन का पता नहीं चलेगा। अरे बॉस के आने का समय हो रहा है और तुमने अभी तक खाना भी नहीं बनाया।
0: ये गर्मी देख रहे हो और सुबह से लाइट नहीं आ रही। रोज खाना पकाने का सारा काम बिजली के चूल्हे पर होता था।
3: मम्मी आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है।
0: क्या?
3: बिजली की कटौती लागू हो गई है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली नहीं आया करेगी।
0: मुझे पता है।
3: और पापा हाँ। मेरे स्कूल की फीस जानी है। कल तक अगर फीस ना जमा करी तो मेरा नाम कट जाएगा।
2: बेटा लेकिन वो बेटा।
0: क्यों जी तुमने बच्चे के स्कूल की फीस भी नहीं जमा की?
2: कहाँ से दूं? तनख्वाह के सारे रुपए तो बिजली के सामानों की किस्तें अदा करने में चले गए।
0: नतीजा ठन ठन गोपाल।
2: लो जो मेरे कपड़े निकाल दो। अगर बास ने मेरे गंदे कपड़े देख लिए तो क्या सोचेंगे?
0: तुम भी तो सोचो वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है मैं क्या करूं?
3: पापा शर्मा अंकल के लिए बर्फ तो ले आइए। इतनी गर्मी में क्यों उन्हें गर्म पानी पिलाएंगे?
2: अरे इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। घर में फ्रिज है और बर्फ लेने बाजार जाना पड़ रहा।
0: सुनो जी बाजार से मोमबत्ती और हाथ से डुलाने वाला पंखा भी लेते आना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बॉस अंधेरे में बैठे बैठे पसीने से तर बतर होते जाए। बिजली का क्या भरोसा न जाने कब आएगी।
2: लगता है बिजली की कटौती हमारी इज्जत का जनाजा निकाल कर रहेगी। अब खाने के बारे में तो सोचो। अगर बास को खाली ठंडा पानी पिलाकर विदा कर दिया तो अपने प्रमोशन का मामला भी ठंडा पड़ जाएगा।
0: जी जब बाजार जा ही रहे हो तो वहां से खाना भी लेते आना। अरे इतनी जल्दी बिना इस बत्ती के इस गर्मी में भाई मैं तो खाना नहीं बना पाऊंगी। हाँ
2: अरे बेटा देख बाहर कौन है जरा देख।
3: अच्छा पापा।
6: सर आइए सर आइए इधर आराम से बैठिए सर।
7: लगता है मैं समय से पहले आ गया हूँ। कहीं जाने की तैयारी है क्या?
6: सर यही तो आपका सबसे बड़ा गुण है सर। समय से पहले पहुँचना मंजूर है आपको। 1 सेकंड की देर करना बर्दाश्त नहीं। समय की पाबंदी तो कोई आप से सीखे सर।
7: आज कुछ गर्मी ज्यादा है और ये पंखे भी नहीं चल रहे।
6: ये सब बिजली की कटौती का नतीजा है सर। काश बिजली आती तो मैं आपकी बेहतर खिदमत कर पाता सर।
7: अच्छा अगर बिजली आती है तो आप क्या करते?
6: सर बहुत सा सामान बिजली का है मेरे पास, आराम से रहने और लोगों को

0: आराम पहुंचाने के लिए।
1: अच्छा, क्या क्या सामान है आपके पास?
0: बिजली का चूल्हा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टेलीविजन, इलेक्ट्रिक केतली, कूलर और न जाने क्या क्या सर। और अब तो प्रमोशन के बाद एसी खरीदने का भी इरादा कर रहा हूँ सर।
1: प्रमोशन? और वो भी तुम्हें? कभी नहीं।
2: क्यों सर, ऐसा क्या किया है मैंने जिससे मुझे प्रमोशन नहीं मिल सकता सर?
1: फोकट चंद, मुझे ऑफिस के लिए एक बिजली बचत अधिकारी की जरूरत है।
3: सर, वो बिजली के कटौती से परेशान होकर ये ठीक से कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। न जाने आपसे क्या अनाप शनाप बक रहे हैं।
1: अच्छा, मैं चलता हूँ।
2: सर, सर, सर।
4: पापा पापा, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है।
2: अरे चुप। मेरा प्रमोशन भी गया और साथ में फोकट की बिजली भी गई।
5: फोकट चंद। अभी आपने अनिल निगम का लिखा ये प्रहसन सुना। इसका निर्देशन चंद्र प्रभा भटनागर ने किया। लखनऊ केंद्र से प्राप्त इस नाटिका के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: के बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोता भी सुन रहे थे मुंबई से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से FM 103.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं मेहंदी दलेर मेहंदी और कल्पना पटौरी के गाए गीत से। फिल्म है खट्टा मीठा। नितिन रेकवार के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: और आइए अब सुनते हैं आलिशा चिनाय, शंकर महादेवन और जावेद अली की आवाज़ों में बंटी और बबली फिल्म का गीत गुलजार के लिखे। इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आइए अब सुनते हैं नाजिया हसन और जोहेब हसन से फिल्म इल्ज़ाम का गीत। गीत लिखा है अनजान ने और संगीत बप्पी लहरी का है।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है बाहुबली 2 से। आवाज़ें हैं दलेर मेहंदी, संजीव चिमालगी और साथियों की।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये प्रसारण आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से किया जा रहा है। 9:45 बजने को है थोड़ी देर में समाचार संध्या। हम दिल्ली से रिले

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों

0: को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे.
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल.
2: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए.
0: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया. इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की. प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की. श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया. इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है. मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा.
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है. उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है. श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की. वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है. ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है. संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की. मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा. श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए. रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है. इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है. इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं. प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है. कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है. इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है. इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है. स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं. श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में

0: राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने

0: 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी झालावड़ का चंद्रभागा चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं हरिओम शरण और नंदिनी शरण से ये भक्ति रचना।

और आइए अब सुनते हैं चंदन दास की एक गाई ये गजल। उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।